सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज है गुरुवार, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026, 5:58 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी रांची है, सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी रांची है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है हरे चारे का महत्व। बता रही हैं अनीता तिर्की।
3: पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें संतुलित आहार प्रदान करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए दानों के अलावे चारे का अपना विशेष स्थान है। सामान्यतः जब पके फसलों से दानों को निकालकर भूसा या पुआल प्राप्त होता है तो उसे हम सूखा चारा कहते हैं, जबकि हरा चारा से मतलब ऐसी कोई भी फसल जो कि पशुओं को हरे अवस्था में खिलाया जाता है। ऐसी फसलों को 50% फूल आने पर काटकर पशुओं को खिलाया जाता है, क्योंकि इस समय इसकी गुणवत्ता अधिक होती है। एक उत्तम हरे चारे में कुछ प्रमुख बातें अवश्य होनी चाहिए, जैसे हरे चारे में भरपूर हरापन हो, चाहे उसे काटकर खिलाया जाए अथवा चारागाह में घुमाकर चरा जाए, या फिर इसका प्रसंस्करण कर हे या साइलेज बनाकर प्रयोग में लाया जाए। हरे चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा 20-22% के करीब अवश्य होनी चाहिए। प्रोटीन की प्रतिशतता 16-20% के करीब होना चाहिए। हरे चारे में सूक्ष्म तत्व की प्रचुरता होनी चाहिए। हरा चारा का महत्व हर तरह से पशुओं के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा है, क्योंकि इसमें विटामिन, कैल्शियम और खनिज लवण बहुतायत में पाई जाती है। ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं उनके लिए हरा चारा बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो उनके पेट के एक भाग में मौजूद जीवाणु जो कि सेल्यूलोज के विघटन हेतु जरूरी होते हैं उस पर विपरीत असर पड़ता है। हरे चारे को पशु बड़ी चाव से खाते हैं और आसानी से पचा सकते हैं। दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि दूध के माध्यम से पशु शरीर से कैल्शियम का अधिक ह्रास करते हैं, जिसकी पूर्ति हरे चारे से ही की जा सकती है। चारा फसल के लिए बहुत सारी फसलों का प्रयोग किया जाता है। हर वो फसल जिसका प्रयोग किसान भाई हरे रूप में पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं चारा फसल कहलाता है, परंतु कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो सिर्फ चारा उत्पादन हेतु ही लगाई जाती हैं। उसे हम मुख्य रूप से चारा फसल कहते हैं और इस चारा फसल को दो भाग यानी वार्षिक और बहुवार्षिक चारा के रूप में बांटना है और इसे लगाते हैं। वार्षिक और बहुवार्षिक चारा फसल से मतलब ऐसा है कि ऐसी चारा फसल जिसे हम साल में सिर्फ एक बार लगाते हैं और फूल आने पर इसकी कटाई कर देते हैं, वार्षिक चारा की श्रेणी में रखा जाता है। जिसे हम सिर्फ साल में एक ही बार लगा रहे हैं और फूल आने की अवस्था में उसकी कटाई कर रहे हैं, लेकिन मौसम के आधार पर इसे खरीफ और रबी दोनों में विभाजित किया जाता है। इसके विपरीत बहुवार्षिक चारा फसलों को हम वर्षा होने पर खरीफ मौसम में लगाते हैं और उसी फसल से 3 साल तक लगातार हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। 3 साल के बाद पुनः इसका उन्मूलन कर नए सिरे से इसे लगाते हैं। ऐसी फसल की कटाई करीब 1 मीटर वानस्पतिक वृद्धि होने पर करते हैं। इसके अंतर्गत गिनी घास, हाथी घास जिसे नेपियर कहते हैं, ब्रेचेरिया, स्टाइलो इत्यादि फसलें आते हैं। चारा फसलों में जई बरसीम मुख्य है और ज्यादा गर्मी के लिए किसान भाई चारा फसल के रूप में बोदी को लगाकर भरपूर हरा चारा प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त चारा मकई को भी बहुत सारे किसान भाई लगाते हैं। जई की कटाई 2-3 बार जबकि बरसीम की 4-5 बार कटाई करके भरपूर चारा लिया जाता है। फसल चुनाव के बाद किसान भाई उन्नत किस्मों का ध्यान अवश्य रखें जो कि यहाँ की जलवायु के उपयुक्त हो, अनुकूल हो। जैसे बरसीम के लिए किसान भाई वरदान या मिसकावी को लगा सकते हैं, उसी तरह अगर आप जई को चारा के रूप में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कैंट अथवा यूपी 212 लगा सकते हैं। इसी तरह चारा मक्का यदि आप लगाना चाहते हैं तो अफ्रीकन टॉल अफ्रीकन टॉल या J1006। चारा मक्का के लिए किसान भाई अफ्रीकन टॉल या J1006 लगा सकते हैं। चारा बोदी लगाने के लिए UPO 4200 लगा सकते हैं। एक बार किसान भाई फिर से ध्यान दे, जो किसान भाई हरा चारा

बारे में जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर है दिनेश कुमार लाल का।

0: बात उस समय की है जब सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। एक गांव में परंपरा थी कि हर व्यक्ति अंधकार से मुक्ति के लिए हर रोज अंधेरे को टोकरियों में भरकर गांव के बाहर फेंक आया करता था। संयोग से एक दिन उस गांव में किसी घर के एक युवक की शादी के बाद दुल्हन आई। गांव की रवायत के अनुसार घर के बड़े बुजुर्ग ने उस नवविवाहित दुल्हन को भी टोकरी में अंधेरे को भरकर गांव के बाहर फेंक आने का आदेश दिया। दुल्हन काफी हैरत में पड़ गई और सोचने लगी कि भला अंधेरे को टोकरी में भरकर कैसे बाहर फेंका जा सकता है। अकस्मात उसके दिमाग में बिजली की गति से एक विचार कौन था। वो घर के बाहर आई, बिना देरी किए मिट्टी का एक दिया बना लाई। उसने तत्क्षण ही कपड़े की बाती में थोड़ा सा तेल डालकर दिए को जला दिया। अब अंधेरा छट चुका था। गांव का हर व्यक्ति इस बात से हैरान था कि आखिर अंधेरे को इस प्रकार दूर कैसे किया जा सकता है। घर की बहू ने गांव के लोगों की आंखें खोल दी थीं। इसके बाद से उस गांव में फिर कभी अंधेरा नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने रोशनी के लिए दीप जलाना सीख लिया था। उस गांव में अंधकार दूर करने की अज्ञानता की कहानी हमारी अपनी कहानी है। सभ्यता के तेजी से विकास के बावजूद हम अपनी आत्मा में बसे अंधेरों से मुक्ति पाने में असफल रहे हैं। रोशनी जलाकर बाहर फैले अंधेरे को दूर कर हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है और उजाला फैल चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपनी आत्मा में ही नहीं झांक पाते हैं। जो झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखा, मिथ्या, आनंद, अहंकार, छल प्रपंच और अन्य बेशुमार अमानवीय प्रवृत्तियों के तिमिर में डूबी हुई है। करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम, धर्म, चरित्र और नैतिकता का सर्वथा अभाव है। आत्मा तो है, पर मानवीय अनुभूतियों और संवेदनाओं से आप्लावित नहीं है। आज महत्वपूर्ण प्रश्न रोशनी की तलाश का नहीं है, बल्कि अति रोशनी की चकाचौंध में बंद हुए अपने प्रज्ञान चक्षु को खोलने का है, ताकि आत्मज्ञान, आत्मसंस्कार और आत्मउत्थान के दीप की बाती की लौ शाश्वत रूप से प्रज्वलित रहे।
1: ये था आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर और FM 100.5 MHz पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है इस देशभक्ति रचना के साथ। रचना शैलेंद्र की है और संवेद स्वर में आप ये रचना सुनेंगे।

मेरी जन्मभूमि, मेरी प्यारी जन्मभूमि। संवेद स्वर में अभी आपने शैलेंद्र की रचना सुनी और अब भक्ति रचनाएं हम आपको सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है मानिक वर्मा के स्वर में मीराबाई की ये रचना।

इस रचना के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

आइए अब आपको बताते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में चर्चा का विषय केंद्रित रहेगा PCOD पर। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर हर्षिता दीप, भेंट करता होंगे संजीव कुमार लाल। 7:45 पर खुला आकाश में वार्ता का विषय होगा महिला सशक्तिकरण। वार्ताकार होंगी गायत्री सिंह, इनसे बातचीत की है प्रभु शरण ने। 8:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक रंग कार्यक्रम में खोरठा लोकगीत, कलाकार होंगी करुणा देवी और साथी। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा श्री GN ओरमा का बजाया गिटार पर राग नट भैरव।

10 बजे विज्ञान जगत कार्यक्रम में आपकी मुलाकात हम करवाएंगे प्रोफेसर V.S. राठौर से। विषय होगा बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, मानव जीवन पर खतरा। इनसे बातचीत की है वसंत कुमार ने।

0: दिन के 11 बजे विशेष परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। विषय होगा हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। इसमें भाग लेंगे श्री पंकज मित्र, श्री देवव्रत सिंह, बलबीर दत्त और श्री शंभुनाथ चौधरी। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा गृहलक्ष्मी दिन के 12 बजे। इसके ठीक बाद 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शोभा गुर्टू से आप सुनेंगे ठुमरी और दादरा। हमारे उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में 12:20 पर। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं आपके लिए। ये आकाशवाणी रांची है। 6:55 होने को हैं। अब आप क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात् ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16,000 बसयानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिसा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मन्थनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेश, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनम्, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने हि विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीटर वेव 546.45 मीटर यानी 549
5: आकाशवाणी
4: कुमार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज की भी वार्ता का विषय है पीसीओडी। वार्ताकार हैं डॉक्टर हर्षिता दीप।
5: Prime Minister Narendra Modi will hold talks with acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in
4: श्रोता मित्रों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज की भेंटवार्ता का विषय है पीसीओडी। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर हर्षिता दीप, भेंट करता हैं संजय कुमार लाल। आइए सुनते हैं।
6: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में खान पान काफ़ी बिगड़ गया है। फास्ट फूड की ओर हम ज़्यादा अग्रसरित हो गए हैं। ऐसे में एक बीमारी हमारी किशोरियों को हो जा रहा है और स्कूल गोइंग लड़कियां या कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं उनको हो जा रहा है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी बीमारी क्यों हो जा रहा है, उससे वो क्यों ग्रसित हो जा रही हैं, उससे वो क्यों पीड़ित हो जा रही हैं, क्या कारण है और इस पीसीओडी का लक्षण क्या है, ताकि समय रहते हम इसका उपचार करें और कौन कौन सी सावधानियां हम रखें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हर्षिता दीप। डॉक्टर हर्षिता, स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये जो पीसीओडी है, आजकल की नव युवतियों को ये बीमारी ज़्यादा पकड़ रही है, तो ये किस तरह की बीमारी है?
7: मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत सी लड़कियों एवं नव युवतियों में देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बारे में आज भी जागरूकता बहुत कम है। इस समस्या का नाम है पीसीओडी, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। यह बीमारी किसी भी महिला को हो सकता है, लेकिन यह अधिकतर किशोरियों या फिर युवा महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। स्पेशली 14 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में ये ज़्यादातर पाया जाता है।
6: तो ये बीमारियाँ क्या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, हमारे खान पान से इसका गहरा ताल्लुक है?
7: जी, इसका हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो हमारी आजकल की जीवन शैली है, जहाँ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और हम अधिकतर फ़ोन, लैपटॉप या फिर जो फास्ट लाइफ की तरफ अधिक भाग रहे हैं, उसके चक्कर में ये मुख्य कारण बन चुका है, जो पीसीओडी का पहला कारण है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज बहुत कम करने लगे हैं, स्पेशली जो यंग फीमेल्स हैं उनमें एक्सरसाइज की कमी होना, स्लीप साइकिल इरेगुलर होना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना, जैसे कि तला हुआ खाना ज़्यादा खाना, मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, जंक फूड खाना, ये भी एक मुख्य कारण में माना जाता है। इसके साथ ही जेनेटिक कारण एक मेन रीज़न माना गया है, क्योंकि ये ओवरीज का डिज़ीज़ होता है और ये हार्मोनल इशू है, जिसके वजह से हमारे ओवरीज से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होने लगते हैं, तो इसका कारण एक जेनेटिक कारण भी माना गया है। इसके अतिरिक्त फिज़िकल कारण के साथ साथ मानसिक कारण भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके ऊपर हम विशेष कर से ध्यान देते हैं, स्पेशली इन होम्योपैथी।
6: तो कौन कौन से ऐसे कारण है जो ये बीमारियां हमारे युवतियों को, हमारी किशोरियों को घेर रहा है?
7: कारणों में अगर मैं बोलूं तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इससे। जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल कारण में हमारे पास एक्सरसाइज की कमी या फिर इरेगुलर स्लीप, ये सारे मुख्य कारण होंगे। पर वहीं अगर हम मेंटल कारण की तरफ जाते हैं तो लगातार तनाव में रहना, या फिर कई बार हमने देखा है कि आजकल की युवतियों में परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत बढ़ गई है कि अगर कोई हमारे उम्र का अगर लड़का है और वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो हमारे अंदर वो कॉम्पिटिशन की भावना ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। कई बार वो थोड़े हद तक हेल्दी होता है पर उसके बाद वो हमें मानसिक तौर पे बीमार करने लगता है। साथ ही में अगर हम देखें तो हम खुद को प्रूव करने की चाहत बहुत ज़्यादा रखने लगते हैं, जो एक लेवल तक ठीक होता है लेकिन अति किसी की भी सही नहीं होती है और वो एक बीमारी के तरफ मोड़ लेने लगता है। इसके साथ ही लैक ऑफ अप्रिसिएशन एक मेंटल कारण है जिसके वजह से हमने कई सारी PCOD की महिलाओं को इस चंगुल में फंसते देखा है कि उन्हें लैक ऑफ अप्रिसिएशन होता है, कोई उन्हें सराहना करने वाला नहीं होता है, जिसके वजह से वो खुद में ही रहने लगती हैं और उनके हार्मोन्स में हमने इम्बैलेंस देखा है। तो ये मुख्य कारण होंगे।
6: प्रतियोगिताओं का ज़माना है और इस भीड़ में आगे निकलने की चाह है कि हम आगे आ जाएं, और हर लोग चाहता है कि जो हम लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। और ऐसे में जो किशोरियां हैं, लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें तनाव घिर जाता है और फिर जो हमारा रहन सहन है और जंक फूड का हम सेवन करते हैं, ये बहुत हद तक इसके लिए ज़िम्मेदार है। इस बीमारी का लक्षण क्या है ताकि समय रहते हम जागरूक हो जाएँ, सावधान हो जाएं और इसका उपचार हम शुरू कर दें?
7: जी, सबसे पहला लक्षण जो हम देखते हैं वो है वज़न का बढ़ना। कई बार हमने देखा है कि 14 से 30 साल की उम्र में महिलाएं अचानक से उनका वज़न में काफ़ी बदलाव आने लगता है। और एक बहुत ही कॉमन मिथ भी है इसमें कि हर एक लड़की या महिला जो है वो अगर

0: लगता है या हमें काम पर जाने का मन नहीं करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण माना गया है। यही सिम्टम हम थायराइड के पेशेंट्स में भी देखते हैं, जहाँ पर भी हम यही कहते हैं कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। तो इन सारे लक्षणों पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: ये सारी लक्षण यदि दिखने लग जाते हैं तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है। और उपचार किस प्रकार करें, कौन कौन सी बातों का हम ख्याल रखें कि ये बीमारियां हम तक नहीं आए और एक स्वस्थ जीवन हम यापन करें, और ज़िंदगी की रफ्तार तो है ही लेकिन तनाव से हम दूरियां बनाएं।
0: जी, सबसे पहले तो मैं कुछ आसान रूटीन बताना चाहूँगी जो हर महिला या हर युवती इसको फॉलो कर सकती हैं। हम अपने, जैसा आपने कहा, भाग दौड़ तो चलती ही रहेगी, हम उस भाग दौड़ के जीवन में भी अगर बस 15 से 20 मिनट, अगर 20 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं तो 10 से 15 मिनट अगर हम वक्त अपने लिए निकालें, या वो सुबह हो या वो शाम को हो, पर हमें खाने के बाद कम से कम उतना वक्त हमें चलना चाहिए। और चलना जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, कि मतलब हम धीरे धीरे भी नहीं चल रहे हैं और बहुत अधिक भाग दौड़ भी नहीं कर रहे हैं, पर हमें ऐसे चलना है कि हमारी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो रही है। तो हम ये एक नियमित रूप से एक्सरसाइज के तौर पे वॉकिंग इंक्लूड कर सकते हैं। हमें समय पर सोना चाहिए, ये युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा कठिन हो गया है समय पर सोना और सुबह उठना, पर फिर भी अगर हम उसे थोड़ा हद तक नियंत्रित कर सकें तो काफ़ी लाभदायक होगा। खाने पीने में हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल अगर महिलाओं में देखें तो 40-50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे हमें रिक्वायरमेंट रहता है, पर अगर हम PCOD के महिलाओं में देखें तो कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए प्रतिदिन। उसमें हम प्रोटीन्स में जैसे दाल, पनीर, अंकुरित चना का सेवन कर सकते हैं, राजमा का सेवन कर सकते हैं, ये सारे हम रेगुलर अपने डाइट में रख सकते हैं। साथ ही प्रोसेस्ड फूड हम जितना कम से कम कर सकें उसे हम एकदम ना के बराबर ही रखें, पैकेज्ड फूड को कम कर दें। शुगर ड्रिंक्स जो होते हैं, जिसमें एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, वो सारे हम बिल्कुल ही मतलब ना मात्र इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम 5 मिनट, ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, पर 5 से 10 मिनट अगर हम मेडिटेशन भी कर सकें तो वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और हमारे मनोस्थिति को भी काफ़ी हद तक सुधारेगा।
1: इसमें हम अपने लाइफ स्टाइल में यदि हम थोड़ा सा बदलाव ला लें, खान पान में थोड़ा सा हम नियंत्रण रख लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, तनाव से दूरियाँ बनाने के लिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, तो ये बीमारियां हम तक नहीं आएंगे।
0: बिल्कुल
1: जी। डॉक्टर हर्षिता, क्या कहेंगे हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, आने वाले जो हमारी युवतियां हैं, वो देश के भावी कर्णधार हैं और बहुत तेज़ी से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और देश के सेवा में आगे बढ़ रही हैं, देश को एक नए मुकाम तक ले जा रही हैं, तो उनको क्या कहेंगे कि इस तरह की बीमारी से आप कोसों दूर रहिए, अपना ख्याल रखिए, तनाव से दूरियां बनाइए और यदि बीमारी हो जाती है तो तुरंत आप सजग हो जाएं।
0: जी, मैं खुद एक युवती हूँ और मैं देश भर की युवतियों को आज आकाशवाणी के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि PCOD कोई डरने की चीज़ नहीं है, ये बस एक सिम्टम है जो हमारी बॉडी हमें सजग करने के लिए दिखाती है और इससे डरने की कोई बात नहीं है। जब हमें सिम्टम्स दिखने लगे जो मैंने बताया, जैसे कि रेगुलर पीरियड्स, हेयर फॉल और चेहरे पर पिंपल्स आना, अगर ये हमें रेगुलर तौर पर दिखने लगे तो हमें सजग हो जाना है ताकि हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस हो और हम जल्द से जल्द किसी होम्योपैथिक चिकित्सक या कोई भी चिकित्सा के पद्धति की ओर जा सकें ताकि हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। साथ ही अगर हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा सुधार करने लगे तो वो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने की एक कोशिश होगी। सही जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय पर उचित सलाह लेकर हम अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकते हैं।
1: और आप ध्यान देंगे तो ये बीमारियां जल्द से जल्द आपसे दूरी बना लेगी।
0: बिल्कुल
1: जी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा आप जागरूक होइए और अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। तनाव तो यत्र तत्र सर्वत्र है, बस उस तनाव को हमें मैनेज करना है, उससे दूरियां बनानी है और जितना हो सके फास्ट फूड से दूरियां हम बनाएं, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षिता दीप, होम्योपैथिक चिकित्सक, आज आप इस कार्यक्रम में आए और PCOD के बारे में बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, तनाव से दूरियां बनाइएगा, तनाव को छुमंतर कीजिएगा, आप खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे स्वर से चर्चा कार्यक्रम में भेंट वार्ता PCOD। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर हर्षिता दीप, भेंटकर्ता संजय कुमार लाल। अब आज का स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुबह सुरीली। आरंभ फिल्म बैराग से। आवाज महेंद्र कपूर की, शब्द आनंद बख्शी के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: HIV एक विषाणु है जिसका संक्रमण HIV संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। HIV एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0907 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: शब्द हैं साहिल लुधियानवी के, संगीत ओपी नैयर का, आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है नया दौर।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: श्रोता इसमें सुन रहे हैं सुबह सुरीली प्रक्रिया आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं फिल्म सीमा से शैलेंद्र के शब्द, मन्ना डे की आवाज़।

और अब प्रोग्राम का अगला नगमा मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर के स्वरों में। फिल्म का नाम है साईं, शिरडी के साईं बाबा।

अब कार्यक्रम की अंतिम भेंट फिल्म अवतार से। आवाजें हैं नरेंद्र चंचल और साथियों की।

0: इसी के साथ ही अब आज का सुबह सुरीली प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। खुला आकाश कार्यक्रम में आज महिला सशक्तिकरण विषय पर आप सुनेंगे गायत्री सिंह से प्रभु शरण की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम अपने कार्यक्रम में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है महिला सशक्तिकरण। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं गायत्री सिंह, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिनेंशियल एनालिस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। वैसे तो इनका और भी कई क्षेत्रों में अध्ययन है जहाँ ये पढ़ती लिखती रहती हैं और इसके बारे में काफ़ी कुछ रखती हैं जो कि वो आप लोगों को बता सके, लेकिन आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। नमस्कार गायत्री जी।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपको भी मेरा नमस्कार जोहार।
1: सबसे पहले तो इस विषय पर ही बात कर लें कि महिला सशक्तिकरण है क्या और क्यों जरूरी है।
2: महिला सशक्तिकरण मेरे दृष्टि में एक महिला को इतना सशक्त बनाना है कि वे आत्मनिर्भर बन जाएं, उनको सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी इतनी सुधार देनी है कि वे अपने जीवन से जुड़े हुए निर्णय खुद बिना किसी दबाव के फ्री होकर ले सकें। इसके लिए हमें ज़रूरी है उनको शिक्षित करना, उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, जैसे वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में चल सकें और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे हमारे श्रोता जरूर, कि क्या आप ऐसी कोई संस्था से जुड़ी हैं या फिर इस क्षेत्र में आप कुछ काम कर रही हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में।
2: महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जसोवा है, झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन, तो उसमें भी हम लोग अपना योगदान देते हैं। हमारी संस्था काफ़ी जाके समाज सेवी कार्य करती है, तो उससे मैं जुड़ी थी लास्ट ईयर। काफी समाज सेवा करने का मौका लगा।
1: बिल्कुल,
2: महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए।
1: जैसे अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक बात करें कि महिलाओं से जुड़े क्षेत्र में कुछ एक्टिविटीज आप बता सकते हैं जो आप सीधे तौर पे टेकअप करती हैं।
2: मैं जैसे यहाँ पे कई अनाथालय हैं, जैसे प्रेम आश्रय है, वहाँ पे मैं गई हूँ और मैंने वहाँ पे स्थिति के बारे में पता भी लगाया महिलाओं के बारे में। तो हम लोग वहाँ पे अपने भी स्तर पे कोशिश करते हैं कि महिलाओं को जागरूक करें, उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ाएं कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, और शिक्षा के साथ साथ आपको वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे आपको रोजगार मिल सके। और फिर हम लोग अपने स्तर पे भी उनको आर्थिक रूप से हम उनकी मदद करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और गवर्नमेंट से भी जुड़े हुए कई संस्थान हैं, हमें पता है गवर्नमेंट कर रही है, तो कहीं कहीं हमें अपने भी इंडिविजुअल स्तर पे जाके थोड़ी मदद तो करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्फनेजेस पे मैं काफी गई हूँ।
1: बिल्कुल, चूंकि भारत एक ऐसा देश है, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो अगर थोड़ा सा पहले चले जाएं वैदिक काल में, तो जहां तक जानकारी मुझे है कि उस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी अपने देश में, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी समाज में जो होनी चाहिए थी वो गिरती गई। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि महिला सशक्तिकरण, जो आज हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो बहुत जरूरी हो गया है। तो आप क्या कारण मानती हैं कि ये जो स्थिति आई, एक बहुत अच्छी स्थिति से धीरे धीरे समाज में ऐसे परिवर्तन हुए कि हम आज महिला सशक्तिकरण या वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों हुआ?
2: हमारा जैसे मिडिवल एज में अगर आप जाएं तो इन्वेडर्स आए, उसके बाद पूरा मुगल एरा चला, फिर अंग्रेज भी आए, पर ज्यादा हम लोगों ने देखा कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो अंग्रेजों के बाद फिर एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने देखा कि क्या हम लोग को कितनी परेशानी हो रही है, तो सती उन्होंने अबॉलिश करने की करी, जो बाद में हुई भी उनके कार्यों के कारण। तो धीरे धीरे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, अच्छा जागरूकता फैली। और एक कारण हम लोग का है कि हम लोग की जो पुरुष प्रधान समाज है उसके मारे हमारी जो महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है आप देखते हैं, महिलाएं अगर वो स्त्री है तो उसको अलग ढंग से ब्रिंग अप करा जाता है, अगर वो पुरुष है, लड़का है, तो उसको अलग तरीके से। तो बचपन से ही हम लोग की सोच जो है ऐसी है कि पुरुष को ज्यादा मिलेगी, स्त्री को कम मिलेगी। तो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी रूढ़िवादी सोच मैं कहूंगी। और भी है कि हम लोग महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे शिक्षित नहीं है, अपनी राइट्स के बारे में जानती नहीं है, तो शिक्षा अगर हम फैलाएंगे, जैसे हम लोग आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 है फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा आपको, एंड आर्टिकल 16 ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है।

0: इनको ठीक तरीके से अगर से इम्प्लीमेंट करा जाएगा तो महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार आएगा. पर जागरूकता अवेयरनेस बहुत जरूरी है फैलाना सोसाइटी में.
1: बिल्कुल
0: उसमें महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी शिक्षित करना पड़ेगा कि देखिए 50% महिलाएं हमारी हैं पॉपुलेशन भारत में, तो 50% अगर पीछे रहेगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा. अगर 50% ही लोग पिछड़े हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आर्थिक अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, कि नेशन के बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं अपना योगदान दें, तो उसके लिए उनको शिक्षा और आर्थिक स्थिति सुधारिए, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें रेज किया कि महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के सोच में बदलाव आए या महिलाएं इनिशिएटिव लें इसमें आगे आने के लिए, पुरुषों की सोच में भी एक बदलाव की आवश्यकता है. वो उस माइंड सेट से निकले, ये जो पुरुष प्रधान वाला जो माइंड सेट है उससे निकलना होगा, अपने घर से आपको शुरुआत करनी होगी. अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, इसके कुछ लक्षित उद्देश्य हैं कि परिणाम आने चाहिए, तो वो जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं आ रहा है अभी तक. प्रयास बहुत किए जा रहे हैं सरकार के स्तर पर, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इस तरह से कई संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं. बावजूद इसके ये जो परिवर्तन जितना अपेक्षित है उतना क्यों नहीं आ रहा है? क्या क्या हिंड्रेंसेज है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं हमारे सामने?
0: सबसे पहले तो अगर हम गाँव के क्षेत्र में जाए तो वहाँ पे जो लड़की है, बालिका है, उसको स्कूल भेजेंगे 5वीं तक, तो उसके बाद कहेंगे कि इसकी तो शादी होनी है, पढ़ाई का फायदा नहीं है, ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो घर पे ही बैठ जाएगी, शादी नहीं होगी. तो उसको शिक्षा के लिए प्रेरित ही नहीं करते हैं. आपकी मानसिक स्थिति जो है शिक्षा से ही सुधार आता है, तो लड़के को लड़की को दोनों ही बराबरी की शिक्षा देने की जरूरत है. और अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है. लड़की को घर में बैठाते रहते हैं और लड़के को कहते हैं कि तुम जाके आगे पढ़ाई करो, तो जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे आएगा? ना वो पढ़ी लिखी है, ना आर्थिक रूप से स्वतंत्र है. तो जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आएंगी वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि वो ऊपर से आ रही है. नीचे से आपको खुद सुधार लाना होगा, खुद सोच में सुधार लाना है. आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी तब आप अपने राइट्स के लिए लड़ाई करेंगे. आप अगर विदेश में जाएं, अमेरिका में तो वेमेन मूवमेंट्स हुए थे, वहां पे उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ाई करी. तो वेमेन मूवमेंट एक यहाँ पे भी भारत में भी चलना होगा, जहाँ पे गांव से लेके शहर से लेके पूरा का पूरा वहां पे औरतों को पुरुषों के साथ मिलकर एक मूवमेंट चलाना होगा, जिसमें उनको कहना है कि इनकी स्थिति में सुधार आना चाहिए. वायलेंस अगेंस्ट वेमेन आपने देखा है, तो महिलाएं बहुत डरती हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए भी जाने के लिए, तो सुरक्षित एनवायरमेंट चाहिए उनको, स्कूल के स्तर पे भी चाहिए, उनको कॉलेज के स्तर पे भी चाहिए, तो आगे जहां काम कर रही हैं वहां पर भी चाहिए.
1: बिल्कुल, मैं यही प्रश्न आपसे मेरा अगला होता कि वर्क प्लेस पे भी, जहां पर काम होता है उस वर्क प्लेस पे भी देखा जाता है कि महिलाएं उतना खुलकर, या फिर बहुत सारी चीजें उनके साथ ऐसा होती है जो वो छिपा जाती हैं, तो वहां पर जो हैरेसमेंट होता है महिलाओं का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या इसका कोई निदान है, कुछ सरकारी कुछ प्रावधान है, तो उसके बारे में बताएं.
0: मुझे लगता है कि एक सुरक्षित एनवायरनमेंट करना चाहिए. जो हम लोग का एक लॉ भी है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो प्रिवेंट करता है वर्क प्लेस में, ये 2013 में आया है, इसको पॉश एक्ट भी कहते हैं, जहां पे अगर किसी महिला के वर्क प्लेस पे उसका उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल उत्पीड़न होता है, तो वो जाके वहां पे कंप्लेन कर सकती है. एक कंप्लेन कमेटी को बैठाना होगा और उसको पूरा का पूरा मौका देना पड़ेगा अपना पक्ष रखने के लिए और एक्शन लिया जाएगा. तो ये जागरूकता होनी चाहिए ना इसके बारे में. तो मेन तो मुझे लगता है कि वर्क प्लेस में सारी महिलाओं को जागरूकता भी देनी चाहिए.
1: और आपने जैसा कि बताया कि ये सरकारी प्रावधान है ऐसे जो कि प्रिवेंट करता है, या किसी भी तरह महिलाओं के अगेंस्ट कोई हरासमेंट है तो उसके रोकता है, तो उस संबंध में हर इंस्टीट्यूट में उस तरह के जो समितियां बनती हैं महिलाओं के लिए ताकि उनका हरासमेंट ना हो, या फिर जहां महिलाएं काम करती हैं उनको अगर कुछ कंप्लेन करना हो तो इस तरह की समिति रहे. हाँ, और ये बहुत जरूरी
0: और
1: है.
0: अगर ऐसा कुछ होता है तो महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए. अगर उनके साथ कुछ परेशानी हो रही तो आगे बढ़ के करना चाहिए, वो उनकी गलती नहीं है. तो महिला को खुद लड़ाई करनी पड़ेगी, वो पुरुष आपकी नहीं हेल्प कर पाएगा, आपको खुद आना होगा आगे.
1: बिल्कुल, और इस तरह की चीजें आजकल मतलब प्रायः मीडिया में देखने को मिल जाती हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं और एक खास वर्ग है जो कि बहुत चीजों का विरोध करता है कि महिलाओं का ड्रेस ऐसा हो, उनका वैसा हो, ये चीजें पुरुषों के बारे में तो बात नहीं होती. इस संबंध में आपकी क्या टिप्पणी होगी?
0: महिला सशक्तिकरण का तो इससे ही पता चल रहा है कि अगर महिला सशक्त होती तो क्या हम इस पर डिस्कशन करते इस टॉपिक पे. तो पुरुष को सशक्त करना कभी हम लोग डिस्कशन करते हैं तो मेरी इसी से बात उठती है कि महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि वो बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनको जरूरत है आगे आने की। महिलाओं को पूरा खुद करना पड़ेगा मेरा ये है, और पुरुषों को महिलाओं का साथ देना पड़ेगा इसमें, तभी ये पॉसिबल है।
1: बिल्कुल, और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और हर स्तर पे सबसे पहले तो आपको अपने घर से हमें शुरुआत करनी होगी कि जब बच्चे घर में पलते बढ़ते हैं उसी समय उनको ये एक माइंडसेट बनाना होता है कि भाई लड़की हो या लड़का दोनों समान अच्छे स्कूल में जाएंगे, दोनों एक तरह के स्कूल में जाएंगे और दोनों की शिक्षा दीक्षा एक समान होगी, ताकि आगे चल के दोनों ही एक अच्छे नागरिक बन सके।
0: बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, और इसके साथ मैं और भी जोड़ना चाहूंगी, लड़की जा रही है अगर किचन में तो लड़के को भी सीखना चाहिए रोटी बनाना, क्योंकि आज के समाज में हम लोग देख रहे हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही काम करने निकल पड़ रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव आया है पढ़ाई के मारे, पुरुषों को भी पूरी उनकी मदद करनी चाहिए, डिविजन ऑफ लेबर होना चाहिए, वो भी कमा रही हैं। तो पहले बात समझ में आती थी कि भाई किचन संभाल रही है, पर आज तो बाहर जाके कमा रही है पैसा, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनका ही काम नहीं है कि पूरा घर संभालें बाहर और अंदर, तो ये पूरा डिविजन ऑफ लेबर होना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण के बाद में जिस तरह से गायत्री सिंह जी ने बताया, और इनकी बातें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इस तरह के कार्य ये करती हैं और समाज में अलग अलग जगहों पर जाकर इन्होंने देखा है, समाज को समझा है, और उन्होंने अपने अनुभव से ये विचार हमारे सामने साझा किए।
0: एक लास्ट में बोलना चाहूंगी कि कितनी विडंबना है, यहाँ पे भारतवर्ष में देवी की पूजा करी जाती है और आज हम उसी देवी के बारे में बात कर रहे हैं कि
1: बिल्कुल
0: सोचने की बात है, मैं पिताओं को सोचने के लिए छोड़ रही हूँ, उसका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए।
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि जो शक्ति की स्रोत है देवी, तो खुद सशक्त तो वो है ही, लेकिन आज जरूरत है, समाज में इसकी आवश्यकता आन पड़ी है कि हम अपने सोच में बदलाव लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमिदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
8: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
7: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
9: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
7: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
10: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
11: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and

0: Investigation is underway. In another fire incident, three people lost their lives and several others sustained injuries in Bihar. The incident took place after a massive fire broke out at a private hospital located under the jurisdiction of the Brahmapura police station in Muzaffarpur last night. Muzaffarpur District Magistrate Subrat Kumar Sen confirmed the deaths and stated that a number of patients remain in critical condition. And in sports, in football, hosts India have booked their place in the final of the SAF Women's Championship after defeating Bhutan 1-0 in the semi-final at Margao in Goa yesterday. Samfida Nongroom scored the match-winning goal in the 58th minute to help India move into their first SAF Women's Championship final in 6 years. Five-time champions India will now face defending champions Bangladesh in the title clash on Saturday at 6:30 p.m. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Anuja. The headlines in all the dailies are full with the tragic news of one of the deadliest fires in Delhi in recent years. Hindustan Times writes, safety gaps spark another tragedy as 21 die in blaze that swept through the five-story hotel located in a narrow lane crowded locality in South Delhi. An editorial in the Hindu writes on how India scaled its startup industry from 2016 to 2025. The Startup India scheme has truly come of age due to the supportive policy environment, robust startup growth and a positive investment climate. Cabinet backs ordinance to ease tax rules for foreign investors in some securities, states the Times of India. The Economic Times comes up with a story on domestic travel demand remains strong despite rising fuel costs and airfares and fewer flights. Under the headline, summer travel plans take no break. And finally, the Tribune writes about a memorable moment when the Tibetan spiritual leader, the 14th Dalai Lama, was presented with a Grammy Award won by his audiobook Meditations, The Reflections of His Holiness. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Kerala and Mahi today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन तेज करने का दिया निर्देश। पारंपरिक शिल्पकारों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रक्षा उत्पादन में एमएसएमई की बढ़ेगी भागीदारी। झारखंड के उद्यमियों को मिलेगा रक्षा क्षेत्र में नया अवसर। जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी सहमति, अंतिम फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक तेज हवा, वज्रपात और गर्जन की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और गोवा में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। खिताब के लिए बांग्लादेश से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने झारक्राफ्ट के उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पर्यटन स्थलों पर बिक्री को प्रोत्साहित

0: स्थापित करने पर जोर दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में डिफेंस कॉन्क्लेव की स्मारिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। श्री सेठ ने झारखंड के उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
1: देखो, देश के अंदर हर चीज इंडिजिनस की ओर बढ़ी है, मतलब प्रधानमंत्री जी का जो से है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, उसी स्वदेशी के भाव को लेकर हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में रक्षा विभाग भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 25-26 का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 38,424 करोड़ रुपीज गया।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बोकारो में धनबाद और बोकारो से संबंधित 20 शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने बीसीसीएल भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिकायतों का त्वरित समाधान आयोग की प्राथमिकता है।
2: बोकारो और धनबाद मिलाकर के 20 मामले थे, अलग अलग मामले थे, कुछ सर्विस मैटर भी थे, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हैं और विकास से संबंधित मामले थे। कई लोग उनका जमीन अधिग्रहण कर लिया गया था और माइनिंग भी हो गया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिली। आयोग के संज्ञान में आया और आयोग ने दोबारा तिबारा हियरिंग करने के बाद में आज वो केस सक्सेस हो गए, उनका जमीन क्लियरेंस हो गया।
0: रांची के गोपाल प्रसाद बर्मन पहले एक छोटी चाय की गुमटी चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन सीमित पूंजी के कारण व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। गोपाल का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिले क्रमिक ऋण का उपयोग कर उन्होंने पहले चाय नाश्ते का कारोबार बढ़ाया और बाद में अटल स्मृति वेंडर मार्केट में कपड़ों की दुकान शुरू की।
3: पहला तो कि ये लोन रेडी पटरी वालों के लिए था, वो मैं छोटा सा चाय का दुकान चलाता था तो सोचा अगर कुछ पैसा मिल जाता तो इससे हमारा व्यवसाय में प्रगति होता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है हम जैसे लोगों के लिए मील का पत्थर है और इनकी सहायता लेते हुए अपने व्यवसाय को आगे से आगे ले जाने का कोशिश करें तो वो सफलता जरूर हासिल।
0: रांची नगर निगम ने हरमू नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए मापी अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर वार्ड 23 के हिंदपीढ़ी स्थित हरमू नदी तट का भौतिक सत्यापन कर अतिक्रमण की श्रेणी में आने वाली संरचनाओं को चिन्हित किया गया। निगम ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य आगे भी जारी रहेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के मुद्दे पर गठित मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सहमति नहीं बन सकी। समिति के अधिकांश सदस्यों ने इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया, जबकि कुछ मंत्री इसके पक्ष में रहे। अब समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी। इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ में संस्कृत भारती की ओर से 7 दिवसीय संस्कृत भाषा संवर्धन आवासीय शिविर की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉ. सरोज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में पूरे राज्य से लगभग 150 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई। घटना में मृतक की बेटी, माता और पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। विधायक डॉ. नीरा यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस पर पूर्व शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
4: इसमें पूरी साजिश उस थाना प्रभारी की है, जिनको बार बार आगाह किया जाने के बाद में भी वो फोर्स नहीं भेजे, ना खुद गए और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिलाए। अगर उनकी माँ को जब मिट्टी के अंदर दफनाया जा रहा था उस समय कार्रवाई करके वो पकड़ के लाए रहते, जो जान रहे कि कौन उसको कर रहा है, तो इतनी बड़ी आज घटना नहीं घटती।
0: हजारीबाग के कटकमदाग में दो नाबालिग भाई बहन के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी ने बच्चों को मोबाइल दिलाने के बहाने स्कूटी पर बिठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या कर दी।
5: इस घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही थी और इसमें संजीत पासवान करके एक अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी एफएसएल टीम ने आकर किया है।
0: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में फायरिंग, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मेड़ा के अनुसार विशेष जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
6: कार्रवाई हुई है, इसमें एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक खोखा पिलेट और एक स्कूटी और 4 एंड्रॉइड मोबाइल भी इनके द्वारा इनके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इनके पास से प्राप्त हुए। और इसी प्रकार से इसमें मतलब काफी 3 दिन के अंदर अंदर में ये इस प्रकार की कार्रवाई की गई है और बहुत एक कुछ गैंग से इनका संबंध भी सामने आने की संभावना है।
0: मौसम केंद्र ने 3 से 8 जून के बीच राज्य के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात और गर्जन की संभावना जताई गई है। फुटबॉल। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम 6 साल बाद टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। मैच का एकमात्र गोल 58वें मिनट में सनफिदा नोंगराम ने किया। पहली बार की चैंपियन भारतीय टीम का फाइनल में 6 जून को बांग्लादेश की टीम से मुकाबला होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने लिखा है 6 कमरों की अनुमति, चल रहा था 6 मंजिला होटल, आग से 11 विदेशी सहित 21 जिंदा जले। दैनिक जागरण ने लिखा अवैध होटल में आग, 21 की मौत। हिंदुस्तान की सुर्खी है रातू में छेड़छाड़ के आरोपी को भीड़ ने मार डाला। दैनिक भास्कर की लीड है ममता को झटका, 58 विधायकों का असली तृणमूल होने का दावा। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन तेज करने का दिया निर्देश। पारंपरिक शिल्पकारों के प्रशिक्षण को बढ़ाने पर जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा रक्षा उत्पादन में एमएसएमई की बढ़ेगी भागीदारी। झारखंड के उद्यमियों को मिलेगा रक्षा क्षेत्र में नया अवसर। जेटेट में भोजपुरी, मघी और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी सहमति, अंतिम फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक तेज हवा, वज्रपात और गर्जन की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और गोवा में खेले गए सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। खिताब के लिए बांग्लादेश से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए लोकगीतों का हमारे कार्यक्रम लोक रंग। आज आप सुनेंगे खोटा लोकगीत करुणा देवी और साथियों से।

0: आप सुन रहे थे खोटा लोकगीत करुणा देवी और साथियों से। अब आज का लोक रंग कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनें फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रसरंजन पहले संदेश।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा।
4: 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

आज का रेजिडेंशियल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं गिटार पर राग नट भैरव, आलाप और जोड़ के बाद दो गति प्रस्तुत हैं। दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। कलाकार हैं GN उर्मा, तबले पर साथ दिया है श्यामानंद झा ने और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गिटार पर राग नट भैरव, आलाप और जोड़ के बाद दो गतें, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध थीं। कलाकार जीएन वर्मा, तबले पर साथ दिया था श्यामा ने झा ने और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी ने। अब आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बताते चलें अपने विशेष परिचर्चा के बारे में। आज प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे विशेष परिचर्चा, हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। प्रतिभागी हैं पंकज मित, देवव्रत सिंह, बलबीर दत्त और शंभुनाथ चौधरी। प्रस्तुति प्रशांत गौरव की, संयोजन प्रभु शरण का। याद रखें प्रातः 11 बजे। और अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे हम लेकर आएंगे कार्यक्रम विज्ञान जगत, वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत। वचन एवं सहयोग वसंत कुमार, प्रस्तुति प्रभु शरण की। पहले संदेश।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए कितने फायदेमंद है इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पर कितना बड़ा खतरा है इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं।

0: और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। और सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन का जो उपयोग है वो पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है इसके बारे में। वर्तमान समय में पेट्रोल, डीजल और गैस की जो समस्या है उससे घिरे हुए हैं और हर दिन हमें इससे जूझना पड़ रहा है। आज इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इन सभी चीजों के होने के बावजूद हम क्या ऐसी चीज है जिसे अपनाकर पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं और पेट्रोल, डीजल और गैस में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उससे बच सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं। आज दुनिया भर में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण भी बन चुका है। यही कारण है कि अब दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल या डीजल के बजाय बिजली से चलने वाली बैटरियों का उपयोग करते हैं। इनमें कार, बस, बाइक, स्कूटर और यहाँ तक कि ट्रक भी शामिल हो चुके हैं। इन वाहनों के उपयोग से पर्यावरण को बहुत सारे लाभ तो होते ही हैं, लेकिन हमें पैसा भी बचाने का अवसर मिल जाता है। सबसे बड़ा जो लाभ है वो है वायु प्रदूषण में कमी आना। पारंपरिक वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अलग-अलग प्रकार के हानिकारक गैस निकलते हैं जो पर्यावरण को तो प्रदूषित करते ही हैं, हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों से चलने के दौरान कोई धुआं नहीं निकलता, इसमें शहरों की हवा अधिक साफ बनी रहती है और किसी प्रकार की कोई बीमारी भी हमें नहीं लग सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। वैज्ञानिकों की अगर हम बात माने तो जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण कार्बन उत्सर्जन है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको नियंत्रित की जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज्यादा आवाज करती है। इससे सड़कों और शहरों में शोर कम होगा और लोगों को शांत वातावरण भी मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन ऊर्जा दक्षता के मामले में भी काफी बेहतर है। ये कम ऊर्जा में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। इनका पर्यावरणीय लाभ भी बढ़ जाएगा और अगर हम बात करें तो हम जितना पैसा पेट्रोल डीजल में खर्च कर देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें तो हमारा वो पैसा बच सकता है और हम उस पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अब अलग-अलग तरह की योजनाएं चला रही है। चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी लोगों को दी जा रही है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना। यदि हम अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं तो आने वाली पीढ़ियों को हम बेहतर और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। तो हमने अभी बात कर ली कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है और कितने जरूरी हो चुके हैं ये। अब बारी है भेंटवार्ता की और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, मानव जीवन पर खतरा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर भी एस राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सुदूर संवेदन एवं भू सूचना विभाग BIT मेसरा में। सर सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: नमस्ते जोहार।
0: और सर जिस विषय पर आज हम लोग बात कर रहे हैं इससे पहले भी कई बार इस चीज पर हम लोगों ने बात की है और इस बार बात करने का सबसे खास जो वजह है वो ये है कि 5 जून को हम सभी इस बार विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हमें इस विषय पर थोड़ा गंभीर होकर बातचीत करना जरूरी है। और जैसा कि पर्यावरण से संबंधित विषय है तो हम पर्यावरण प्रदूषण क्या है सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है यही है, और इसके प्रमुख कारण क्या है, प्रकार क्या है, इसके बारे में बताएं।
1: तो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे बहुत ही संवेदनशील विषय पर वार्ता करेंगे और इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो ये पृथ्वी है जो एकमात्र प्लानेट है जिसपे मानव जीवन है और ये आज के समय में हमारी ही गतिविधियों से मानव जीवन खतरा महसूस कर रहा है, जो कि पर्यावरण मुख्य तौर पे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो पर्यावरण बना हुआ है जिसमें हमारे जीवन सुरक्षित रहता है जिसकी वजह से आज वो ही खतरे में है और उसके खतरे की वजह हम सब का जीवन शैली है मुख्य तौर पे। और उसमें हम अगर देखें तो मुख्य तौर पे हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी वायु को जो कि एक जीवन प्रणाली के लिए मुख्य अवयव है उसको हम कैसे दूषित कर रहे हैं और हम इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारी जब वायु दूषित हो रही है तो उसकी वजह से आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है
0: जी।
1: और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है मतलब पृथ्वी का जो हमारे प्लेनेट का आनुपातिक जो तापमान है वो करीब करीब हमने अभी तक इंडस्ट्रियलाइज प्री इंडस्ट्रियलाइज जो बेस लाइन है 1850 के बाद में लास्ट 150 साल के अंदर हमारी पृथ्वी की तापमान 1.3 to 1.4 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है और इसकी लिमिट हमने निर्धारित कर रखी है वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस। जिस हिसाब से हमारी गतिविधियां चल रही है और अगर समय रहते हम चेते नहीं तो ये हम क्रॉस कर जाएंगे और अगर हम इसको क्रॉस कर जाते हैं तो वापिस उसी स्थिति में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी को। इसलिए आज के समय में ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं और हमारे जीवन को हम सुरक्षित बनाएं इस पृथ्वी पे कि ये वातावरण हमारे रहने लायक रहे।
0: आपने जिस तरीके से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है
1: जी।
0: दिन प्रतिदिन उसके बारे में जिक्र किया और
1: जी।
0: इस साल की जो गर्मी है वो भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिली
1: जी।
0: तो ये हर साल कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है इसमें
1: जी। मैं वही बताना चाहूंगा कि जो हमारे वायु प्रदूषण हो रहा है इसके साथ साथ हमारे वातावरण में जहरीली गैसेस उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान बढ़ने से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमारे ग्लेशियर पिघलने से हमारा समुद्र का तल जो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है और हर साल ये पहले करीब करीब 2 to 3 millimeters बढ़ रहा था अभी 4 millimeters पर वर्ष बढ़ने लग गया और ऐसे ही बढ़ता रहा तो जो समुद्र के जीव है और समुद्र के पास में रहने वाले कोस्टल एरियाज में रहने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे प्लैनेट की है उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा वो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि आज के समय में हम हर चीज के लिए प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। आप सभी चारों तरफ देख रहे होंगे कि किस तरह से प्लास्टिक हम बिखेर रहे हैं चारों तरफ हमारे गांव घर तक प्लास्टिक पहुंच गई है और हम अपनी सुविधा के लिए उस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इस पृथ्वी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और वो हमारे समुद्री जीवों के लिए हमारे गाय और जितने भी पशु पक्षियों के लिए वो सब के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
0: आपने प्लास्टिक की बात की है लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वायु प्रदूषण जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण
1: जी
0: ये जो प्रदूषण है तीन
1: जी
0: मानव जीवन पर इनका कैसे असर देखा जा रहा है और इससे क्या नुकसान हो सकता है पृथ्वी को और मनुष्य को
1: जी। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे शहरीकरण हो रहा है ग्रामीण हमारी जीवन शैली थी उसको हम छोड़ के आज शहरों की तरफ जा रहे हैं। हाँ शहरों की तरफ जाने का एक कारण है वहां पर हमें रोजी रोटी मिलती है वहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं हम आज इतने सारे हम व्हीकल यूज कर रहे हैं वाहन यूज कर रहे हैं हमारे हर काम के लिए वाहन यूज कर रहे हैं। आप सड़कों पर देखोगे तो कहीं पर जगह नहीं है और हम चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइज हमारी सुविधा के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया इंडस्ट्री बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ आप देखिए कितना वायु प्रदूषण हो रहा है उससे कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और ध्वनि प्रदूषण के वजह से और वायु प्रदूषण की वजह से हमारे लंग्स के अंदर डिजीज हो रही है कैंसर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे आज के हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं जवान लोगों में हार्ट अटैक हो जा रहे हैं और कितने रेस्पिरेटरी लंग्स 60 साल से ऊपर के आदमी और बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है जिसमें हमारे पृथ्वी की 99% पॉपुलेशन है वो PM2.5 से अफेक्टेड है। PM2.5 एक पार्टिकुलेट मैटर जिसको बोलते हैं बहुत ही फाइन डस्ट जो हवा में चली जा रही है हमारी गतिविधियों की वजह से वो हमारे श्वसन तंत्र में जा रही है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जिनका नाम भी नहीं सुना था वो आज हमारे देखने को मिल रही है।
0: तो इन सभी चीजों को हम नजरअंदाज करके फिर भी वही काम हर दिन हर समय करते रहते हैं
1: जी
0: और सरकार इस चीज को लेकर गंभीर है लेकिन आम व्यक्ति जब तक इसमें सहयोग नहीं करेगा अपने स्तर पर
1: हाँ।
0: तब तक तो ये ठीक करना शायद अकेले बस की बात नहीं है लेकिन प्लास्टिक की बात आपने चूंकि हाँ। थोड़ी देर पहले की थी तो आम तौर पे हम सभी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं उसके दोषी हम भी हैं
1: हाँ।
0: तो प्लास्टिक को छोड़ने के लिए सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है जिससे पर्यावरण को फायदा हो और हमें किसी तरह की बीमारी ना हो।
1: प्लास्टिक को छोड़ने के लिए मैं ये कहूंगा कि आपके स्थानीय स्तर पे जो भी पुराने हिसाब से हम कपड़ा का बैग लेके चलते थे वनों से जो हमको हमारे जो डिकम्पोज होने वाली चीजें हैं वो उसके बैग हम यूज करें और सिंगल यूज प्लास्टिक खास तौर पे अभी सभी की अपील यही है कि जो प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल की और फेंक देते हैं हम उस प्लास्टिक को तो कम से कम मैं ये निवेदन करूंगा सभी इस पर्यावरण दिवस पे कि आप उसको छोड़ दीजिए। और आप पुराने जो हमारा समाज में थैला यूज

0: पानी है। आज की डेट में बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये पता चला है कि हर पीने के पानी में प्लास्टिक कंटेंट है, बहुत ही छोटा माइक्रो लेवल का प्लास्टिक कंटेंट है, वो हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे भोजन प्रणाली में प्लास्टिक घुस चुका है। इसलिए ये पर्यावरण दिवस पे आप सभी को शपथ लेना चाहिए कि कम से कम मैं सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करूंगा, और प्लास्टिक इस्तेमाल अगर करनी है तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करेंगे। मुख्य तौर पर तो मैं यही कहूंगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही नहीं है सिंगल यूज का, तो खास तौर पे।
1: लेकिन आमतौर पे जैसे कि मार्केट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो बंद पैकेट के खाने की चीजें आती हैं वो सारी प्लास्टिक में है। लेकिन प्लास्टिक का कोई दूसरा उपाय लोगों
0: हमारे जीवन में ये प्लास्टिक घुल चुकी है और उसको हम दूर करना हमारे लिए अभी संभव नहीं दिख रहा है, और इसका अल्टरनेट लोग निकाल रहे हैं, विकल्प इसका निकाल रहे हैं, दूसरी इस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जिसको फिर उसकी मृदा बन जाए, भूमि में इस वापस मिल जाए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज का मतलब जो प्लास्टिक हमने एक बार ली और फिर फेंक, दोबारा इस्तेमाल नहीं होती है, वो प्लास्टिक तो हमको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसकी जगह हमें अपने बैग इस्तेमाल करने चाहिए।
1: आमतौर पे अगर देखा जाए सर, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज को लेकर जानकारी का जो अभाव है उसके वजह से लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं।
0: जी, और मैं ये देख रहा हूँ चारों तरफ, आजकल हमारी सब्जी मंडी में भी पहले कोई भी प्लास्टिक नहीं मांगता था, आजकल हम जाते हैं और सीधा बोलते हैं कि प्लास्टिक में देखे दे दीजिए, तो दुकानदार के लिए ये अपने ग्राहक को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो जल्दी से प्लास्टिक में उसको सामान दे देता है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को बचाएं, हमारे रहने लायक इसको रहने दें, तभी संभव है जब आप सब ये शपथ लेंगे और अंदर से सोचेंगे कि मुझे ये प्लास्टिक यूज नहीं करना है।
1: लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में आमतौर पर एक आम आदमी वो क्या भूमिका निभा सकता है और कैसे योगदान दे सकता है।
0: आम आदमी पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक काम तो ये कर सकता है कि हर आदमी कम से कम 2-4 पेड़ लगाए अपने जीवन में और उनको बड़ा होते हुए देखे कि ये मैंने पेड़ लगाया था और ये आज बड़ा हो रहा है, तो उससे हमारी धरती के ऊपर हरियाली बढ़ेगी, और हरियाली बढ़ेगी तो वायु प्रदूषण कम होगा, और ये फॉसिल फ्यूल जो है जिससे हमारे वाहन चल रहे हैं, दुपहिया चौपहिया जो भी वाहन है, ये हम धरती से पेट्रोल गैस निकाल के और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आज उनको चला रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, और इसको कम से कम इस्तेमाल करें, जहां जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, इसका अल्टरनेट तो हमको खोजना पड़ेगा।
1: तो इस साल 5 जून को पर्यावरण दिवस है, और अगर आप पर्यावरण दिवस को इस तरह से मनाना चाहते हैं कि पृथ्वी को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, तो एक पौधा लगाएं और उस पौधे को न सिर्फ लगाएं बल्कि उसे पानी दें, उसे सुरक्षित रखें, और एक बड़ा वृक्ष बनने तक उसकी रक्षा करें, तभी आपका पौधा लगाने का जो संकल्प है वो पूरा हो पाएगा और पृथ्वी को शायद आप थोड़ी सी मदद दे पाएंगे। तो सर, आपने ढेर सारी जानकारी दी, अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सभी को जोहार।
1: अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, मानव जीवन पर खतरा, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में थे डॉक्टर वी एस राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर बीआईटी मिश्रा, सुदूर संवेदन भू सूचना विभाग। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए, चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे, तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और आज हम पर्यावरण और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के तौर तरीके और बहुत सारी चीजों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में भी बात करेंगे और उनके बारे में आपको जानकारी देंगे जिनके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद भी है। और हम जिस महान वैज्ञानिक की आज बात करने वाले हैं उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बोस के 7 बच्चों वाले परिवार में सबसे बड़े सत्येंद्र नाथ बोस थे। इनके पिता ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के तकनीकी स्टाफ के सदस्य के रूप में काम करते थे। बोस हाई स्कूल और कॉलेज दोनों में बहुत बुद्धिमान छात्र के रूप में ख्याति प्राप्त थे। इन्होंने 1909 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और मेरिट सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इंटरमीडिएट विज्ञान कार्यक्रम में दाखिला लिया, जहां इन्हें प्रफुल्ल चंद्र रे, शारदा प्रसन्न दास और जगदीश चंद्र जैसे ज्ञानियों ने पढ़ाया था। बोस ने 1913 में संयुक्त गणित में विज्ञान से स्नातक के साथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। सत्येंद्र नाथ बोस को 1920 के दशक की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम, बोस सांख्यिकी की नींव विकसित करने और बोस कंडेंसेट के सिद्धांत के लिए काफी प्रसिद्धि मिली थी। अगर हम इनके उपलब्धियों के बारे में बात करें तो विश्व परिचय रविन्द्रनाथ टैगोर का एकमात्र विज्ञान कार्य 1937 में सत्येंद्रनाथ बोस को समर्पित किया गया था। भारत सरकार ने 1954 में बोस को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें 1959 में एक विद्वान के रूप में देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ जब उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर नामित किया गया। इस पद पर वे 15 वर्षों तक कार्य करते रहे। नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की स्थापना 1986 में सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में भारत सरकार की संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा साल्ट लेक कलकत्ता में की गई। बोस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और इंडियन फिजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के उपाध्यक्ष के तौर पर भी ये कार्य कर चुके और इन्हें 1958 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में भी चुना गया था। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इन्हें गॉड ऑफ पार्टिकल के नाम से भी पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है और ये काफी प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों में इनका नाम शामिल है। तो हमारे देश में ऐसे महान महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने खोज और आविष्कारों से पूरी दुनिया को ये बताने का काम किया है कि भारतीय वैज्ञानिक किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं है। और हमारे देश में ऐसे महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है जिनके द्वारा किए गए आविष्कार और खोजों ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया है सोचने का। तो आज हमने आपको बता दिया कि सत्येंद्र नाथ बोस ने किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था और किन किन चीजों के लिए उन्हें दुनिया याद करती है। और अब बारी है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। तो प्लास्टिक सर्जरी आज की दुनिया में किए जाने वाले सबसे अधिक सर्जिकल ऑपरेशनों में से एक मानी जाती है। सामान्य तौर पर प्लास्टिक सर्जरी क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि शरीर की पुनर्स्थापना या परिवर्तन करने वाली एक शल्य चिकित्सा विशेषता है। दुनिया भर में ऐसी कई हस्तियां रही हैं जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद नाटकीय रूप में बदल गईं। शुरुआती लोगों के लिए सर्जरी को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, नाम पुनर्निर्माण सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। यदि किसी व्यक्ति को मानव शरीर के किसी हिस्से का पुनर्निर्माण यानी कि उसे फिर से ठीक करना है या कार्य प्रणाली में सुधार करना है तो वे पुनर्निर्माण सर्जरी से गुजरते हैं। पुनर्निर्माण सर्जरी में क्रैनियोफेशियल सर्जरी, हाथ की सर्जरी, माइक्रो सर्जरी और जलने का उपचार शामिल है। वहीं दूसरी ओर शरीर की खूबसूरती को निखारने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जाती है। ज्यादातर लोग अपना रूप बदलने के लिए ही कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। पॉप के किंग और मशहूर स्टार माइकल जैक्सन प्लास्टिक सर्जरी के बाद काफी बदल गए थे और बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा भी होगा, इसलिए आप उनके बारे में जानते भी होंगे और प्लास्टिक सर्जरी कितनी फेमस है ये भी जानते हैं। प्राचीन लोगों के लिए सर्जरी कोई नया विषय नहीं था। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार प्रमुख रूप से भारत में हुआ था ऐसा माना जाता है। प्राचीन सर्जन सुश्रुत ने 6वीं शताब्दी में प्लास्टिक और मोतियाबिंद सर्जरी के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारतीय वैज्ञानिक सुश्रुत संहिता ने पहली सर्जरी की थी। उस समय वे शल्य चिकित्सा उपकरणों के रूप में चकमक पत्थर,
कांच जैसा एक चमकदार भूरा या काला पत्थर हुआ करता था जिसका वो उपयोग करते थे, और मछली के दांत और तेज कांटे सर्जरी करने के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी भारतीयों के द्वारा 2000 ईसा पूर्व से ही की जाती थी। इस तकनीक में योगदान देने में सर्जन सुश्रुत संहिता ने प्रमुख भूमिका निभाई, और आज आधुनिक सर्जरी केवल एनेस्थीसिया की खोज और शरीर में संक्रमण की रोकथाम के कारण ही संभव है। प्लास्टिक सर्जरी की पहली पुस्तक है सुश्रुत संहिता, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा का ही ग्रंथ है। यह 5 खंडों में बटा हुआ है। इसमें पहले खंड में 46, दूसरे खंड में 16, तीसरे में 10, चौथे में 40 और पांचवें भाग में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार सुश्रुत संहिता में कुल 120 अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता में सर्जरी के लिए जरूरी औजारों यानी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी लिखा गया है। जैसे एक भाले नुमा आकृति के औजार हैं जो टूटी हुई हड्डियों एवं अनावश्यक मांस को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे करीब 101 यंत्रों की जानकारी उसमें दी गई है, जिन्हें 6 भागों में बांटा गया है। स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाक यंत्र और उप यंत्र। तो हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्लास्टिक सर्जरी का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, और इससे बहुत सारे लोग फायदा ले रहे हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करवाना या करना इतना आसान नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी देखने में जितनी सुविधाजनक और सरल लगती है, लेकिन उससे कहीं इसमें कठिनताएं हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं लोगों के मन में, और प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कैसे हुई थी, किस देश में इसका जन्म हुआ था, और इनके जो प्लास्टिक सर्जर थे सबसे पहले वो कौन थे, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो आज हमने ढेर सारी बातें आपसे कर ली, ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा कर ली, और हमारी जो स्टूडियो की घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी हमारा जो दायित्व है उसे निभाना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ एक पौधा नहीं लगाना है, बल्कि उस पौधे को पानी देना है, उसे सींचना है, उसे सुरक्षित रखना है और बड़ा होने तक उसकी रक्षा करनी है। तभी हम पर्यावरण को अपना योगदान सही तरीके से दे सकते हैं। इसलिए इस पर्यावरण दिवस पर आप भी एक पौधा लगाएं और उसे सुरक्षित रखें, उसे बड़ा करें, ताकि वो दुनिया में अपने योगदान से इस पृथ्वी को बचा सके। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, जिसमें चर्चा हुई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद। आज भेंटवार्ता हुई, आज के भेंटवार्ता का विषय था बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पर खतरा। भेंटवार्ताकार थे प्रोफेसर वीएस राठौर और भेंटकर्ता थे बसंत कुमार। साथी जीवन परिचय में आज सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। इसके साथ कार्यक्रम विज्ञान जगत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम जोहार रांची बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम जोहार रांची सुनने वालों को मेघना का जोहार नमस्कार। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि जीवन की हर परिस्थितियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे। कई बार जीवन की कठिनाइयाँ हमें विचलित तो करती है, तो आज इस पर आज का सुविचार सुनिए। आज का सुविचार है, जिस मनुष्य में संतुष्टि के अंकुर फूट गए हो, वो संसार के सुखी मनुष्यों में गिने जाते हैं। कहा भी गया है कि संतोष में परम सुख है। वास्तव में संतोष जीवन के प्रति आंतरिक सकारात्मक दृष्टिकोण है। यह भीतरी शांति का प्रतीक है और वास्तव में संतोष का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहते हुए परिणाम से खुद को विचलित नहीं होने देना। जीवन शिक्षा में संतोष कोई मार्ग नहीं, बल्कि जीवन यात्रा का आनंदमयी अनुभव है। हम बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, जबकि संतोष हमें ये बताता है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और आने वाला कल हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए मेरे पास जो है पर्याप्त है। यह एहसास जिंदगी के कश्मकश को कम करता है और साथ ही हमारी मानसिक ऊर्जा को बिखराव से बचाकर एकाग्रता की ओर ले जाता है। वर्तमान में जीना ही संतोष का एकमात्र मार्ग है। वर्तमान के क्षण का पूरा उपयोग करते हुए संतोष के साथ जीना एक मानसिक अभ्यास है, जो हमें उन विचारों से मुक्ति दिलाता है जो हमें व्यर्थ के दुखों में उलझा कर रखता है। जीवन हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है और हर अनुभव आपको अपने भीतर के किसी नए हिस्से से मिलाता है। शायद जिंदगी के सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम खुद को लगातार खोजते रहते हैं, आँखों में सपने लिए जिंदगी से मिलते रहते हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: संदेश के बाद कार्यक्रम जुहार में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कार्यक्रम के अगले सेक्शन में चलते हैं और बात करते हैं मौसम के बारे में। झारखंड में अगले कुछ दिनों में के दौरान मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग राज्य केंद्र के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो पिछले कुछ दिनों से गर्मी की तपिश तो ज़रूर कम हुई है, बीच बीच में बारिश होने के कारण मौसम भी सुहावना हो गया है, लेकिन इस दौरान थोड़ी सी सतर्कता भी ज़रूरी है। आप हमेशा अपने साथ छाता या कुछ लेके साथ में चले ताकि बीच रास्ते में अगर बारिश हो जाए तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही इस तरह के मौसम में उमस भी काफ़ी बढ़ जाती है, तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। साथ ही एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जुहार रांची। तो चलिए जानकारियों से भरे इस कार्यक्रम में आज के दिन क्या है खास, इसकी आपको जानकारी दे दें। आक्रमकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार होने वाले बच्चों के अधिकारों और पीड़ा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस महत्वपूर्ण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 अगस्त 1982 को की गई थी। वास्तव में इस दिवस की स्थापना मूल रूप से 1982 के लेबनान युद्ध के मासूम बाल पीड़ितों की पीड़ा देखते हुए की गई थी। समय के साथ इसका दायरा बढ़ाकर दुनिया भर के उन सभी बच्चों को शामिल कर लिया गया जो युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और किसी भी प्रकार की हिंसा, जैसे कि शारीरिक या भावनात्मक हिंसा के वो शिकार हो। इस दिवस के मनाने का मूल उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को पहचानना है तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके शोषण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराना है। अगर आज के दिन के बारे में इतिहास के पन्ने पलटे तो हम देखते हैं कि 4 जून 1917 को अमेरिका में पहली बार प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं हेनरी फोर्ड ने 4 जून 1896 को अपनी पहली गैस संचालित कार का सफलतापूर्वक परीक्षण अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में किया था। 4 जून 1964 को मालदीव के संविधान उस दिन बना था। साथ ही साथ 2003 में आज ही के दिन यानी 4 जून को डोमिनिकन गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमिलिया वेगा को मिस यूनिवर्स बनाया गया था। अगर आज के दिन की बात करें तो आज बहुतों का जन्म दिवस भी है। तो आज के दिन उन सभी लोग जिनका आज जन्म दिवस है उन्हें विशेष शुभकामनाएं। इस में सबसे पहला नाम आता है भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिचर्ड एलन की, जिन्होंने आज ही के दिन 1902 में जन्म लिया था। वहीं प्रख्यात पर्यावरणविद, परोपकारी और पिंगल वाड़ा के संस्थापक भगत पूरन सिंह का भी जन्म आज ही के दिन 1904 में हुआ था। साउथ और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री प्रिया मणि ने भी आज ही के दिन 1984 में जन्म लिया था। और प्रसिद्ध भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी आज के दिन यानी 4 जून 1985 को जन्म लिया था। वहीं अनिल धीरूभाई अंबानी जो एक भारतीय व्यवसायी है, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1959 में हुआ था। वे रिलायंस समूह के अध्यक्ष थे जिसे जुलाई 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग होने के बाद बनाया गया था। और इस फेहरिस्त लिस्ट में अगर हम मशहूर अभिनेत्री और भारतीय सिनेमा की दिग्गज अदाकारा नूतन की बात न करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 4 जून 1936 को भारतीय सिनेमा की दिग्गज और मशहूर अभिनेत्री नूतन ने भी जन्म लिया था। उन्हें उनके सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें बंदिनी, सुजाता, सीमा, मेरी जंग, अनाड़ी सहित अनेक फिल्मों में उनकी सदा बहार अदाकारी के लिए उन्हें जाना जाता है। तो आइए उन्हीं पे फिल्माया एक बेहद ही अच्छा सा गाना आपको सुनवाते हैं।

हम सब चाहते हैं कि हम सब साथ में रहे, पर कुछ लोग हमें जीवन यात्रा में बीच में ही छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। पर अलविदा कहने के बाद भी वे अपने सत्कर्मों के कारण आज भी याद किए जाते हैं। तो बात करते हैं उनकी जिनका निधन आज के दिन हुआ था। आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध अंचिता लक्ष्मीपति का निधन आज के ही दिन यानी 4 जून 1962 को हुआ था। मोहम्मद अली विश्व

प्रसिद्ध अमेरिकी मुक्केबाज जिन्हें बॉक्सिंग लेजेंड भी कहा जाता है, उनका भी निधन आज के ही दिन यानी 4 जून 2016 में हुआ था। साथ ही हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का निधन भी आज के ही दिन 2016 में हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुलभा देशपांडे की। बातें तो अभी और भी हैं, पर हमारे स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को अब यहीं विराम देना होगा। तो इसीलिए कार्यक्रम की होस्ट और आपकी दोस्त मेघना को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए विशेष परिचर्चा, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। इस प्रस्तुति इसकी विशेष परिचर्चा की प्रस्तुति प्रशांत गौरव की है और संयोजन प्रभु शरण का है।
1: ये आकाशवाणी रांची है, प्रस्तुत है एक विशेष परिचर्चा, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। इस परिचर्चा के प्रतिभागी हैं झारखंड के वरिष्ठतम पत्रकार एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री बलवीर दत्त, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के पत्रकारिता विभाग के प्रमुख प्रोफेसर देवव्रत सिंह, प्रेस क्लब रांची के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ चौधरी, और इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी रांची के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी एवं कथाकार पंकज कुमार मित्र।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का जो सफ़र एक लंबे समय से चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए, और आज हमारे स्टूडियो में पत्रकारिता के क्षेत्र के कई दिग्गज उपस्थित हैं। सबसे पहले तो बलवीर दत्त जी, जो सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं, शायद झारखंड ही नहीं भारत के भी, और सक्रिय पत्रकारों में अभी तक इस उम्र में भी सक्रिय हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो बलबीर दत्त जी उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में, आपको नमस्कार सर हमारा।
1: नमस्कार।
0: देवव्रत सिंह जी उपस्थित हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के जनसंचार और पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में देवव्रत जी। और शंभुनाथ चौधरी उपस्थित हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई अखबारों और पोर्टल्स में काम करने के बाद आजकल INS न्यूज़ एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। तो आपका भी शंभू जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष हो गए, जिस समय 1826 में ये 30 मई को उदंत मार्दंड का प्रकाशन शुरू हुआ था, तो जुगल किशोर शुक्ल जी ने शायद ही सोचा होगा कि 200 वर्षों में ये जो छोटा सा प्रयास था उस समय का, वो इतना बड़ा रूप ले लेगा कि वो अब हजारों करोड़ के व्यवसाय के रूप में भी ये सामने आ जाएगा और पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता इतने बड़े फलक पर पहुंच जाएगी, इसकी कल्पना भी शायद नहीं की होगी। तो ये जो समय बीता है हिंदी पत्रकारिता के विकास की, जो ये यात्रा हुई है, ये यात्रा कैसी रही है, इसमें कैसे उतार चढ़ाव आए हैं, कैसे इसका स्वरूप बदला है, और ख़ास तौर पे जब शुरुआती दौर में सामाजिक राजनीतिक जागरण के उपकरण के रूप में ये इस्तेमाल हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े हथियार के रूप में ये काम इसने काम किया, और स्वतंत्रोत्तर भारत के नवनिर्माण के में भी इसका योगदान रहा, साथ साथ बहुत आलोचनात्मक रुख भी रहा पत्रकारिता का। बाद में 1990 के बाद जब से ये बाजार और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रचार हुआ और बाज़ार खोल दिए गए, तो उसके बाद से इसमें स्वरूप में बहुत आमूलचूल परिवर्तन पत्रकारिता के भी इसमें आया है। तो ये जो यात्रा है इस पर हम लोग आज बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले जो इस यात्रा के बहुत लंबे सफ़र में बहुत लंबे समय से साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर दत्त जी। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास है, इतिहास तो कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन इसका जो स्वरूप आज़ादी के आंदोलन के समय जिस तरह से हुआ था और एक मिशनरी मोड में जिस तरह से मिशन के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, तो वो धीरे धीरे कैसे परिवर्तित हुआ, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, इन 200 वर्षों की यात्रा को?
1: गांधी जी ने एक बार कहा था कि राष्ट्रवादी अखबारों के सहयोग और समर्थन के बिना हम आज़ादी की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते थे। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो स्वाधीनता की लड़ाई में तो अखबारों का, भाषाई अखबारों का, ख़ासतौर से हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उस समय जो स्थिति थी उस समय तो ये एक उद्योग या व्यवसाय नहीं माना जाता था, इसे तो एक तरह से एक साधना माना जाता था, और जो लोग अखबार शुरू करते थे, दिलचस्प बात यह है कि आज तो अखबार एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया है। उस समय कई अखबार ऐसे शुरू हुए थे कि अखबार का मालिक, संपादक और पत्रकार 3-in-1 एक ही आदमी है, पीर बावर्ची भिस्ती खर, पैकिंग भी वही करता था खुद ही। तो साप्ताहिक अखबार थे, मासिक थे, पाक्षिक थे, तो दैनिक तो काफ़ी बाद की बात है। तो ये उदंत मार्तंड जब शुरू हुआ तो वो तो बहुत काबिले तारीफ बात है कि किस तरह से वो अपने घर की पूंजी से जैसे तैसे शुरू कर दिया गया, वो पौने दो साल के आसपास करीब चला, तो उसका महत्व नहीं है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सफलता विफलता का उतना महत्व नहीं है, सक्सेस और फेलियर, उसके पीछे जो स्पिरिट है उसका ज़्यादा महत्व है। तो वो जो स्पिरिट थी उसको ऐसा ऐसा कुछ लोगों ने उसको ग्रहण किया और बाद में और भी अखबार निकले, लेकिन ज़्यादातर वो अल्पजीवी होते थे क्योंकि उनको कोई वित्तीय समर्थन प्राप्त नहीं होता था। लेकिन उनकी जो भावना रहती थी और जो देशभक्ति, और उस समय ज़्यादा जोर दिया जाता था सामाजिक चेतना पर, सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं उनको दूर किया जाए, तो ये जो 20वीं सदी के शुरू में जो स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और उसके कुछ अर्सा बाद ये गांधी जी, लोकमान्य तिलक वगैरह इसमें आए, उस समय जो है वो राष्ट्रवाद की लहर जो है वो पूरे देश में चलने लगी और राष्ट्रवादी अखबारों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और उस समय तो बहुत सहज ढंग से, जैसे आजकल है, अभी आजकल तो एडिटर लोग एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठते हैं, तो उस समय तो जैसे तैसे जहाँ भी जगह मिल जाए, वेतन भी तो कुछ होता नहीं था, वो तो खाली काम चलाओ तौर पर रहता था जो भी था। और ऐसे भी क्रांतिकारी संपादक थे और उनको तैयार रहना पड़ता था कि कब जेल जाना पड़ जाए।

0: और कई लोगों को जेल की सजा हुई भी
1: जी,
0: और अखबारों से सिक्योरिटी मांग ली जाती थी कि आप इतना जमा कराइए, मतलब कि वो वित्तीय तौर पर परेशान करने के लिए
1: जी।
0: ऐसे बाबूराव विष्णु प्राडकर दैनिक आज के एडिटर थे, उनके जेब में पिस्तौल रहता था, क्रांतिकारी थे
1: जी।
0: तभी सुनने से लोगों को बहुत ताज्जुब लगेगा, ऐसा तो भगत सिंह ने भी कुछ ऐसा पत्रकारिता की थी
1: जी।
0: गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार था जो प्रताप जो है
1: जी, शायद ही कोई ऐसे नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे जो किसी अखबार से नहीं जुड़े थे या अखबार निकालते नहीं थे उस दौर का, तो यही
0: वो बात तो थी। और यह है कि जो अखबारों की जब बात है तो इसका भी थोड़ा सा उल्लेख किया जा सकता है कि अंग्रेजी के जो अखबार थे ब्रिटिश ओन्ड, उन लोगों को तो कोई वित्तीय समस्या नहीं थी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन वगैरह, तो इन लोगों का अच्छा खासा सर्कुलेशन था, और वो प्रो ब्रिटिश जिसको कहते हैं थे
1: जी।
0: तो उनके साथ
1: जी
0: मुकाबले की भी स्थिति थी। अच्छा, लेकिन अभी जैसे बाबूराव विष्णु प्राडकर की चर्चा चली, तो वो क्रांतिकारी थे, और एक दिलचस्प बात है, अभी लोगों को लगेगा कि ये अजीब बात है, मानने लायक नहीं लगता है, बनारस से निकलता था दैनिक आज, बनारस तो ना तो उत्तर प्रदेश उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो ना तो यूपी की राजधानी थी बनारस और ना देश की राजधानी थी, लेकिन बनारस से निकलते हुए भी उसका पूरे उत्तर भारत में जो हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं उसका प्रभाव था, और उसको नंबर वन अखबार माना जाता था
1: जी।
0: दिल्ली में हिंदुस्तान वगैरह बाद में शुरू हुए, तो ये दिलचस्प बात है कि अंग्रेज लोग थे तो बहुत चतुर, तो दैनिक आज में जो एडिटोरियल छपता था उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन वायसराय के टेबल पर रखा जाता था
1: जी,
0: कि क्या लिखा है उनको पता लगेगा कि वर्नैकुलर प्रेस में क्या हो रहा है।
1: देवरत जी, लोग जिस तरह से सबने बताया अभी कि आज़ादी के आंदोलन में अखबारों की बहुत एक बड़ी भूमिका रही, लेकिन स्वाधीनता के बाद देखते हैं कि अखबारों का जो नज़रिया है वो उस तरह से सामाजिक राजनीतिक जागरण के लिए बहुत नहीं रह गया, एक तरह से थोड़ा आलोचनात्मक रुख भी, जो राष्ट्र निर्माण की बात चल रही थी और राष्ट्र निर्माण के पक्ष में भी बहुत सारे अखबार लिख रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आलोचनात्मक रुख भी अखबारों का होने लगा था, और यही वो समय था शायद जिसमें पूंजी का प्रवेश इसमें होता है, कुछ घराने इसमें आ गए थे इस क्षेत्र में, तो ये जो परिवर्तन घटित हुआ उससे अखबारों के चरित्र पर, या पत्रकारिता के चरित्र पर कहें, सिर्फ अखबार न कहें, तो पत्रकारिता के चरित्र पर कैसा प्रभाव पड़ा, क्या लगा कि उससे कितना परिवर्तन हुआ?
2: ये स्वाभाविक भी था, ऐसा नहीं कि ये कुछ गलत दिशा में हम चले गए थे। आज़ादी के बाद शुरुआती दो दशक यदि आप देखें, अखबारों पर नज़र डालें, तो उनका, पत्रकारों का बड़ा सरकार के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति बड़ा सहयोगात्मक एक रुख था, और जो अच्छी चीज़ें राष्ट्र निर्माण में हो रही थी उनकी प्रशंसा भी हो रही थी, लेकिन 1970 तक आते आते जिस तरीके से विकास का जो सपना लेके आज़ादी आंदोलन के लोग चले थे, वो जब टूटने लगा या लोगों को लगने लगा कि
1: पूरा नहीं हो रहा, मोहभंग की स्थिति हो रही थी,
2: तो वो फिर पत्रकारिता में भी निकल के आना शुरू हुआ, और भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ा, गरीबी दूर नहीं हो रही थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, तो उसकी आलोचना पत्रकारों ने शुरू कर दी, और उसका क्लाइमैक्स हम आपातकाल के दौरान देखते हैं कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ एकदम पत्रकारों ने बिगुल बजा दिया, और सरकार ने भी बड़ा दमन किया, अखबारों की बिजली काट दी गई और संपादकीय जो है खाली छोड़ दिए गए, या पत्रकारों को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में जेलों में डाल दिया गया, तो ये जो एक टकराव था सच को उजागर करने का, आम जनता के सामने बताने का जो जज्बा था पत्रकारों के बीच में, वो आपातकाल का पूरा जो दौर है वो इस बात का गवाह है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि बाजार की शक्तियां कैसे प्रवेश करती हैं, वो 80 के बाद की बात है, निसंदेह आज़ादी के बाद धीरे धीरे कुछ बड़े घराने वो अखबारों में और मीडिया में एंटर कर गए थे, और उन्होंने अपने बड़े बड़े ब्रांड जो हैं निकालने शुरू कर दिए थे, तो उनके हित और सरकार के साथ उनके जो संबंध हैं उससे कुछ कुछ पत्रकारिता का चरित्र जो है बदलने लगा था, कुछ प्रो गवर्नमेंट हैं तो कुछ एंटी गवर्नमेंट हैं, लेकिन पत्रकारिता का वो बड़ा सुनहरा दौर है यदि हम 80 तक की बात करें, तो 90 के दौर में जब उदारीकरण जब शुरू हुआ, तो सीधे तौर पे बाजार की शक्तियां और बाजार की झलक जो है

0: जब दौर आया तो उसके बाद तकनीक में भी बहुत तेजी से परिवर्तन घटित हुए, और तकनीक और पूंजी दोनों ने मिलकर के, जो बाजार की शक्तियां हैं, उन लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन पत्रकारिता में वैचारिक रूप से भी इन लोगों ने ले आए, और एक ऐसा एक प्रोडक्ट के रूप में आने लगा। बहुत सारे इंटरनेट की सुलभता हो गई तो डेटा का खेल होने लगा। तो इस तरह से जो एक परिवर्तन, आप तो न्यूज़ पोर्टल वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो ये जो परिवर्तन हुआ, इससे आपको लगता है कि पत्रकारिता के मूल चरित्र पर एक तरह से बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया?
1: हाँ, देखिए, जब तकनीक और पूंजी इन दोनों का प्रवेश पत्रकारिता में हुआ, या कहें कि पत्रकारिता को संचालित करने वाली शक्तियाँ जो हैं वो तकनीक और पूंजी, इसके बाद इसके चरित्र में व्यापक बदलाव जो है वो आया, इससे सब लोग इत्तेफाक रखेंगे, मैं समझता हूँ। पत्रकारिता की गति बढ़ी, पत्रकारिता का विस्तार हुआ, पहुँच बढ़ी, लेकिन दूसरी ओर जो मूल्य थे वो जरूर तिरोहित हुए। और आज जब हम 200 साल का जश्न एक तरीके से मनाने के लिए जुटते हैं, और ये उसकी गौरव गाथा पे का एक आख्यान जो है वो लेकर हम लोग सामने आ रहे हैं, तो ये समय असल में मुझे लगता है कि उत्सव से ज़्यादा सवालों से मुठभेड़ का ज़्यादा है। आज आत्ममंथन जो है पत्रकारिता, जिसको ये माना जाता, जो पत्रकार राजनीति को, समाज को जो दिशा दिखाने वाली एक विधा थी, आज उसके लिए एक आत्ममंथन का समय है, खुद से सवालों से मुठभेड़ का समय है कि भाई पत्रकारिता जिन उद्देश्यों के साथ शुरू हुई थी और जिस पे हम गर्व करते हैं, क्या वो पत्रकारिता आज की तारीख में है? और ये जो बदलाव हुआ, मैं ये कहूँगा कि देखिए, बाजार के उदारीकरण का जब दौर आया 91 के बाद, तो बाजार ने पूरे समाज का परिदृश्य बदला, और उससे पत्रकारिता भी तो भाई इसी समाज का उत्पाद है, अगर आप उत्पाद के तौर पे देखते हैं, तो ये भी अब परिवर्तित नहीं है। तो जिन मूल्यों पे हम अब चिंता जिताते हैं और जो कहते हैं कि पत्रकारिता का जो स्वरूप 200 साल पहले था या आज़ादी के बाद था या आज़ादी के दौर जो जिसकी चर्चा की और जिन संघर्षों की बात हम करते हैं, तो वो स्वाभाविक तौर पर जैसे समाज में बदलाव आया, जैसे पारिवारिक मूल्य तिरोहित हुए, जैसे तमाम तरीके, ये पत्रकारिता में भी घटित हो रहा है। और हम इसी को लेकर चिंतित हैं कि भाई पत्रकारिता शुरुआत हुई थी तो बड़ा पवित्र पेशा मानी जाती थी, और आज की तारीख में जो है हम कहाँ हैं, किस मुकाम पे हैं, तो ये जरूर सोचने की ज़रूरत है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि तकनीक ने इसका चेहरा जरूर बदला है, तकनीक ने इसकी ताकत जरूर इसको बख्शी है पत्रकारिता को, लेकिन इसके साथ इसके जो वैल्यूज हैं और जो विश्वास था लोगों का, जो यकीन था, वो कम हुआ है, और इस पे हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है।
0: जी बलबीर सर, आपने तो उस समय का भी दौर देखा है जबकि पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों का बड़ा असर था और पत्रकारों में भी ये असर था, लेकिन अभी के समय का सबसे बड़ा जो संकट है वो लगता है कि पत्रकारिता के लिए साख का जो संकट है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं, विश्वसनीयता का जो संकट है, ये कैसे हुआ कि पत्रकारिता का मूल सिद्धांत जो निष्पक्षता और एक तरह से सत्ता से दूरी जो थी, वही पहले पत्रकारिता का मूल सिद्धांत हुआ करती थी, लेकिन अब जो है पत्रकारिता बिल्कुल बंटी हुई सी नज़र आती है। एक ऐसा वर्ग पत्रकारों में भी, या अखबारों का भी या मीडिया का भी हो गया है जो कि सत्ता से ज़्यादा साथ रहने में ज़्यादा विश्वास रखता है, और उसी के बरक्स एक दूसरा वर्ग भी हो गया है जो उसके विपक्ष के रूप में वो दिखने की कोशिश करता है। तो ये जो बंटवारा हो गया है, इससे कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर असर हो रहा है, लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ रहा है। ये बंटवारा कैसे हो गया?
2: ये तो विश्वव्यापी समस्या हो गई है, क्योंकि जो अभी बात चली 1991 के बाद उदारवाद का ज़माना जो आया, जिसको हिंदी में बाजारवाद कहा जाता है, तो ये अब एक उद्योग व्यवसाय का रूप ले लिया है। पहले क्या होता था कि जैसे अमृत बाजार पत्रिका, इस अखबार का बहुत बड़ा रोल था स्वाधीनता आंदोलन में, तो 500 रुपया में शुरू हुआ था। उस समय का 500 रुपया तो खैर उसका भी बड़ा महत्व था, लेकिन लोग शुरू कर देते थे अखबार, संपादक भी मालिक भी वही है। अभी तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप अगर एक दैनिक पत्र शुरू करना चाहते हैं, एक अमेरिकन किताब मैंने पढ़ी एक्सप्लोरिंग जर्नलिज्म, तो उसमें दिया कि क्या आप कोई डेली न्यूज़पेपर शुरू करना चाहते हैं,

0: उसका मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कोई सोने की खान है तभी शुरू कीजिए। तो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जो है ना बहुत बढ़ गया है, और अखबार अभी चल रहे हैं तो ये है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसी कारण अखबारों को मौका मिल गया। अखबार कैसे चलते हैं, अखबार का जो कॉस्ट प्राइस होता है, लागत जो है, अभी जो अखबार 3-4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया में बिक रहा है उसकी लागत तो हो सकता है 10-12-15-20 रुपया तक हो, केवल विज्ञापन के कारण है। विज्ञापन उसको सब्सिडाइज करते हैं, और विज्ञापन या तो सरकार से मिलते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से, कॉरपोरेशन से। तो आप विज्ञापन के बिना अखबार नहीं चला सकते हैं, उसके लिए मारामारी होती है। और सब ये प्रदर्शित करते हैं कि जैसे टीवी पर है TRP, किसका ज़्यादा है, व्यूअरशिप क्या है
1: जी।
0: तो उसके कारण जो बहुत से पत्रकारिता के मूल्य हैं उनका बहुत ह्रास हो गया है, और खबरों को तो अभी ऐसे परोसा जाता है जैसे जब पहले होता था बम्बैया फिल्म बोलते थे, उसमें चना जोर कर
1: मसाला दे करके जी जी,
0: तो उसी ढंग से खबरें पेश की जा रही हैं। तो उस हालत में आपकी विश्वसनीयता की जहाँ तक बात है, भारत ने विदेशों में भी कुछ अर्सा पहले अमेरिकन अखबार है लॉस एंजलिस टाइम्स, उसने एक सर्वे किया था तो उसमें कि मीडिया की क्या विश्वसनीयता है, तो उसमें 50-60% लोगों ने कहा कोई विश्वसनीयता नहीं है। भारत नहीं अमेरिका की बात है, कोई विश्वसनीयता नहीं है, ये तो बहुत खराब बात है। और ये अभी जो चर्चा हुई कि इमरजेंसी का उल्लेख किया गया, तो उसके बाद तो ये है कि ये एक जैसे एक बहुत बड़े अखबार के मालिक से पूछा गया, कहा गया कि ये आपका जो सोशल एप्लीकेशन है उसका ध्यान रखिए। बोला हम कोई सोशल एप्लीकेशन नहीं मानते, ये हमारा बिजनेस है। अगर आप सोशल एप्लीकेशन नहीं मानते हैं तो उस अखबार के जो अलग अलग संस्करण थे हिंदी अंग्रेजी में, उसने शुरू किया प्रिंट लाइन में देना एडिटर बॉम्बे मार्केट, एडिटर दिल्ली मार्केट, ऐसे शुरू किया।
1: वो
0: काफ़ी अर्सा तक ये चलता रहा, जब बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी तो फिर उसको बंद किया गया। तो एडिटर का महत्व तो अभी बहुत घट गया। किसी समय क्या था, अखबार का एडिटर वाज द किंग एम्परर, अखबार का मालिक भी एडिटर को मानता था और एडिटर को पूरी स्वतंत्रता रहती थी।
1: जी बिल्कुल सर, जो बात कह रहे हैं कि जो संपादक नाम की संस्था है वो उस संस्था का बहुत ह्रास हुआ, और ज्यादा जो है जो पैसे ला सकता है, विज्ञापन ला सकता है, उन्हें ही एडिटर के
0: अभी तो कई अखबारों के एडिटरों को आपको कितना ये कितना का विज्ञापन जुगाड़ करना है।
1: ये खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद जिस तरह से एंकर्स का जो व्यवहार और जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, या जो थंबनेल वगैरह दिखाते हैं उसमें आप बहुत अजब अजब तरह के उसमें थंबनेल रहते हैं जो कि सांप्रदायिक हिंसा को भी वो बढ़ावा देते हैं उस तरह से। तो अखबारों का जो एक मूल चरित्र है, और ख़ास तौर पे ये तकनीक के प्रभाव के बाद से जो फेक न्यूज़ और डीप फेक न्यूज़ और इस तरह की जो चीज़ें अब आ गई हैं, इससे कितना लगता है आपको आने वाले समय में कितना बड़ा ये खतरा हमारे पत्रकारिता के लिए है?
2: इसमें पंकज जी मैं देखता हूँ कि तकनीक ने काफ़ी सारी शुभ चीज़ें भी की हैं, जैसे पिछले 2 दशक में हमारे अखबारों के पेजों की संख्या बढ़ गई है, हमारे अखबार जो हैं टेलीविज़न का दबाव ही कहें लेकिन वो रंगीन हो गए, वो ग्राफिक्स और फोटो के मामले में बड़े आकर्षक भी हो गए हैं। एक ज़माना था जब केवल ब्लैक एंड वाइट अखबार होते थे, तो ये अखबार का साइज़ बढ़ा है, खबरों की संख्या बढ़ी है, तो डिस्ट्रिक्ट एडिशन का चलन भी पिछले 2 दशक में हुआ जिससे ज़्यादा खबरें दूर दराज की जो खबरें हैं उनको भी स्पेस मिलने लगा। आपने जो मुद्दा उठाया है इन्फॉर्मेशन में जो गड़बड़ी की बात है, फेक इन्फॉर्मेशन की, वो थोड़ा चिंता का विषय है कि पिछले 1 दशक में खासकर जो डिजिटल क्रांति के बाद जिस तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन कहें, मैं उसको फेक न्यूज़ नहीं कहूँगा, फेक सूचनाएं जो हैं, झूठी सूचनाएं, वो किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए या मोबाइल के जरिए आम लोगों तक है, और उसके बहाव में, उसकी चपेट में कुछ कुछ पत्रकार भी आ रहे हैं। जल्दबाजी में हमारे पत्रकार भी गलत खबरें वो अखबारों में छाप रहे हैं या फिर टीवी पे दिखा रहे हैं, तो उससे साख गिरी है। लेकिन उसमें भी एक अच्छी अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था पाठकों में।

0: और दर्शकों में, तो उन्होंने ये पूछा कि रेडियो, टेलीविजन और अखबार में सबसे विश्वसनीय कौन है। तो पाठकों ने कहा कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय अखबार है, टेलीविज़न पे उनका भरोसा कम है, सोशल मीडिया पे भरोसा कम है, क्योंकि पाठक जो है 24 घंटे बाद अखबार लेता है और निसंदेह अखबार में गलत खबरें छापने की या छपने की आशंका बहुत कम है। पाठक से पहले पत्रकार उसको चेक कर लेते हैं, समय रहता है, जबकि टीवी के लोग थोड़ा हड़बड़ी में चलाते हैं खबरों को। तो ये चुनौतियां हमारे सामने हैं और टेक्नोलॉजी इस समय तो लीड कर रही है। मैं कहूँगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और अब तो AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक नए किस्म का माहौल एकदम बना रही है। तो चुनौती आएंगी और पत्रकारों को और मीडिया के लोगों को उनसे डील करना चाहिए अच्छे से।
1: जी शंभू जी, ये जो AI के बारे में बात कर रहे हैं, ये AI बहुत बड़ी एक चुनौती के रूप में पत्रकारिता के सामने आया, क्योंकि उसको वेरीफाई करने का, वेरिफिकेशन का कोई उसमें माध्यम होता नहीं है लोगों के पास कि कैसे इन खबरों को वेरीफाई किया जाए जो AI के जरिए भी फैलाई जा सकती हैं चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये नहीं लगता कि ये जो सोशल मीडिया के थ्रू, जो जिसको जर्नलिज्म कहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें हो रही हैं, ये इसका एक सकारात्मक पहलू भी है कि लोकतंत्र के इसका बहुत आवाज़ों का बहुत विस्तार हुआ है। बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो हाशिए की आवाज़ें थी, वो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो मुख्य धारा का मीडिया कभी भी उनकी आवाज़ें रिकग्नाइज नहीं करता था या एंटरटेन नहीं करता था, वो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और सिटीजन जर्नलिज्म जिसको कहते हैं कि कोई भी आदमी एक मोबाइल के साथ जो है कोई ना कोई समाचार कोई ये कर सकता है और उसको वायरल कर सकता है और उसको खबरें लोगों तक जा सकती हैं, तो ये एक सकारात्मक पहलू भी इसमें आप देखते हैं।
2: नहीं बिल्कुल आप कह रहे हैं। पहली बात आपने कही कि तकनीक और AI का, देखिए जब तकनीक और AI आपको नियंत्रित करने लगे खतरा तब है कि पूरी तरह आप उनके नियंत्रण में आ जाएं, उनके ग्रीप में आ जाएं।
1: जी
2: जब नियंत्रण की शक्ति विवेक से उपजती है और वो विवेक अगर आप कायम रख पाते हैं तो कभी भी तकनीक जो है वो बहुत बड़ी चुनौती। जब कंप्यूटरीकरण का दौर आया था तब भी हम लोगों ने समझा था कि भाई पत्रकारों का काम टाइपिस्ट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या उनका जो मूल लेखन की जो क्षमता है वो जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब हमने उन पर नियंत्रण किया या हमने उस तकनीक को अडॉप्ट किया तो बेहतर एक प्रोडक्ट जो है वो लोगों को दे पाए, थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से सूचनाएं पहुंचा पाए। आपने जो बात कही उम्मीद की किरण वाकई वही है कि सोशल मीडिया से जो जो आवाज़ें आ रही हैं, खतरे हैं जरूर हैं। एडिटरलेस माध्यम वो हो गया है जहां कोई संपादक नाम की संस्था नहीं है कि किसी व्यक्ति की जो आवाज़ आ रही है या कोई व्यक्ति आपको जो सूचना पहुंचा रहा है या कोई बात पहुंचा रहा है आप तक वो सही है, उसमें तथ्य है या नहीं है, इसको जांचने वाली कोई संस्था, एडिटर जैसी संस्था है नहीं। खतरा ये जरूर है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने देखा है कि कई लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत शानदार पत्रकारिता की एक लीक जो है वो परंपरा शुरू की है। और ऐसी चीज़ें कि जिनको आप ठीक कह रहे हैं कि अब मुख्य धारा की जो मीडिया जिसको हम लोग मानते हैं वहाँ बाजार का दबाव इतना है कि कई बार जानबूझकर भी खबरें जो हैं वो नज़रअंदाज की जाती हैं, कई बार उन वर्गों की आवाज़ जो है उस जगह नहीं मिलती है उनको मुख्य धारा की पत्रकारिता में जो आनी चाहिए। पर्यावरण का संकट है, पेड़ों का कटना, तमाम तरीके के संकट जो हैं वो उसको जगह नहीं मिल पाती क्योंकि बाजार का दबाव ऐसा है, वो उनके अगर वो खबरें छपेंगी वो नैरेटिव बनेगा तो जो अखबार निकाल रहे हैं उनको परेशानी पैदा होगी, जो मीडिया चला रहे हैं उनको परेशानी पैदा होगी। ऐसी स्थिति में ये आवाज़ें जो हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रही है, जिसको आजकल हम लोग इंडिविजुअल जर्नलिज्म भी कह रहे हैं, तो वहाँ से एक उम्मीद की किरण तो जरूर दिखती है कि जिन मूल्यों की हम चिंता करते थे कि या पत्रकारिता जिनकी आवाज़ मानी जाती थी वो आवाज़ अब दब नहीं रही है, ये बहुत सकारात्मक पक्ष है आज की पत्रकारिता।
1: जी तो इस चर्चा से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो 200 साल का सफ़र है ये सिर्फ एक उत्सव मनाने का ही अवसर नहीं है, एक इंट्रोस्पेक्शन, एक आत्मालोचन का भी ये समय है। इसका भी इसकी बात की, तकनीक बदल गई है, कागज़ से स्क्रीन, स्क्रीन से AI एंकर, इस तरह का सफ़र एक लंबा सफ़र चला है, लेकिन जो पत्रकारिता की आत्मा है वो तो हमेशा तथ्य, निष्पक्षता, जन सरोकार और लोकतंत्र को बचाने के जितने भी उपकरण हैं उस पर ही ये पत्रकारिता का भविष्य।
3: एक बात जोड़ना चाहूँगा, बिल्कुल, जो हम लोगों की परिचर्चा शुरू हुई प्रिंट मीडिया से,
1: जी,
3: हिंदी का पहला अखबार,
1: जी,
3: तो प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता कंपैरेटिवली ज़्यादा है अभी भी सारी दुनिया में,
1: बिल्कुल,
3: क्योंकि वो फिल्टर होकर ही आमतौर पर न्यूज़ निकलता है। और मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया का महत्व जो है वो बना रहेगा, जैसे एआई वगैरह जो है उसका अपना लाभ भी है, एआई बहुत कुछ कर सकता है, एआई सपने नहीं देख सकता। सपना जो है ना, जैसे आज़ादी भी एक सपना थी, उस समय लगता था कि मुश्किल ही आज़ादी मिलना, तो सपने नहीं देख सकते एआई। इंसान का जो दिमाग है उसके आगे कितना भी आप मैकेनिकल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कर लीजिए। कुछ हफ्ता पहले एक मुख्यमंत्री से बात हो रही थी मेरी, तो उसने कहा कि कितना भी टीवी देख लो, रेडियो सुन लो, डिजिटल प्लेटफॉर्म ये, जब तक अखबार नहीं पढ़ते हैं चैन नहीं मिलता है। तो ये अखबार का महत्व,
1: ये अच्छी बात कही सर ने कि सपना नहीं देख सकता है एआई, और लोकतंत्र को बहाल रखना भी एक सपना ही है हमारे लिए। तो उस सपने को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे ये आगे भी 200 वर्षों तक इसकी प्रासंगिकता बनी रहे, इस दिशा में क्या किया जा सकता है, ये पत्रकारों पर है। और कितना भी बाजार का दबाव हो और इस तरह की चीज़ें, तकनीक का दबाव हो, लेकिन जो नागरिक अधिकारों के पक्ष में खड़े होने का जो साहस मीडिया या पत्रकारिता दिखाता है, उसको हमेशा दिखाते रहना होगा, क्योंकि मीडिया की साख ही लोकतंत्र की एक सही कसौटी भी है। तो आप सब स्टूडियो में आए और हम लोगों ने पत्रकारिता के 200 वर्षों के सफ़र और आगे आने वाले समय में जो इस पर संकट हैं और क्या हो सकता है, इसके बारे में बातचीत की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस बातचीत में भाग लेने के लिए। बहुत धन्यवाद
2: आपका भी। नमस्कार।
0: धन्यवाद सर।

0: अभी आप सुन रहे थे विशेष परिचर्चा, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। इस परिचर्चा के प्रतिभागी थे झारखंड के वरिष्ठतम पत्रकार एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री बलवीर दत्त, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के पत्रकारिता विभाग के प्रमुख प्रोफेसर देवव्रत सिंह, प्रेस क्लब रांची के अध्यक्ष श्री शंभुनाथ चौधरी, और इस परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी रांची के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी एवं कथाकार पंकज कुमार मित्र। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की और संयोजन था प्रभु शरण का। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे थे।
1: अभी आपने सुना विशेष परिचर्चा, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विचार, विरासत और भविष्य। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद बस थोड़ी ही देर में।

फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद में पहली फरमाइश आई है जतुका किशनपुर से, आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, और गोंदा टाउन काके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल और अनुप्रिया जगत ने राजेश रोशन के संगीत में इंदिवर का लिखा। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में गाया इस गीत की फरमाइश की है। फिल्म का नाम है आखिर क्यों। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: Messina.
1: कार्यक्रम आपकी पसंद में अगली फरमाइश आई है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनुरोध से इस गीत की। इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने कभी हाँ कभी ना फिल्म से इस गीत की फरमाइश की है। इस गीत के गीतकार है बजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है जतिन ललित और गायक कलाकार है कुमार सानू।

समीर का लिखा जतिन ललित के संगीत में अगला गीत फिल्म वास्तव से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने। इस गीत को सुनना चाहा है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिम्बा कौर, बुलंद शहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, चैतक बीरक और मीका बीरक। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

इस गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम गृह लक्ष्मी बस थोड़ी ही देर में।

0: संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है, अतः इसे चेहरे की सुंदरता के लिए इस्तेमाल करें और सकारात्मक रहें,
1: क्योंकि आपके चेहरे की खुशी दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ऐतो दिन की शुरुआत अपनी मुस्कान के साथ करें।
0: सप्रेम नमस्कार सखियों, हृदय तल से आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज के कार्यक्रम में आपके साथ हैं दो सखियां, मैं मधु और
1: मैं खुशबू। स्वीकार कीजिए सखियों मेरा भी स्नेह भरा नमस्कार और स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। सखियों कैसी हैं आप? अब मुझे पता है कि आप सभी स्वस्थ होंगी और अपने घर परिवार बाल बच्चों के संग घर गृहस्थी में व्यस्त होंगी।
0: हाँ हाँ खुशबू, साथ ही अपना ये गृह लक्ष्मी कार्यक्रम भी जरूर सुन रही होंगी, है ना सखियों? सही कहा ना?
1: बिल्कुल सही मधु। वैसे सखियां इस पल का इंतजार करती रहती हैं क्योंकि सखियों की मुलाकात ही होती है समय, और सखियों परिवार प्रत्येक इंसान की प्रथम पाठशाला होती है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और यहीं से नन्हा शिशु अपने जीवन को चलाने का हुनर सीखने का भी श्री गणेश करता है, यानी शुभारंभ करता है।
0: सही कहा तुमने खुशबू, हम जैसे रहते हैं, जो करते हैं, जो कुछ बच्चे को सिखाते हैं, सब कुछ बच्चा आत्मसात कर रहा होता है सखियों। ऐसे में हम खुद भी अच्छे जीवन शैली को अपनाएं और बच्चों को भी सिखाएं जो उनके भविष्य को बेहतर बना सके, तभी बच्चा अच्छे संस्कार ग्रहण कर पाएगा।
1: बिल्कुल मधु, और तुम्हारा इशारा मैं समझ भी रही हूँ कि तुम सखियों को बच्चों में अच्छी आदतों के साथ साथ पर्यावरण संस्कार देने की भी बात कह रही हूँ, है ना?
0: बिल्कुल सखियों, आपको बता दे कि पर्यावरण प्रदूषण विश्व की एक विकट समस्या बनती जा रही है। अगर अब भी हम नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब पीने के लिए स्वच्छ जल, सांस लेने के लिए प्राणवायु खत्म हो जाएगी और प्राणियों का जीवन संकट से घिर जाएगा।
1: याद करिए सखियों, कोरोना काल में प्राणवायु की जरूरत कैसे आन पड़ी थी, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की जरूरत। और अगर हम अब भी जागरूक नहीं हुए अपने पर्यावरण को सहेजने के प्रति, तो आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ देने की बजाय उनका जीवन है ना संकट में डालकर चले जाएंगे।
0: बिल्कुल ये सही कह रही हो तुम खुशबू। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार की तमाम योजनाओं के अलावा हमें अपने आंगन से ही इसका आगाज करना होगा, है ना? यानी कि हम बिजली संयमित ढंग से उपयोग करें, पानी व्यर्थ ना खर्च करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, बच्चों से पौधे लगवाएं, उसमें पानी बच्चों से ही डलवाएं। ये हैं तो छोटे छोटे कदम, पर ये भविष्य के लिए बेहद लाभ से भरे हुए कदम हैं।
1: बिल्कुल मधु, और ऐसी ही छोटी छोटी बातों से सखियों, जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं और साथ ही बच्चों में भी पर्यावरण के प्रति सजगता डाल

0: सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर पौधे को सहेजेंगे, सींचेंगे, तो उनमें भी ये विश्वास उत्पन्न होगा कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और पर्यावरण के प्रति योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: कहने का ये अर्थ हुआ कि इस तरह की शिक्षा से बच्चों में, है ना, पर्यावरण संस्कारों का बीजारोपण हो सकता है।
1: बिल्कुल। यहाँ प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं खुशबू, जो उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाती हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोर प्रकृति से भी माया।
0: और ये पंक्तियां तो खैर सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, जो कि बहुत ही सटीक है। प्रकृति केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और संवेदना का आधार भी है।
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को पर्यावरण से प्रेम करना, उन्हें प्यार करना, उन्हें संरक्षित करना, उनके प्रति संवेदनशील बनना और जिम्मेदार बनना सिखाएं।
1: बिल्कुल, यानी कि उन्हें प्रकृति से जोड़ें, क्योंकि जब लगेगा हर घर आंगन में एक पौधा, तो आएगी हर मन में हरियाली, और तभी होगी धरती पर खुशहाली।
0: और पता है मधु, कबीर दास जी की कुछ पंक्तियां मुझे भी याद आ रही हैं, जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि वृक्ष कभू नहीं फल भरवे, नदी ना संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। यानी कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं क्योंकि वो बहुत परोपकारी होते हैं, और नदियां अपना जल नहीं पीती है।
1: बिल्कुल सखियों, प्रकृति के इस दिव्य देन का उपयोग हम प्राणी ही तो करते हैं ना सखियों,
0: हाँ बिल्कुल सही मधु,
1: और भविष्य में भी कर सके इसके लिए हमें खुद के साथ अपने बच्चों को भी पर्यावरण संस्कार डालना होगा, क्योंकि बच्चे ही तो कल का भविष्य होते हैं ना।
0: हाँ तो तैयार हो जाइए सखियो, प्लास्टिक से दूरी बनाना है, जूट या कपड़े की थैली का हमें इस्तेमाल करना है, वर्षा जल का संचयन करना है, पक्षियों के लिए दाना पानी भी रहना है, ताकि ची ची ची ची करती हुई चिड़िया हमारे घर आंगन को चहकाती रहे, महकाती रहे। और नल खुला ना रखना है, सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग रखना है। और किसी के जन्मदिन जैसे अवसरों पर एक पौधा अगर आप भेंट स्वरूप देते हैं ना, तो जीवन भर यादगार बन जाएगा।
1: ये तो बहुत अच्छी बातें तुम कह रही हो खुशबू, और तब देखिएगा सखियो, ये छोटे छोटे जो कदम आपके हैं, कैसे एक दिन बड़े परिवर्तन का आधार बनकर वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे और जीवन खुशहाली से भर जाएगा, और तब होगी हमारे संग मचलती हुई हवा और पावन गंगा की लहरें।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: एक बार फिर से स्वागत है सखियों आपका अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और आपके साथ है दो सखियां, आपकी सखी खुशबू
2: और मधु।
1: और मधु, अब आगे कार्यक्रम में क्या है?
2: अब सखियों को रोज की तरह हम सुनवाने जा रहे हैं खुशबू एक विशेष विषय पर भेंट वार्ता, और वो विषय है सुरक्षित बचपन के लिए समाज और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका। आज की मेहमान है सखियों प्रेरणा चंद्रा, और इनसे बातचीत की है रेडियो सखी खुशबू।
3: जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय होता है। इसी समय बच्चे का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। यदि बच्चे को सुरक्षित और अच्छा वातावरण मिले तो वो भविष्य में एक जिम्मेदार और सफल नागरिक बनता है। सुरक्षित बचपन देने में परिवार और समाज दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज इसी विषय पर बातें होंगी हमारी खास मेहमान प्रेरणा चंद्रा जी से।

0: जहाँ पे बच्चों का शारीरिक विकास शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखना ही सुरक्षित बचपन कहलाता है। इसमें बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है ताकि वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके और अपनी आगे की जो भी उनकी प्रक्रिया होती है वो अच्छे से सुचारू रूप से चलती रहे।
1: हम सभी यही चाहते हैं कि बचपन हमेशा खिलखिलाता रहे, मुस्कुराता रहे, लेकिन बच्चों के सुरक्षित भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है। आप इसे कैसे देखती हैं?
0: जी आपने सही बोला, बच्चों के सुरक्षित भविष्य में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार बच्चों का प्रथम विद्यालय होता है। जब हम बच्चों का दाखिला स्कूल में कराते हैं उससे पहले हम अपने परिवार में उन्हें बहुत तरह की चीजें सिखाते हैं, जैसे परिवार में बच्चों को प्यार, अनुशासन और सही शिक्षा देता है। माता-पिता बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं और उन्हें अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं। परिवार का सहयोग बच्चों के आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चे हमारे स्कूल में या किसी भी स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उनका प्रदर्शन पूरे क्लास में कैसा होता है ये पता चल जाता है कि वो अपने घर पे कैसे माता पिता के साथ रहते हैं। अगर बच्चा शालीनता से क्लास में रहता है तो हम कहते हैं कि इसकी परवरिश उसके परिवार में बहुत अच्छे तरीके से होती है। और अगर बच्चा नटखट रहता है, किसी की बात नहीं सुनता है, तो हम सहज ही यह अनुमान लगाते हैं कि ये घर में भी ये अपने से बड़ों की किसी की बात नहीं सुनता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों की सुरक्षित भविष्य में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, तो ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार दे सकते हैं?
0: जैसे कि देखिए, अगर हम बोलते हैं कि बच्चों को घर में अगर कुछ चीज सिखाते हैं कि सही बोलना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चे ये चीज सीख करके स्कूल में भी वैसा ही प्रतीत करते हैं। अगर टीचर पूछती कि आपने कुछ किया तो बच्चे उसके अनुरूप उसका जवाब देते हैं, तो
1: जी
0: वहां पे ये प्रतीत होता है कि हाँ, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, किसी से बदमाशी नहीं करना चाहिए। तो जो बच्चे घर में सीखते हैं उसी तरीके से वो स्कूल में भी करते हैं।
1: जी कहा भी जाता है कि बच्चे अपने परिवार का आईना होते हैं, और इसीलिए हमें ये खास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को हम अच्छी बातें सिखाएं ताकि बाहर में वो जो भी करे उससे उनका संस्कार दिखता है। तो ऐसे में बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने में समाज कैसे मदद कर सकता है?
0: जी देखिए, समाज बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए स्वच्छ और शांत माहौल बना सकता है। स्कूल परवस और अन्य स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। समाज के लोग बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी भी प्रकार के शोषण या हिंसा के खिलाफ जरूर आवाज उठाएं। जैसे कि हम बच्चों को जैसे घर में रखते हैं, बच्चे चाहते हैं कि हम भी सोसाइटी में बाहर जाएं तो हमें भी उसी तरह का प्यार सम्मान मिले। हम अगर अपने माता-पिता से प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि हम अगर बाहर जाएं, पड़ोस में जाएं, तो कोई हमसे उसी तरह के शांत वातावरण में बात करे, तो बच्चों को फिर वो अच्छा लगता है कि हमें जैसा परिवार में माहौल मिलता है वैसा ही हमें समाज में भी माहौल मिलता है। तो उनको सुरक्षित वातावरण देने में समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका झलकती है।
1: जी प्रेरणा जी, जैसा कि आपने कहा कि समाज बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण देने में सक्षम है, तो ऐसे में अगर हम बच्चों को बुरी आदतों और गलत संगति से बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं?
0: देखिए, बच्चों को बुरी आदतों और गलत संगति से बचाने के लिए उनके मित्रों पे जरूर हमें ध्यान देना चाहिए कि उनकी संगति कैसी है। अगर वो अच्छे मित्रों के साथ बैठते हैं तो स्वतः ही उनके अंदर वो अच्छी बातें आएंगी। अगर किसी गलत मित्र मंडली के साथ वे रहते हैं, या जैसे कि अगर वो मित्र मंडली अपने घर से पैसा चुरा के लाता है, उसको बताता है, तो वो आदतें स्वतः ही उस बच्चे में आ जाती थी। फिर वो किसी न किसी कारण से अपने घर में भी झूठ बोल के, अपने माता-पिता से झूठ बोल के, कहीं से भी कुछ वैसा करके अपने संगति में जाकर के उस तरह का कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस वातावरण में उठते बैठते हैं, किनके साथ खेलते हैं, किनके साथ खाते हैं स्कूल में, किनके साथ खेलते हैं, इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अच्छे मित्र चुनने की सलाह देनी चाहिए, कुछ उनको

0: देने चाहिए कि देखो ये इनकी मित्रता कैसी है, आगे जाके वो पढ़ाई में कैसे उनका हेल्प करते हैं, और अगर आपके मित्र वैसे नहीं होंगे तो आपको पढ़ाई में भी उस तरह का माहौल नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज का उन्हें समय रहते उनको ये बताना चाहिए कि आपकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए। अगर उन्हें किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें टाइम टू टाइम समय पे उन्हें बुला करके पूछनी चाहिए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो इस तरह का ख्याल तो स्कूल के शिक्षकगण और घर में माता पिता को रखना चाहिए।
1: जी प्रेरणा जी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई बच्चों के सुरक्षित भविष्य के बारे में, सुरक्षित बचपन के बारे में, समाज और परिवार की भूमिका के बारे में। तो शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है इसमें?
0: देखिए, शिक्षा से ही हमारा हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, इसमें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका रहने का, उनके बैठने का, उनके कार्य करने की जो शैली होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। उसके मुकाबले अगर कोई आदमी अशिक्षित है, अच्छे तरीके से उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो उनका जो फैमिली, उनका जो अपना रहने का तरीका है या काम करने का तरीका है, वो दोनों में ही बहुत अंतर दिखाई देता है। इसीलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा का ज्ञान, समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करें, इसके बारे में पूरा ध्यान देना चाहिए। शिक्षित बच्चे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं, उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हैं ताकि समाज में अपना एक अलग पहचान बना सके, उससे उनकी पहचान बनती है। अगर ठीक उसी समय अगर हमारे आसपास में कोई अशिक्षित परिवार या अशिक्षित व्यक्ति है तो उससे समाज को उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। इसीलिए हम इस तरह की कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी शिक्षा दे सके। शिक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है, उसे कुछ सोचने की, समझने की या अपने निर्णय लेने में उसको सहायता देती है। इसीलिए उनके भविष्य को अच्छी दिशा की ओर लेके जाती है। इसीलिए शिक्षा हर बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक मानी जाती है।
1: जी, चलते चलते प्रेरणा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए परिवार और समाज को क्या कदम उठाने चाहिए?
0: जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बच्चों के लिए परिवार और समाज दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार और समाज को बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। बाल श्रम, हिंसा और भेदभाव को रोकना चाहिए। इसकी शुरुआत हम लोग अपने घर से भी कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई बाल श्रमिक है तो उसे कतई हमें नहीं रखना चाहिए, वो समझकर उनकी सहायता करनी चाहिए। समय रहते ही बच्चों को बुला करके उनके उनसे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको पूछ करके उनसे उनका हल निकालना चाहिए। ऐसा ना हो सके कि बच्चे हमारे बर्ताव के कारण वो अपनी समस्याओं को ना बता सके और अब उस दलदल में फंसते चले जाएं। सरकार द्वारा बनाए गए बाल सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हर बच्चा सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके।
1: जी, सुरक्षित बचपन हर बच्चे का अधिकार है। परिवार और समाज यदि मिलकर बच्चों को प्यार, शिक्षा, सुरक्षा और अच्छे संस्कार दे तो देश का भविष्य उज्जवल बन सकता है। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि बच्चों को सुरक्षित और खुशहाल बचपन देने में अपना योगदान दे। प्रेरणा चंद्रा जी, आप हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में आई, अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद खुशबू जी, आपने इस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना सखियों भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थी प्रेरणा चंद्रा। विषय था सुरक्षित बचपन के लिए समाज और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका। भेंट करता थी रेडियो सखी खुशबू। अब सखियों एक अंतराल ले लेते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सखियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी हम आगे कार्यक्रम में आपको एक जानकारी देने वाले हैं और जानकारी है हरित भारत स्वस्थ भारत के बारे में। क्योंकि सखियों, जानकारी के तहत आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हरेक प्राणियों के जीवन से जुड़ा है और वो है हरित भारत मिशन।
4: जानती हैं सखियों, हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या, तेजी से होते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग, ऐसे कई कारणों से वन क्षेत्र और पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है जो तमाम संकटों को जन्म दे रहा है।
3: साथ ही भारत सरकार द्वारा हरित भारत मिशन यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन इस संकट से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य मिशन के 8 मिशन में से एक है।
4: बिल्कुल, इसे जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले दुष्प्रभावों, जैविक संसाधनों और उससे जुड़ी आजीविका की रक्षा करने और पारिस्थितिकी व्यवस्था में स्थिरता लाने, जैव विविधता संरक्षण और खाद्य, जल तथा आजीविका सुरक्षा पर वानिकी के प्रभाव को मान्यता देने के प्रयोजन से शुरू किया गया है।
3: और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वनों और उनकी सीमा से लगे क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास में बेहतर समन्वय के लिए जो पूरक योजनाएं और कार्यक्रम हैं उनके साथ तालमेल स्थापित करना है, जो पर्यावरण, वन और वन्य जीव क्षेत्रों में उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल, इसके साथ ही सतत रूप से प्रतिबंधित वनों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों में कार्बन सिंक को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्रों को ढालने और वन पर आश्रित समुदायों को अनुकूलित करना भी है। खुशबू,
3: बिल्कुल। और सखियों, हरित भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य ये है कि कुछ इस तरह से वन और गैर वन भूमि में वन और वृक्षों को बचाना है, उन्हें बढ़ाना है और वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्योंकि इससे कार्बन पृथक्करण एवं जल विज्ञान सेवाओं सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार हो सके।
4: इसके अलावा ईंधन, चारा, लकड़ी और गैर लकड़ी वन उत्पाद आपूर्ति सेवा को ठीक करना और वनों के आसपास रहने वाले परिवारों की वन आधारित आजीविका आय में बढ़ोतरी करना भी इसके लक्ष्य में शामिल है।
3: हरित भारत मिशन पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक व्यापक राष्ट्रीय पहल है जिससे एक ऐसे भारत का निर्माण हो सकता है जो हरित पर्यावरण, स्वच्छ वायु, सुरक्षित जल संसाधन और स्वस्थ जीवन से समृद्ध हो, यानी कि हरित भारत स्वस्थ भारत की नींव हो सके।
4: देखो ना खुशबू, स्टूडियो की घड़ियां भी इशारा करने लग रही है कार्यक्रम समाप्त करने के लिए।
3: तो अब हम दोनों सखियों को दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। तो अब अपनी दो सखी खुशबू
4: और मधु को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
5: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जिसमें चर्चा हुई परिवार को दे पर्यावरण संस्कार। साथ ही भेंट वार्ता आपने सुनी, सुरक्षित बचपन के लिए समाज और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ गृहलक्ष्मी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक है NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी।
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी।
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
2: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ

0: और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजी जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ, जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल,
1: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
1: जी
0: वो खिसकने लगते हैं,
1: बिल्कुल
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ,
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
1: जी
0: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot through the deep. The scoop shot, it gets through. It's a big one. It's a huge boundary. It goes wide through the offside. He's got him. That's it.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
3: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
4: सर।
5: तुम दोनों आजा, आजा, अंदर आजा, शाबाश।
4: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
4: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
4: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
5: हाँ, बोलो।
4: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही हैं। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
4: 5000 वर्ष पहले?
5: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
4: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
5: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
4: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
5: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
4: अच्छा।
5: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
4: जैसे?
5: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
4: वैदिक समूह?
5: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
4: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
5: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
4: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
5: हाँ।
4: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
4: अच्छा।
5: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
4: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
5: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
4: वो क्या सर?
5: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
4: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है,
6: भला ऐसा क्यों?
5: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
4: अच्छा।
5: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
6: हाँ, ऐसा कैसे?
5: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
6: ओ।
5: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
4: हिंदू।
5: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
6: तो फिर?
5: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
5: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं।

0: जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
1: सर ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: सर आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल,
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
1: अच्छा
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ जम्बूद्वीप, महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ,
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ,
0: हाँ,
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया, वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: सर आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा
0: हाँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग, We the people of India।
0: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है समझा है उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सब जी साथ?
0: हाँ सबके साथ।

0: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
3: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
4: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
5: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
6: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
7: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
6: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
7: हाँ पूछो बेटा।
6: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
7: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
6: लेकिन माँ,
7: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
6: जी,
7: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
6: अच्छा माँ, ये लो माँ।
7: ला।
5: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
6: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
7: क्या मिल गया
6: मुझे? माँ माँ माँ,
7: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
6: मुझे मिल गया।
5: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
7: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
6: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
5: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
6: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
7: कुछ भी तो नहीं।
5: कुछ भी तो नहीं है।
6: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
5: वो तो है मगर
6: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
5: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
6: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें है?
5: हाँ
6: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
5: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
6: ठीक है, आओ मेरे साथ।
7: अरे सुनो,
6: देखते हैं।
7: अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो,
4: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर

0: दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
1: अरे गुब्बारा
2: गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
3: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
4: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
3: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
4: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
3: आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
5: ना जाने क्या करेंगे,
2: भला कोई चीज उड़
5: सकती है।
4: अरे भाई साहब
3: रास्ता दीजिए, आगे जाइए। आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
4: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
3: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
4: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
3: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
4: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, हाँ स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है
3: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
4: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर क्यों उड़ रहा है?
3: कमाल कर दिया बच्चों ने।
4: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
3: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
4: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
3: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
0: साथियों ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बत्तख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
6: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल

0: तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक थे एनसीईआरटी। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रूपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
4: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
3: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. Benchmark domestic equity indices were trading marginally down in afternoon trade today. The Sensex lost 35 points to 74,311 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि। देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोज और संथाल चैलेंजर्स की जीत। सभी चार टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गिरिडीह में महिला नियमित योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने बताया कि योग से न केवल शरीर बल्कि मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।
2: तो यहाँ पर हम लोग मेन रूप से योग महिलाओं को निशुल्क सिखाते हैं ताकि हमारा कम्युनिटी, हमारा समुदाय जो है निरोग रहे और हमारा एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
1: उन्होंने कहा कि स्वयं स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के बाद अब वे अन्य लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रही हैं। वहीं सविता कुमारी ने भी योग से स्वास्थ्य में सुधार होने का अनुभव साझा किया और लोगों से नियमित योग अपनाने की अपील की।
3: मेरा नाम सविता कुमारी है, घर मेरा सीओडी नियाबू है। योग बहुत अच्छा चीज है, योग करना चाहिए। योग से क्या है कि शरीर हल्का लगता है, मेडिसिन छूट जाती है और शुगर है, थायराइड है, ये बीपी है, सब कंट्रोल रखती है।
1: केंद्र सरकार के मुस्कान कार्यक्रम के तहत रांची का सदर अस्पताल अब नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन में अस्पताल ने 96.1% अंक हासिल किए। अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, पेडियाट्रिक वार्ड और पेडियाट्रिक ओपीडी को भी उत्कृष्ट अंक मिले। अस्पताल प्रशासन ने इसे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। जेटेट में भाषाओं के चयन को लेकर गठित समिति की बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जेटेट केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षकों की स्थायी भाषाई और सांस्कृतिक समझ का आकलन करने वाली पात्रता परीक्षा है। वहीं मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने की वकालत की।
4: वैसे जिले जहां जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती है वहां कम से कम आप हिंदी भाषा को जो तो अवश्य जोड़ी। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि संख्या बल पर किसी नीति का निर्धारण होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो धरातल की वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर वो कोई सापेक्ष निर्णय लेंगे।
1: जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आवेदन लेने की तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जेटेट के कुछ अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनुपलब्ध होने पर प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई होने की सूचना पर ऐसा

0: उत्तर रेलवे ने अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच वर्जन 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू किया है। इसके साथ उत्तर मध्य रेलवे में कवच नेटवर्क 445 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो भारतीय रेल में किसी एक खंड पर स्थापित सबसे बड़ा कवच सिस्टम है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता को और मजबूत करेगी। कोडरमा विधायक नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने कोडरमा थाना के सामने रांची पटना मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। एसडीओ निर्मल सोरेन ने बताया कि मामले में अब तक 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।
1: घटना हुई है यहाँ कोडरमा जिला के लिए बहुत ही खतरनाक है और घटना की गंभीरता को देखते हुए ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी नामजद अभियुक्त है मतलब उनकी जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तारी की जाए।
0: जमशेदपुर के टाउन हॉल सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बूथ लेवल एजेंट बीएलए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
2: और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सांगठनिक ढांचा है, जो स्वरूप है, अब बीएलए 2 से प्रारंभ होगा। बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी और केंद्रीय कमेटी, और हमारा जो सबसे मजबूत जो कमेटी होगा वो कमेटी हमारा बूथ कमेटी होगा, जिसके माध्यम से हम राज्य के विकास को और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुँचा पाएंगे।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 128 अंक बढ़कर 74,474 पर और निफ्टी 43 अंक बढ़कर 23,449 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में शुरू हुई झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पहले दिन कोल्हान डायनामोज और संताल चैलेंजर्स ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। उद्घाटन मैच में कोल्हान डायनामोज ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 8 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में संथाल चैलेंजर्स ने पलामू वॉरियर्स को 6 विकेट से पराजित कर दिया। जेएससीए पदाधिकारियों ने कहा है कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस लीग में भाग लेने वाली सभी 4 टीमों को 10-10 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। जापान के काकामिगाहारा में खेले जा रहे पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में भारतीय जूनियर टीम का सेमीफाइनल मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। भारत ने पूल ए में दूसरा स्थान हासिल कर अंतिम 4 में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान की टीम पूल बी में शीर्ष स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की नजर पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाने और खिताब जीतने की अपनी दावेदारी मजबूत करने पर होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वैश्विक उपलब्धि। देशवासियों से किया नियमित योग अपनाने का आह्वान। रांची सदर अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। झारखंड का पहला मुस्कान प्रमाणित सरकारी अस्पताल बना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अभ्यर्थी अब 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेल का नया कीर्तिमान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवच 4.0 का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग में कोल्हान डायनामोज और संथाल चैलेंजर्स की जीत। सभी 4 टीमों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में आज सुनते हैं शोभा गुर्टू को।

इसी के साथ उपशास्त्रीय इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी यही संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं कुछ गजलें। पहली गजल मिताली सिंह की आवाज में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अगली गजल मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के

0: खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रूपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस जीबीआरसी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित जीबीआरसी का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा

0: अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट पर कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जायेगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
3: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम बिहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: जय भारती, बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम जय भारती की आहार नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म क्रांति के

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: संदेश के बाद कार्यक्रम जय भारती की अगली पेशकश साहिर लुधियानी का लिखा, रवि के संगीत में, लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म आंखें से ये गीत।

0: अभी आपने रूप कुमार राठौर की आवाज़ में फिल्म बॉर्डर फिल्म से ये गीत सुना। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में बाउंड्री का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। मौके पर पहुंचे कांके अंचल अधिकारी अमित भगत और पुलिस बल ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी उपजाऊ खेती योग्य जमीन है, जिससे उनकी आजीविका जुड़ी है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर जामताड़ा में विशेष उत्साह है। भाजपा जिला महामंत्री अभय कुमार सिंह ने इसे विकास का स्वर्णिम युग बताया है।
2: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 12 साल लगातार सेवा पूर्ण हुई, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, जिससे समय का भी बचत हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बैंक से लोन लेकर समूह के माध्यम से व्यवसाय शुरू किया तथा सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान मिला।
1: वहीं ग्रामीण महिला सुलेखा मोहली ने कहा कि उज्ज्वला योजना और बैंक ऋण से महिलाएं सशक्त हुई हैं। अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने से देश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड की हिंदेगढ़ा पंचायत में महिला किसानों के लिए जलवायु स्मार्ट और जैविक कृषि पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कम लागत में टिकाऊ खेती के जरिए उत्पादन और आय बढ़ाना है। केंद्रीय वर्षा आधारित ऊपरी भूमि धान अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शिव मंगल प्रसाद और डॉक्टर सोमेश्वर भगत ने महिलाओं को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की विस्तृत जानकारी दी। चतरा के इको पार्क में आज विश्व पर्यावरण दिवस के सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के तहत भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। 3 श्रेणियों में हुई इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों पर अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रकृति बचाने का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू में पुलिस विभाग की आपातकालीन प्रणाली मजबूत करने के लिए डायल 112 के तहत 36 आधुनिक बाइक शामिल की गई है। डीआईजी किशोर कौशल और एसपी कपिल चौधरी ने इन जीपीएस और सायरन से लैस गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों के अनुसार इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और त्वरित रिस्पॉन्स सुनिश्चित होगा।
3: ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को चार पहिया वाहन और दोपहिया वाहन उत्पन्न कराए गए, जिससे कि सघन रूप से गश्ती सुनिश्चित की जा सके। उसी चरण में पहले चार पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, दोपहिया वाहन भी उपलब्ध कराए गए, जिसे पलामू पुलिस के द्वारा और उसके जीपीएस उसमें लगाया गया।
1: पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 के आयोजन की घोषणा की गई। यह 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव आगामी 26 से 28 जून तक रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति के सचिव पुलन मित्रा और नवीन सहाय ने बताया कि इस फेस्टिवल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें केवल झारखंड के फिल्मकारों द्वारा निर्मित फिल्मों का ही प्रदर्शन किया जाएगा। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने रांची सहित राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं मॉडर्न पेंटाथलॉन नेशनल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी JSSPS के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बाइथल इवेंट में आरती कच्छप ने, रजत और आतासी कुमार ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। दोनों खिलाड़ी होटवार के JSSPS स्विमिंग सेंटर की हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मैं थोड़ा आराम करने का होता है, और साथ में आप जानते ही है कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही है और बच्चों को नींद कहाँ। अभी तो ना उन्हें स्कूल जाने का टेंशन है और ना ही कोई होमवर्क का, उनका तो सारा दिन खेलने में चला जाता है। तो आप भी बच्चों के साथ थोड़ी बच्चे बच जाए और गीतों भरा कोई भी खेल ज़रूर खेले। कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंताक्षरी में आप सभी का स्वागत है। अगर अंताक्षरी की शुरुआत करने की बात कहें तो आज भी वही पारंपरिक तरीके से ही वही अंताक्षरी का वो लहजा याद आ जाता है कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। जी हाँ, म म से आप भी कोई गाना सुननी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। मुझे तो एक गाना याद आ रहा है, क्या आपको भी यही गाना याद आ रहा है?

सच में अगर प्यार से बोले गए शब्द किसी भी इंसान के मन में उतरते हैं और चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, बहुत ही सार्थक गीत है ये। खैर, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला शब्द ये गीत था, एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, ल से कोई गीत।

0: खो गया यानी शब्द आया गया य। अब य से कोई गीत याद कीजिए।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: सच में कभी कभी हम जिंदगी में बहुत सोचते हैं और सिर्फ सोचते ही है, परंतु सोचने से नहीं, आत्मविश्वास से भर कर निर्णय लेने से जिंदगी चलती है। और अगली बार जब भी सोचे हमेशा सकारात्मक सोचे।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Tie Szena!
1: इस संदेश के बाद कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज पर थोड़ी ही देर में।

0: कार्यक्रम रांची मेलोडीज की आगाज़ बालिका वधू के इस गीत से करते हैं, जिसके गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है आरडी बर्मन। इस गीत के गायक कलाकार है अमित कुमार।
1: अच्छे लगते हैं
2: क्या?

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में आनंद बख्शी का लिखा अगला गीत फिल्म दोस्ताना से। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज़ दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

पंकज उदास की आवाज़ में, समीर कालिखा, नदीम श्रवण के संगीत में अगला गीत फिल्म साजन से।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ब्लैकमेल से ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म बड़ा दिलवाला थे ये गीत। इस गीत के साथ रांची मेलोडीज यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। पलामू जिले के राजहरा रेलवे स्टेशन पर आज कोयले से लदी एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण अपलाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है और कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रुकी हुई है। डाल्टनगंज स्टेशन प्रबंधक उमेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है। सरायकेला खरसावां में भाजपा के 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। जिला अध्यक्ष हरेकृष्णा प्रधान ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शक्ति केंद्र पर वृक्षारोपण कर किया जाएगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने आज अपनी मांगों को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रमोशन में घेराव आरक्षण लागू करने के लिए मांग की गई। मोर्चा के अनुसार इस घेराव का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। सिमडेगा के ठेठई टांगर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर करीब 8.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। मामले में दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं जबकि तीसरा आरोपी फरार है। एसडीपी

धर्मदेव पासवान ने बताया कि तस्कर ओडिशा से गांजा लाकर यहां पुड़िया बनाकर बेचते थे। जामतारा प्रखंड कार्यालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सुविधा केंद्रों को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया है। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि जून महीने में पूरे जिले के प्रखंडों और वृद्धा आश्रमों में विशेष शिविर चलाकर बुजुर्गों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम विज्ञान जगत, जिसमें आज चर्चा होगी इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर, जो पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है। वार्ता होगी बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पर खतरा। भेंट वार्ताकार होंगे प्रोफेसर V.S. राठौर और भेंटकर्ता होंगे बसंत कुमार, साथ ही सत्येंद्र नाथ बोस की जीवन परिचय के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के वाचन सहयोग प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए कितने फायदेमंद है इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पर कितना बड़ा खतरा है इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। और सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन का जो उपयोग है वो पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है इसके बारे में। वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल और गैस की जो समस्या है उससे घिरे हुए हैं और हर दिन हमें इससे जूझना पड़ रहा है। आज इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इन सभी चीजों के होने के बावजूद हम क्या ऐसी चीज है जिसे अपनाकर पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं और पेट्रोल डीजल और गैस में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उससे बच सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं। आज दुनिया भर में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण भी बन चुका है। यही कारण है कि अब दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल या डीजल के बजाय बिजली से चलने वाली बैटरियों का उपयोग करते हैं। इनमें कार, बस, बाइक, स्कूटर और यहाँ तक कि ट्रक भी शामिल हो चुके हैं। इन वाहनों के उपयोग से पर्यावरण को बहुत सारे लाभ तो होते ही हैं, लेकिन हमें पैसा भी बचाने का अवसर मिल जाता है। सबसे बड़ा जो लाभ है वो है वायु प्रदूषण में कमी आना। पारंपरिक वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड

0: और अलग अलग प्रकार के हानिकारक गैस निकलते हैं जो पर्यावरण को तो प्रदूषित करते ही हैं, हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों से चलने के दौरान कोई धुआं नहीं निकलता, इसमें शहरों की हवा अधिक साफ बनी रहती है और किसी प्रकार की कोई बीमारी भी हमें नहीं लग सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। वैज्ञानिकों की अगर हम बात माने तो जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण कार्बन उत्सर्जन है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको नियंत्रित की जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज्यादा आवाज करती है। इससे सड़कों और शहरों में शोर कम होगा और लोगों को शांत वातावरण भी मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन ऊर्जा दक्षता के मामले में भी काफी बेहतर है। ये कम ऊर्जा में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। इनका पर्यावरणीय लाभ भी बढ़ जाएगा और अगर हम बात करें तो हम जितना पैसा पेट्रोल डीजल में खर्च कर देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें तो हमारा वो पैसा बच सकता है और हम उस पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अब अलग-अलग तरह की योजनाएं चला रही है। चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी लोगों को दी जा रही है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना। यदि हम अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं तो आने वाली पीढ़ियों को हम बेहतर और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। तो हमने अभी बात कर ली कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है और कितने जरूरी हो चुके हैं ये। अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, मानव जीवन पर खतरा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर बी एस राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सुदूर संवेदन एवं भू सूचना विभाग BIT मेसरा में। सर, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: नमस्ते जोहार।
0: और सर, जिस विषय पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार इस चीज पर हम लोगों ने बात की है और इस बार बात करने का सबसे खास जो वजह है वो ये है कि 5 जून को हम सभी इस बार विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हमें इस विषय पर थोड़ा गंभीर होकर बातचीत करना जरूरी है। और जैसा कि पर्यावरण से संबंधित विषय है तो हम पर्यावरण प्रदूषण क्या है, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है यही है, और इसके प्रमुख कारण क्या है, प्रकार क्या है, इसके बारे में बताएं।
1: तो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे बहुत ही संवेदनशील विषय पर वार्ता करेंगे और इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो ये पृथ्वी है, जो एकमात्र प्लानेट है जिसपे मानव जीवन है, और ये आज के समय में हमारी ही गतिविधियों से मानव जीवन खतरा महसूस कर रहा है, जो कि पर्यावरण मुख्य तौर पे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो पर्यावरण बना हुआ है जिसमें हमारे जीवन सुरक्षित रहता है, जिसकी वजह से आज वो ही खतरे में है। और उसके खतरे की वजह हम सब का जीवन शैली है मुख्य तौर पे। और उसमें हम अगर देखें तो मुख्य तौर पे हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी वायु को, जो कि एक जीवन प्रणाली के लिए मुख्य अवयव है, उसको हम कैसे दूषित कर रहे हैं। और हम इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारी जब वायु दूषित हो रही है तो उसकी वजह से आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
0: जी।
1: और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, मतलब पृथ्वी का जो हमारे प्लेनेट का आनुपातिक जो तापमान है वो करीब करीब हमने अभी तक इंडस्ट्रियलाइज प्री इंडस्ट्रियलाइज जो बेस लाइन है 1850 के बाद में, लास्ट 150 साल के अंदर हमारी पृथ्वी की तापमान 1.3 to 1.4 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है और इसकी लिमिट हमने निर्धारित कर रखी है वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस। जिस हिसाब से हमारी गतिविधियां चल रही है और अगर समय रहते हम चेते नहीं तो ये हम क्रॉस कर जाएंगे, और अगर हम इसको क्रॉस कर जाते हैं तो वापिस उसी स्थिति में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी को। इसलिए आज के समय में ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं और हमारे जीवन को हम सुरक्षित बनाएं इस पृथ्वी पे, कि ये वातावरण हमारे रहने लायक रहे।
0: आपने जिस तरीके से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है
1: जी
0: दिन प्रतिदिन, उसके बारे में जिक्र किया, और
1: जी
0: इस साल की जो गर्मी है वो भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिली
1: जी,
0: है, तो ये हर साल कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है इसमें।
1: जी, मैं वही बताना चाहूंगा कि जो हमारे वायु प्रदूषण हो रहा है इसके साथ साथ हमारे वातावरण में जहरीली गैसेस उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान बढ़ने से हमारे ग्लेशियर पिघल

0: रहे हैं, हमारे ग्लेशियर पिघलने से हमारा समुद्र का तल जो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, और हर साल ये पहले करीब करीब 2 से 3 मिलीमीटर बढ़ रहा था, अभी
1: जी
0: 4 मिलीमीटर पर वर्ष बढ़ने लग गया, और ऐसा ही बढ़ता रहा। तो जो समुद्र के जीव है और समुद्र के पास में रहने वाले कोस्टल एरियाज में रहने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे प्लानेट की है, उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, वो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि आज के समय में हम हर चीज के लिए प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं,
1: जी
0: सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। आप सभी चारों तरफ, अपने चारों तरफ देख रहे होंगे कि किस तरह से प्लास्टिक हम बिखेर रहे हैं, चारों तरफ हमारे गांव घर तक प्लास्टिक पहुंच गई है, और हम अपनी सुविधा के लिए उस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इस पृथ्वी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और वो हमारे समुद्री जीवों के लिए, हमारे गाय और
1: पशु
0: जितने भी
1: पक्षियों
0: पशु
1: के लिए
0: पक्षियों के लिए, वो सब के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
1: आपने प्लास्टिक की बात की है, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वायु प्रदूषण,
0: जी
1: जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण,
0: जी
1: ये जो प्रदूषण है तीन,
0: जी
1: मानव जीवन पर इनका कैसे असर देखा जा रहा है और इससे क्या नुकसान हो सकता है
0: जी
1: पृथ्वी को और मनुष्य को?
0: जी आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे शहरीकरण हो रहा है, ग्रामीण हमारी जीवन शैली थी उसको हम छोड़ के आज शहरों की तरफ जा रहे हैं। हाँ, शहरों की तरफ जाने का एक कारण है, वहां
1: जी
0: पर हमें रोजी
1: परिवार के
0: रोटी
1: लिए
0: मिलती है, वहां पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम आज इतने सारे हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, वाहन यूज कर रहे हैं, हमारे हर काम के लिए वाहन यूज कर रहे हैं। आप सड़कों पर देखोगे तो कहीं पे जगह नहीं है, और हम चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइज, हमारी सुविधा के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ आप देखिए कितना वायु प्रदूषण हो रहा है उससे, कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, और ध्वनि प्रदूषण के वजह से और वायु प्रदूषण की वजह से हमारे लंग्स के अंदर डिजीज हो रही है, कैंसर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे आज के हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं, जवान लोगों में हार्ट अटैक हो जा रहे हैं,
1: जी
0: और कितने रेस्पिरेटरी लंग्स 60 साल से ऊपर के आदमी और बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसमें हमारे पृथ्वी की 99% पॉपुलेशन है वो PM2.5 से अफेक्टेड है। PM2.5 एक पार्टिकुलेट मैटर जिसको बोलते हैं, बहुत ही फाइन डस्ट जो हवा में चली जा रही है हमारी गतिविधियों की वजह से, वो हमारे श्वसन तंत्र में जा रही है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जिनका नाम भी नहीं सुना था, वो आज हमारे देखने को मिल रही है।
1: तो इन
0: जी
1: सभी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करके फिर भी वही काम हर दिन हर समय
0: जी
1: करते रहते हैं,
0: जी
1: और सरकार इस चीज़ को लेकर गंभीर है, लेकिन
0: जी
1: आम व्यक्ति जब तक इसमें सहयोग नहीं करेगा अपने स्तर पर,
0: हाँ,
1: तब तक तो ये ठीक करना शायद अकेले बस की बात
0: मुश्किल
1: नहीं
0: है,
1: है।
0: मुश्किल
1: लेकिन
0: है।
1: प्लास्टिक की बात आपने चूंकि
0: हाँ
1: थोड़ी देर पहले की थी, तो
0: जी
1: आम तौर पर हम सभी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं
0: जी
1: और कहीं ना कहीं उसके दोषी हम भी हैं,
0: हाँ
1: तो प्लास्टिक को छोड़ने के लिए सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है जिससे पर्यावरण को फायदा हो और हमें किसी तरह की बीमारी ना हो?
0: बिल्कुल, प्लास्टिक को छोड़ने के लिए मैं ये कहूंगा कि आपके स्थानीय स्तर पे जो भी पुराने हिसाब से हम कपड़ा का बैग लेके चलते थे, वनों से जो हमको हमारे जो डिकम्पोज होने वाली चीजें हैं वो, उसके बैग हम यूज करें, और सिंगल यूज प्लास्टिक, खास तौर पे अभी सभी की अपील यही है कि जो प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल की और फेंक देते हैं हम, उस प्लास्टिक को तो कम से कम मैं ये निवेदन करूंगा सभी इस पर्यावरण दिवस पे कि आप उसको छोड़ दीजिए,
1: जी
0: और आप पुराने जो हमारा समाज में थैला यूज करते थे, बैग इस्तेमाल करते थे, वो चीजें यूज करें, और स्थानीय स्तर पे जो बनने वाली चीजें उनको यूज करें। स्थानीय स्तर पे बनने वाली चीजों को यूज करने से हम पर्यावरण को नुकसान कम कर रहे हैं।
1: जी
0: इसका कारण है कि दूर में कहीं पे कोई वस्तु बन रही है और वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां से यहाँ लाने में उसको जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज हो रहा है उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, इसलिए हम स्थानीय स्तर की चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो वो कम होगा। और जो प्लास्टिक की आप बात पूछ रहे थे कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं और अपने आसपास फेंक देते हैं, वो वहां से जाके हमारे जलाशयों में चली जाती है, और जलाशयों में जाने के बाद में वो हमारे पानी, जो पीने वाला पानी है, आज की डेट में बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये पता चला है कि हर पीने के पानी में प्लास्टिक कंटेंट है, बहुत ही छोटा माइक्रो लेवल का प्लास्टिक कंटेंट है, वो हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे भोजन प्रणाली में प्लास्टिक घुस चुका है। इसलिए ये पर्यावरण दिवस पे आप सभी को शपथ लेना चाहिए कि कम से कम मैं सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करूंगा, और प्लास्टिक प्लास्टिक इस्तेमाल अगर करनी है तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करेंगे। मुख्य तौर पे तो मैं यही कहूंगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही नहीं है सिंगल यूज का, तो खास तौर पे।
1: लेकिन आमतौर पे जैसे कि मार्केट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो बंद पैकेट के खाने की चीजें आती हैं वो सारी प्लास्टिक में है। लेकिन प्लास्टिक

0: देखें कि ये मैंने पेड़ लगाया था और ये आज बड़ा हो रहा है, तो उससे हमारी धरती के ऊपर हरियाली बढ़ेगी, और हरियाली बढ़ेगी तो वायु प्रदूषण कम होगा, और ये फॉसिल फ्यूल जो है जिससे हमारे वाहन चल रहे हैं, दुपहिया चौपहिया जो भी वाहन है, ये हम धरती से पेट्रोल गैस निकाल के और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आज उनको चला रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। और इसको कम से कम इस्तेमाल करें, जहां जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, इसका ऑल्टरनेट तो हमको खोजना पड़ेगा।
1: तो इस साल 5 जून को पर्यावरण दिवस है, और अगर आप पर्यावरण दिवस को इस तरह से मनाना चाहते हैं कि पृथ्वी को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, तो एक
0: बिल्कुल
1: पौधा लगाएं, और उस पौधे को न सिर्फ लगाएं बल्कि उसे पानी दें, उसे सुरक्षित रखें, और एक बड़ा वृक्ष बनने तक उसकी रक्षा करें, तभी आपका पौधा लगाने का जो संकल्प है वो पूरा हो पाएगा और पृथ्वी को शायद आप थोड़ी सी मदद दे पाएंगे। तो सर, आपने ढेर सारी जानकारी दी, अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सभी को जोहार।
1: अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, मानव जीवन पर खतरा, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में थे डॉक्टर वी एस राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर, BIT मिश्रा, सुदूर संवेदन, भू सूचना विभाग। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे, तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और आज हम पर्यावरण और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के तौर तरीके और बहुत सारी चीजों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में भी बात करेंगे और उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिनके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद भी है। और हम जिस महान वैज्ञानिक की आज बात करने वाले हैं, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बोस के 7 बच्चों वाले परिवार में सबसे बड़े सत्येंद्र नाथ बोस थे। इनके पिता ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के तकनीकी स्टाफ के सदस्य के रूप में काम करते थे। बोस हाई स्कूल और कॉलेज दोनों में बहुत बुद्धिमान छात्र के रूप में ख्याति प्राप्त थे। इन्होंने 1909 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और मेरिट सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इंटरमीडिएट विज्ञान कार्यक्रम में दाखिला लिया, जहां इन्हें प्रफुल्ल चंद्र रे, शारदा प्रसन्न दास और जगदीश चंद्र जैसे ज्ञानियों ने पढ़ाया था। बोस ने 1913 में संयुक्त गणित में विज्ञान से स्नातक के साथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। सत्येंद्र नाथ बोस को 1920 के दशक की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम, बोस सांख्यिकी की नींव विकसित करने और बोस कंडेंसेट के सिद्धांत के लिए काफी प्रसिद्धि मिली थी। अगर हम इनके उपलब्धियों के बारे में बात करें तो विश्व परिचय रविन्द्रनाथ टैगोर का एकमात्र विज्ञान कार्य 1937 में सत्येंद्र नाथ बोस को समर्पित किया गया था। भारत सरकार ने 1954 में बोस को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें 1959 में एक विद्वान के रूप में देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, जब उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर नामित किया गया। इस पद पर वे 15 वर्षों तक कार्य करते रहे। नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की स्थापना 1986 में सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में भारत सरकार की संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा साल्ट लेक कलकत्ता में की गई। बोस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और इंडियन फिजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के उपाध्यक्ष के तौर पर भी ये कार्य कर चुके और इन्हें 1958 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में भी चुना गया था। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इन्हें गॉड ऑफ पार्टिकल के नाम से भी पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है और ये काफी प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों में इनका नाम शामिल है। तो हमारे देश में ऐसे महान महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने खोज और आविष्कारों से पूरी दुनिया को ये बताने का काम किया है कि भारतीय वैज्ञानिक किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं है। और हमारे देश में ऐसे महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है जिनके द्वारा किए गए आविष्कार और खोजों ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया है सोचने का। तो आज हमने आपको बता दिया कि सत्येंद्र नाथ बोस ने किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था और किन किन चीजों के लिए उन्हें दुनिया याद करती है। और अब बारी है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। तो प्लास्टिक सर्जरी आज की दुनिया में किए जाने वाले सबसे अधिक सर्जिकल ऑपरेशनों में से एक मानी जाती है। सामान्य तौर पर प्लास्टिक सर्जरी क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि शरीर की पुनर्स्थापना या परिवर्तन करने वाली एक शल्य चिकित्सा विशेषता है। दुनिया भर में ऐसी कई हस्तियां रही हैं जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद नाटकीय रूप में बदल गईं। शुरुआती लोगों के लिए सर्जरी को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, नाम पुनर्निर्माण सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। यदि किसी व्यक्ति को मानव शरीर के किसी हिस्से का पुनर्निर्माण यानी कि उसे फिर से ठीक करना है या कार्य प्रणाली में सुधार करना है तो वे पुनर्निर्माण सर्जरी से गुजरते हैं। पुनर्निर्माण सर्जरी में क्रैनियोफेशियल सर्जरी, हाथ की सर्जरी, माइक्रो सर्जरी और जलने का उपचार शामिल है। वहीं दूसरी ओर शरीर की खूबसूरती को निखारने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जाती है। ज्यादातर लोग अपना रूप बदलने के लिए ही कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। पॉप के किंग और मशहूर स्टार माइकल जैक्सन प्लास्टिक सर्जरी के बाद काफी बदल गए थे और बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा भी होगा, इसलिए आप उनके बारे में जानते भी होंगे और प्लास्टिक सर्जरी कितनी फेमस है ये भी जानते हैं। प्राचीन लोगों के लिए सर्जरी कोई नया विषय नहीं था। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार प्रमुख रूप से भारत में हुआ था ऐसा माना जाता है। प्राचीन सर्जन सुश्रुत ने 6वीं शताब्दी में प्लास्टिक और मोतियाबिंद सर्जरी के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारतीय वैज्ञानिक सुश्रुत संहिता ने पहली सर्जरी की थी।

0: समय वे शल्य चिकित्सा उपकरणों के रूप में चकमक पत्थर, कांच जैसा एक चमकदार भूरा या काला पत्थर हुआ करता था जिसका वो उपयोग करते थे, और मछली के दांत और तेज कांटे सर्जरी करने के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी भारतीयों के द्वारा 2000 ईसा पूर्व से ही की जाती थी। इस तकनीक में योगदान देने में सर्जन सुश्रुत संहिता ने प्रमुख भूमिका निभाई, और आज आधुनिक सर्जरी केवल एनेस्थीसिया की खोज और शरीर में संक्रमण की रोकथाम के कारण ही संभव है। प्लास्टिक सर्जरी की पहली पुस्तक है सुश्रुत संहिता, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा का ही ग्रंथ है। यह 5 खंडों में बटा हुआ है। इसमें पहले खंड में 46, दूसरे खंड में 16, तीसरे में 10, चौथे में 40 और पांचवें भाग में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार सुश्रुत संहिता में कुल 120 अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता में सर्जरी के लिए जरूरी औजारों यानी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी लिखा गया है। जैसे एक भाले नुमा आकृति के औजार हैं जो टूटी हुई हड्डियों एवं अनावश्यक मांस को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे करीब 101 यंत्रों की जानकारी उसमें दी गई है, जिन्हें 6 भागों में बांटा गया है। स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाक यंत्र और उप यंत्र। तो हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्लास्टिक सर्जरी का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, और इससे बहुत सारे लोग फायदा ले रहे हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करवाना या करना इतना आसान नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी देखने में जितनी सुविधाजनक और सरल लगती है, लेकिन उससे कहीं इसमें कठिनताएं हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं लोगों के मन में, और प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कैसे हुई थी, किस देश में इसका जन्म हुआ था, और इनके जो प्लास्टिक सर्जर थे सबसे पहले वो कौन थे, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो आज हमने ढेर सारी बातें आपसे कर ली, ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा कर ली, और हमारी जो स्टूडियो की घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी हमारा जो दायित्व है उसे निभाना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ एक पौधा नहीं लगाना है, बल्कि उस पौधे को पानी देना है, उसे सींचना है, उसे सुरक्षित रखना है और बड़ा होने तक उसकी रक्षा करनी है। तभी हम पर्यावरण को अपना योगदान सही तरीके से दे सकते हैं। इसलिए इस पर्यावरण दिवस पर आप भी एक पौधा लगाएं और उसे सुरक्षित रखें, उसे बड़ा करें, ताकि वो दुनिया में अपने योगदान से इस पृथ्वी को बचा सके। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, वाचन एवं सहयोग था वसंत कुमार का, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए हम आपको बता दें, अब से लेकर रात्रि 11:10 तक प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। युवा श्रोताओं को संबोधित होगा कार्यक्रम युववाणी, जिसे आप सुनेंगे शाम 5:02 पर। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 का समय होगा हमारे औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक के लिए। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं योगेश्वर राम और आकांक्षा सिन्हा। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 6 बजे आप सुन सकते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 से आरंभ होगा हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुनेंगे पहले किसान वाणी। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। शाम 7 बजे होंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर जिले में आजकल और 7:15 का समय होगा हमारे दैनिक कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा के लिए। इस कार्यक्रम को आज आप सुनेंगे संताली भाषा में। प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। 7:45 पर आप सुनेंगे सुर भारती, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर शैलेश मिश्र की वार्ता आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 8 बजे का समय होगा फिल्म संगीत के लिए और 8:10 पर आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण

8:45 से समाचारों का प्रसारण आरंभ होगा। आप सुनेंगे समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे और उर्दू में समाचार सुनेंगे आप 9:15 पर। इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। हमारे दिल्ली केंद्र की ही प्रस्तुति होगी 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स और 10 बजे से प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे पुनः हिंदी में समाचार सुन सकते हैं आप और 11:05 पर होंगे समाचार अंग्रेजी में। मीडियम वेव पर हमारी सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर, लेकिन एफएम पर हमारे प्रसारण को आप सुबह 6 बजे तक सुन सकते हैं। ये था हमारा आज के संध्याकालीन प्रसारण का संक्षिप्त विवरण।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विजय पथ का ये गीत साधना सरगम की आवाज में। फैज अनवर ने लिखा है इसे और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म अंदाज से। आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की है, बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जय किशन का।

बिल्कुल सही है दोस्तों, दिल उसे दो जो जहाँ दे दे, जहाँ उसे दो जो दिल दे दे। मतलब रिश्तों में अगर वफादारी हो, लोग ईमानदार हों, तभी ये काम आपको करने हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको फिल्म आखिर क्यों का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। शब्द हैं इंदिवर के, संगीत राजेश रोशन का।

दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जब इस तरह की धोखाधड़ी आपके साथ होती है तो दिल में एक आह सी उठती है और ये आह कुछ ऐसा रूप अख्तियार करती है।

मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। अभी आप सुन रहे थे फिल्म आए दिन बहार के का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार थे आनंद बख्शी और मौसीकी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ सरगम यहीं समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। धनबाद रेल मंडल के रजहरा स्टेशन पर हुए मालगाड़ी हादसे के कारण रांची मंडल की कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। आज खुलने वाली रांची सासाराम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है, जबकि कल सासाराम रांची एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। इसके अलावा रांची चौपन एक्सप्रेस आज बरवाडी स्टेशन पर ही समाप्त हो जाएगी। लातेहार के मनिका में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाओं के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रुपए की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। रांची के पुराना विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आज बोकारो सर्किट हाउस में धनबाद और बोकारो जिले से जुड़ी 20 शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान बोकारो डीसी अजय नाथ झा और एसपी नाथु सिंह मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरिंद्र कुमार मौर्य ने आज गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट 1 महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गोड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 5:02 हो चुके हैं। समय है हमारे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी का, जिसे आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं रिया छाबड़ा और ओमकार। प्रस्तुति है गौरव पांडे की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का युवाणी के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ओमकार
1: और मैं हूं आपकी दोस्त रिया।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और युवाणी के इस कार्यक्रम का बड़े ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की ये शाम बड़ी खास होने जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ आप आज रोचक जानकारियों से रूबरू होंगे बल्कि मधुर गीतों के साथ आप सभी का मनोरंजन भी होने वाला है।
1: जी दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसमें ना कोई स्वार्थ होता है ना कोई दिखावा, बस होती है सच्ची मुस्कान, सच्ची खुशी और ढेर सारा प्यार। जी हाँ, आज का विषय है बच्चों से प्रेम।
0: बिल्कुल रिया, कहते हैं अगर इस दुनिया में सबसे सच्चा दिल किसी का होता है तो वो एक बच्चे का ही होता है। बच्चे ना आपका बैंक बैलेंस देखते हैं ना आपका स्टेटस, उन्हें बस आपका थोड़ा सा समय और अपनापन और ढेर सारा प्यार चाहिए होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और सोचिए हम सब कभी ना कभी तो बच्चे जरूर थे। वो दिन याद है आपको जब एक छोटी सी चॉकलेट मिल जाती थी तो पूरी दुनिया अपनी सी लगती थी, जब पापा के कंधों पर बैठना किसी राजा की सवारी से कम नहीं लगता था।
0: लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बच्चों को सब कुछ देते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छे कपड़े, महंगे खिलौने, मोबाइल्स, टैबलेट्स, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही देने से हम पीछे रह जाते हैं, अपना समय।
1: बिल्कुल दोस्तों, सही कहा तुमने। कई बार बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। वो स्कूल में क्या हुआ बताना चाहता है, किस दोस्त ने उसे क्या कहा, उसकी दोस्ती किससे हुई, उसने आज क्या सीखा, वो सब कुछ बताना चाहता है। लेकिन हम कहते हैं अभी नहीं बेटा, काम है। और यही अभी नहीं धीरे धीरे उनके और हमारे बीच दूरी बना देता है।
0: दोस्तों एक छोटी सी सच्ची बात, एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता जवाब देता है 500 रुपए। बच्चे ने अपनी गुल्लक के पैसे निकाले और कहा, पापा ये 500 रुपए रख लीजिए, क्या कल आप एक घंटा मेरे साथ बैठ सकते हैं? सोचिए कितनी बड़ी बात है ये।
1: बिल्कुल दोस्तों, बच्चों को प्यार सिर्फ बड़े मौके पर नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए कि जब वो कोई टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बनाए तो हम मुस्कुरा कर कहे वाह बहुत अच्छा बनाया है, जब वो गिर जाए तो डांटने के बजाय उनका हाथ पकड़े, जब वो कोई सवाल पूछे तो उन्हें चुप कराने के बजाय उनका जवाब दे। वो बस चाहते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहे और हमेशा उनकी बात सुने।
0: और एक बात, बच्चे सिर्फ हमारी बातें ही नहीं सुनते, वो हमें देखकर सीखते भी हैं। अगर हम घर में सम्मान देंगे तो वो सम्मान सीखेंगे, अगर हम प्यार देंगे तो वो प्यार सीखेंगे, अगर हम गुस्सा देंगे तो वही उनकी स्वभाव का हिस्सा बन जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आजकल कई बच्चे अपने ही घर में अकेले हो गए हैं, मम्मी पापा साथ होते हुए भी मोबाइल में बिजी रहते हैं। याद रखिए, बचपन दोबारा कभी नहीं आएगा। आज जो बच्चा आपका हाथ पकड़कर चलना चाहता है, कल वही बड़ा होकर अपनी राह पर निकल जाएगा।
0: इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आज उनके साथ 10 मिनट बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ हंसिए और खेलिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, और यकीन मानिए ये 10 मिनट उसके लिए पूरी दुनिया के बराबर होंगे, और शायद यही सच्चा प्रेम है जो किसी महंगे गिफ्ट में नहीं बल्कि साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों में छुपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
2: रकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकि चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुकु बुकु रे टुकु बुकु रे चकला कभी को चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम जगड़ दुम चिकि चक चो

0: एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख ही नहीं है, बल्कि उन लाखों मासूम बच्चों की याद दिलाने वाला दिन है जिनकी मुस्कान किसी न किसी हिंसा, युद्ध या अत्याचार की भेंट चढ़ गई थी।
1: जी दोस्तों, जरा सोचिए, एक बच्चा जिसकी दुनिया सिर्फ स्कूल, खिलौने, दोस्तों और सपनों तक ही सीमित होनी चाहिए, अगर वही बच्चा डर, दर्द और हिंसा के साए में जीने लगे तो उसकी बचपन की कहानी कैसी होगी।
0: हम अक्सर खबरों में युद्ध, संघर्ष और हिंसा की बातें सुनते हैं, लेकिन उन खबरों के पीछे छुपी होती है कुछ छोटी छोटी आंखें जो सिर्फ शांति चाहती है, कुछ छोटे हाथ जो किताबें पकड़ना चाहती हैं, हथियारों की आवाज नहीं सुनना चाहती।
1: और दोस्तों, बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, हमारे आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जो घरेलू हिंसा, बाल श्रम, शोषण, बुलिंग और मानसिक प्रताड़ना का सामना करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि बच्चे की सुरक्षा सिर्फ उसके परिवार की ही नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है।
0: रिया, मुझे एक छोटी सी बात याद आ जाती है। जब हम छोटे थे तो गिरने पर सबसे पहले हम अपने माता पिता का हाथ पकड़ते थे, क्योंकि हमें भरोसा था कि वे हमें संभाल लेंगे।
1: बिल्कुल ओमकार, लेकिन सोचो उन बच्चों के बारे में जिनके पास वह भरोसा ही नहीं बचा, जिनकी रातें डर में गुजरती है और जिनके सपनों में भी सुकून नहीं होता।
0: हर बच्चे का अधिकार है सुरक्षित बचपन, अच्छी शिक्षा, प्यार और सम्मान, और शायद सबसे जरूरी एक ऐसी दुनिया जहां उसे अपनी मासूमियत बचाने के लिए लड़ना ना पड़े।
1: तो दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन पर हमारी सभी से एक छोटी सी अपील है कि अगर आप किसी बच्चे को परेशान, डरा हुआ या किसी राह के शोषण का शिकार देखते हैं तो चुप मत रहिए, बल्कि उसके साथ खड़े रहिए और उसकी मदद जरूर करिए।
0: क्योंकि दोस्तों, कई बार आपकी एक आवाज किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल देती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो दोस्तों इतिहास में 4 जून के दिन दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। 1989 में आज के दिन चीन की राजधानी बीजिंग में लोकतंत्र की मांग कर रहे निहत्ते नागरिकों और छात्रों पर चीनी सेना ने टैंकों और स्वचालित हथियारों से क्रूर कार्रवाई की, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।
0: 1917 में आज ही के दिन कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में पहली बार प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज प्रदान किया गया था।
1: 2001 में आज ही के दिन पूर्व नरेश दीपेंद्र विक्रम शाह देव के निधन के बाद ज्ञानेंद्र विक्रम शाह ने नेपाल की राजसत्ता संभाली थी।
0: 1940 में इसी दिन डॉनकर्क से ब्रिटिश और मित्र देशों के सेनाओं का ऐतिहासिक निकासी अभियान समाप्त हुआ और जर्मन सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया।
1: साथ ही साथ दोस्तों, आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ अमेरिका की सबसे निर्णायक मिडवे की लड़ाई शुरू हुई थी। दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करेंगे, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे में घर पर एवं बाहर निकलते वक्त खुद का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है।
1: अगर हम बात करें बाहर निकलने की तो बाहर जाते वक्त टोपी या छतरी जरूर पहने और सिर को ढक कर रखे।
0: वही घर पर ज्यादा तेल मसाले वाला व्यंजन ना खाएं, ठंडे तासीर वाला फूसी खाएं, इसके साथ ही अधिक से अधिक पानी जरूर पिएं दोस्तों।
1: तो चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं अमेजिंग फैक्ट्स की ओर।
0: तो दोस्तों क्या आपको पता है कि एक छोटे बच्चे का मस्तिष्क उसके शरीर के कुल ग्लूकोज ऊर्जा का लगभग 50% से 60% हिस्सा अकेले इस्तेमाल कर लेता है। इसी वजह से बच्चों को ज्यादा सोने की जरूरत होती है।
1: और दोस्तों क्या आप जानते हैं झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण भारत का एकमात्र ऐसा अभ्यारण है जिसे विशेष रूप से लुप्त प्राय भारतीय भेड़ियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है।
0: दोस्तों झारखंड की माटी में एक ऐसा वृक्ष रोई लता है जो एक एंडेंजर्ड प्रजाति है। इसे झारखंड के IUCN रेड डाटा बुक में भी शामिल किया गया है। इसे कलहरी ग्लोरियोसा या अग्निशिखा भी कहते हैं।
1: इसके आकर्षक लाल पीले फूल होते हैं। इसकी जड़ों और बीजों का इस्तेमाल गठिया और पेट की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों क्या आपको पता है एक आदमी 27 साल तक एयरपोर्ट में रहा, ना वो ऑफिशियली किसी कंट्री में एंटर कर सकता था न वापस जा सकता था। उसका पासपोर्ट इशू हो गया था और सडनली वो स्टेटलेस बन गया था। इसलिए उसने अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट 3 डेकेड एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर ही स्पेंड किया। वहीं सोना, वहीं खाना, वहीं डेली लाइफ। और शॉकिंग पार्ट ये है कि ये एक रियल स्टोरी है जिससे इंस्पायर होकर हॉलीवुड मूवी

द टर्मिनल बन चुकी है। तो दोस्तों, रियलिटी कभी कभी फिक्शन से भी ज़्यादा अनबिलीवेबल होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि एरोप्लेन फूड का टेस्ट वियर्ड होता है क्योंकि कुकिंग ख़राब होती होगी, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम फूड में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे टेस्ट बर्ड्स में होती है। जब प्लेन स्काई पे होता है तो हाई एल्टीट्यूड और ड्राई एयर की वजह से हमारी टेस्ट और स्मेल दोनों वीक हो जाती है, और साइंस के अकॉर्डिंग स्वीट और सॉल्टी टेस्ट ऑलमोस्ट 30% तक फेल ही नहीं होता है। इसलिए एरोप्लेन में वही फूड जो ग्राउंड में टेस्टी लगता है, ऊपर जाकर टेस्ट लेस हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: बर्थडे भेंचू भेंचू
1: पूरी दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे।
2: रिया, मुझे एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते हैं प्यारे।
3: बिल्कुल दोस्तों, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और उनका मन बिल्कुल साफ होता है। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को वक्त, प्यार और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। दोस्तों, बातें तो हमें और भी करनी थी आपसे, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी दोस्त रिया
2: और ओमकार
3: को इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर,
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।
7: RBI कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण श्रमिक लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकांक्षा सिन्हा और युगेश्वर राम। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

0: श्रमिक साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम श्रमिक लोक में। कार्यक्रम में आज हम हैं योगेश्वर
1: और मैं आकांक्षा। आप सभी श्रमिक साथियों को नमस्कार और जोहार, और योगेश्वर भैया आपको भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार आकांक्षा, बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
1: और आपको अपनी बचपन की कुछ बातें याद है कि नहीं भैया?
0: बिल्कुल आकांक्षा, बचपन की यादें मन को काफी सुकून देती है। ना चिंता ना चिंतन, बस अपने आप में खुश रहना और घर परिवार के बीच मुस्कान बिखरते रहना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने भैया। और बच्चों के कुछ अधिकार भी हैं, वो आपको याद है कि नहीं?
0: बिल्कुल याद है आकांक्षा, वो अधिकार है शिक्षा, सुरक्षा और एक स्वस्थ बचपन का।
1: बिल्कुल, ये अधिकार बच्चों को एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण भविष्य भी देते हैं, और इन अधिकारों के बिना किसी भी बच्चे या समाज का सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं है भैया।
0: आकांक्षा, भारत

0: में 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
1: बिल्कुल, और साथियों को बता दें कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो बच्चों को गरीबी से, जो भी उसके दुष्चक्र है वो उनसे बाहर निकालती है शिक्षा, और उनके लिए रोजगार के बेहद ही अवसर जो है वो मुहैया कराती है।
0: ये अधिकार बच्चों को सही गलत का फैसला करने, जागरूक बनने और अपने जीवन के बारे में सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
1: बिल्कुल, और यदि बच्चों का जो ये बुनियादी सुविधा भी देती है, शिक्षा के बदौलत ही उन्हें एक बुनियादी शिक्षा में सुविधा मिलती है कि वे अच्छे से पढ़े लिखे और अपना रोजगार करें और भविष्य बनाएं, और साथ ही उन्हें पोषण, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सुविधा भी मिलती है, और साथ ही हमारे जो भी बच्चे हैं ना उन्हें एक स्वस्थ शरीर का भी ज़रूरत होता है, ताकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विकास होता है, और जब वे अच्छे मन से पढ़ाई करते हैं तो वे भविष्य का निर्माण भी करते हैं, है ना भैया?
0: बिल्कुल, और जानती हैं एक स्वस्थ बच्चा ही जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ सीख सकता है और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, और इन अधिकारों को पाने और सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय आक्रामक के शिकार हुए मासूम बच्चों के दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है।
0: इस दिवस के पीछे जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में उन बच्चों को दर्द और पीड़ा को पहचानना और स्वीकार करना है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार होते हैं।
1: बिल्कुल, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का अधिकार पाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो चले शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ प्रियदर्शी से, और इनसे बातें कर रहे हैं योगेश्वर राम।
2: भोजन, वस्त्र और आवास के साथ ही शिक्षा पाना भी हमारा मूलभूत अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है, चलिए आज हम इससे संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अमिताभ प्रियदर्शी। अमिताभ जी, आपको मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार योगेश्वर जी।
2: अमिताभ जी, शिक्षा के अधिकार की बातें की जाती है, लेकिन पहले तो यह जानने की जरूरत है कि शिक्षा हम किस रूप में देखते हैं और यह हम सभी के लिए कितना अनिवार्य है।
3: योगेश्वर जी, ये स्पष्ट है, आदि काल से ही शास्त्रों में भी उल्लेख है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम् लोचनाभ्यास विहीनस्य दर्पणम किम् करिष्यते। अर्थात कि जो इंसान शिक्षा या विवेक अपने पास नहीं रखता है उसके शस्त्र और शास्त्र किसी काम के नहीं है। शिक्षा के बगैर वह एक नेत्रहीन व्यक्ति की तरह है जो अपने पास दर्पण रखता है। इतना ही नहीं, आपने सुना भी होगा कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। अर्थात विद्या से हमें विनय मिलती है और विनय हमें पात्रता देती है। तो स्पष्ट है, शास्त्रों में उल्लेख है, हम भी जानते हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो विद्या हमें ज्ञान देती है और ज्ञान हमें विज्ञान में निहित तत्वों को पढ़ने समझने का मौका देता है। इसलिए विद्या बहुत जरूरी है, किसी भी तरह से किसी भी ज्ञान के लिए विद्या आवश्यक है।
2: उसे कहा आपने कि विद्या यानी ज्ञान हर किसी के लिए अनिवार्य है, और इसके बिना आज के समय में तो हम एक पल भी चल नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कदम पर ज्ञान की जरूरत है, समझने और जागरूक रहने की जरूरत है। अमिताभ जी, शिक्षा के अधिकार की बातें की जाती है, ये अधिकार किन के लिए बातें की गई है?
3: योगेश जी, शिक्षा का अधिकार जो है ये तो आदिकाल से बच्चों को दिया जाता रहा है, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि शिक्षा से लोग विमुख होने लगे। तो भारत सरकार ने एक व्यवस्था की जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए विद्या और शिक्षा सुनिश्चित कर दिया गया, और इसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया जिसके तहत बच्चों के अनिवार्य शिक्षा दी जाने लगी।
2: अधिनियम के तहत हम यदि देखें तो यह अधिनियम जो है कितना प्रभावी हो पाया है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा देने की बातें की गई है, क्या स्थिति अभी है?
3: देखिए, अभी बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है, लेकिन ये इसको आप 100% नहीं कह सकते हैं, अभी भी बहुत मेहनत की जरूरत है। अभी भी आप देखेंगे कि लगभग 70 से 80% ही हम लोगों ने इसमें लक्ष्य को हासिल किया है, 20 से 25% अभी भी लक्ष्य से हम लोग दूर हैं। तो इसके लिए हमको सब मिल करके तैयार करना होगा, सिर्फ अधिनियम की बात ना करें, हमको तो ये चाहिए कि समाज के एक एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो जाए, इसमें शामिल हो जाए, और हर एक माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे, तभी हम अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। आपने सुना भी होगा, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है योगेश जी, हम सरकार पर इसे नहीं छोड़ सकते हैं, और माता पिता को समझना चाहिए कि वो अगर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला रहे हैं तो वो ही सबसे बड़े शत्रु हैं। एक श्लोक का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि संस्कृत एक श्लोक है कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वह माता शत्रु के समान और पिता दुश्मन के समान है, ऐसे मनुष्य सभा में कभी शोभा नहीं प्राप्त करते, ये हंसों के बीच बगुला से प्रतीत होते हैं। तो बहुत जरूरी है योगेश जी कि हम शिक्षा प्राप्त करें, अभी हमको और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी।
2: छोटे बच्चे 6 वर्ष से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, आप देखेंगे कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अज्ञानता है, शिक्षा की काफी कमी है, और उनके बीच शिक्षा को बढ़ावा देना है तो उसके लिए भी सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जुड़ने से भी पीछे रह रहे हैं। तो क्या वजह पा रहे हैं कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं?
3: इसके पीछे कई कारण है योगेश जी। आप जानते हैं कि शिक्षा के का अधिकार जो है ये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत लागू किया गया, सरकार ने इसके लिए शुरुआत की थी, 86वां संशोधन से इसकी शुरुआत की गई थी। 2002 में भारत के संविधान के अंतर्गत स्थापित अनुच्छेद 21 के तहत इसका प्रावधान किया गया और 1 अप्रैल 2010 को इसकी स्थापना की गई। तो सरकार की ओर से यही काफी था। इतना ही नहीं, सरकार ने क्या किया कि इसके तहत स्कूलों की स्थापना करना शुरू की, स्कूलों को केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के लिए को शिक्षा के मद में 35 से 40% भुगतान किया जाने लगा। इसके बाद सरकार ने क्या किया कि छोटी छोटी दूरी पर 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के अंदर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बनवाया उन्होंने, एकल विद्यालय एकल शिक्षक विद्यालय की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, अभी आपने सुना होगा कि मध्याह्न भोजन और लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था की जा रही ताकि उनको पढ़ने में परेशानी नहीं हो, कुछ संकोच नहीं हो। तो बच्चे स्कूल तक क्यों नहीं जाते हैं? बच्चे सरकार जानती है गरीबी है, स्कूल जाने में खर्च है, बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो उनको फी नहीं, उनके लिए फी नहीं हो पाएगा, टाइमली समय पर उनको खाना नहीं मिल पाएगा। तो सरकार ने व्यवस्था कर दी कि आप खाना स्कूल में ही ले लें, मध्याह्न भोजन के तहत आपको खाने की चिंता नहीं है, बच्चा स्कूल अगर जाएगा तो वहीं खाएगा पिएगा, आप बच्चे को सिर्फ स्कूल भेजें। बच्चियां नहीं जाती थी, 9 साल 10 साल के बाद उनको मासिक धर्म की परेशानी थी तो संकोचवश नहीं जाती थी। तो अब स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था कर दी गई है। सरकार ने कई तरह के इस तरह के उपाय किए हैं, लेकिन इसमें सामाजिक प्रवेश जरूरी है, समाज में जागरूकता जरूरी है।
2: बिल्कुल जागरूकता जरूरी है, और जागरूकता को लाने में यदि हम कहें कि भूमिका की बातें तो किन की बनती हैं?
3: आप जानते हैं संचार के माध्यम बहुत बड़ा उपयोगी तंत्र है, एक एक घर घर में अभी भी रेडियो है, टीवी है, सबसे ज्यादा तो आज हर घर में मोबाइल पहुंच गया है
2: जी।
3: जो सोशल मीडिया अभी जो कार्य कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कई ऐसे समूह जो कार्य भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कार्य नहीं हो रहा है, तो जो संचार के साधन है खास करके वर्तमान में सोशल मीडिया का की मदद लेनी चाहिए। जिस तरह सरकार या प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और उसको सोशल मीडिया में डालते हैं, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में स्थानीय भाषा जो लोग समझ सकें उस भाषा में समाचार मैसेज संदेश जाना चाहिए और लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। इसके अलावा बैनर पोस्टर आप जानते हैं, ग्राम सभाएं अभी भी काम कर रही हैं, ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, और एक एक ग्राम को चुन करके उस गांव के एक एक व्यक्ति के घर घर तक जाने, मान लीजिए 10 व्यक्ति है, 100 लोगों का गांव है, वो प्लान बना ले कि हम लोग 10 दिन में एक एक गांव घूम के एक एक व्यक्ति के को जागरूक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हर दिन इसका रिवाइवल होगा और लोग जागरूक हो सकेंगे। तो संचार माध्यमों का उपयोग किया जाए, अखबार का उपयोग किया जाए, सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए, ग्राम सभाओं का उपयोग किया जाए, जो मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री, जो शासकीय निर्देश होता है उनका उपयोग किया जाए। किसी भी तरह से शिक्षा अधूरी नहीं रहेगी अगर ये सारे माध्यम अपना लिए जाएं।
2: बिल्कुल, यदि हम बाधाओं की बात करें कि शिक्षा के अधिकार को बढ़ाने में क्या मुख्यतः बाधाएं सामने दिख रही
3: है? देखिए, सामान्य बाधा है लोगों की समझ का। अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं कि वास्तव में शिक्षा जरूरी क्यों है। अभी तो आप जानते हैं कि मोबाइल आ गया है तो लोग मोबाइल खिलाते लगते हैं कि वो बहुत जानकार हो गए हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आज भी एक कुली का बेटा कुली का ही काम कर रहा है, किसान का बेटा किसान का ही काम कर रहा है, मिस्त्री का बेटा मिस्त्री ही बना रहा, फल बेचने वाला का बच्चा फल ही बेच रहा है। कारण ये है कि अगर वो शिक्षा के अधिकार और शिक्षा की उपयोगिता, उसके महत्व को समझ पाते तो उनको प्रेरित करते। लेकिन चूंकि अभिभावक ही शिक्षक नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी अड़चन ये है।
2: हाँ बिल्कुल, एक बात सही कहा आपने कि अभिभावक को शिक्षक बनने की जरूरत है। जब तक अभिभावक शिक्षक नहीं बनेंगे तब तक शिक्षा को पूर्ण रूप से बच्चों के बीच विकसित करना कहीं न कहीं कठिनाई है, और शिक्षा के अधिकार जो अधिनियम बने हैं उस अधिनियम को पूरा करना एक चुनौती साबित होगा। तो अभिभावकों यदि हम बात करें तो अभिभावक की सोच जो है बदलने के लिए उनमें क्या बदलाव की जरूरत है ताकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है धरातल पर उतरे और उनके बच्चे जो है शिक्षा को पा करके जिस कार्य को वे कर रहे हैं उस कार्य से आगे बढ़ करके कुछ अलग हटकर करें और अपने परिवार का, राज्य और देश का नाम रोशन करें।
3: योगेश जी, आपने सुना होगा अभी तो प्रचलन से लगभग खत्म हो गया है प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की गई थी। प्रौढ़ शिक्षा क्या थी कि घर के बड़े बुजुर्गों को पढ़ाया जाता था, ये सरकार का ही प्रयास था ताकि घर के बड़े बुजुर्ग शिक्षा को के महत्व को समझें। क ख ग घ या हस्ताक्षर कराना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था कि शिक्षा का महत्व क्या है ये घर के बुजुर्ग समझें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाएं अभी भी चलनी चाहिए। सबसे पहले घर का बुजुर्ग शिक्षित होगा तभी वो शिक्षा को अपने संतान और अपने आने वाली आगे वाली पीढ़ी को दे पाएगा। तो एक ये प्रयास बहुत जरूरी है प्रौढ़ शिक्षा, ताकि अभिभावक ही सीखें। दूसरी बात कि दंड का भी प्रावधान होना चाहिए कि जिस घर से बच्चे को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, चाहे उसका अभिभावक ही क्यों नहीं हो, उसको दंड का प्रावधान किया जाए ताकि वो विवश होकर के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे। तीसरी बात क्या है कि हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा, गली मोहल्लों में खुद हमको बताना पड़ेगा। कई सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जिनको सरकार पैसा देती है, सरकार को चाहिए कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से काम करने का मौका दे, साथ ही उनसे रिपोर्ट भी ले कि उन्होंने क्या काम किया है, और अगर नहीं किया है तो उनके फंड उनकी व्यवस्था को भी नियंत्रित करें
2: जी।
3: और जो स्वयंसेवी संस्थान है जानते हैं कि उनकी व्यवस्था इससे चल रही है तो उनको भी इसमें पूरी तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वयं शिक्षित होंगे तभी किसी को हम शिक्षित कर सकते हैं, इसलिए अभिभावकों को पहले शिक्षित होना अनिवार्य है। और शिक्षा प्राप्त करने का कोई समय नहीं होता, हम किसी उम्र में भी प्राप्त कर सकते हैं
3: जी। जी
2: अमिताभ जी, एक महत्वपूर्ण चीज हम बात करना चाहेंगे आपसे कि कहते हैं कि पुरुष शिक्षित तो स्वयं शिक्षित और स्त्री शिक्षित तो दोनों कुल शिक्षित है, यानी स्त्रियों को शिक्षित होना, बालिकाओं को लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि वे जिस घर में आज हैं और कल जिस घर में जाएंगे वहां पर भी शिक्षा का प्रसार करेंगे। तो अहमदी लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो अभी क्या आप पा रहे हैं?
3: योगेश जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आप पिछले लगभग एक दशक से ये परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं कि एक तो लिंग भेद को से हम लोग ऊपर उठ गए हैं
2: जी,
3: और बेटा और बेटी दोनों में समानता महसूस करने लगे हैं। संतानोत्पत्ति में भी आप देखेंगे कि अगर किसी के यहाँ बेटी है तो वो दोबारा बेटा की चाहत नहीं रखता है। उसी तरह शिक्षा में भी अब धीरे धीरे ये भेद खत्म हो रहा है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाल के दिनों में जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है लड़कों की तुलना में, क्योंकि उनके पास कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो पढ़ती हैं। और आपने सही कहा है कि जब तक किसी घर में महिला शिक्षित नहीं होगी उसके आगे की शिक्षा बाधित होती रहेगी, क्योंकि प्रथम गुरु तो माँ ही है। एक एक शब्द बच्चा जो है वो अपनी माँ से सीखता है, और माँ अगर शिक्षित नहीं रहेगी तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती है, व्यवधान पहला अवरोध वहीं शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चियों की शिक्षा हो और महिलाओं की भी शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा में सिर्फ पुरुषों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। तो पहली आधारशिला होगी शिक्षा की कि हम महिलाओं को शिक्षित करें, बेटियों को पढ़ाएं। बहुत बढ़िया स्लोगन हाल के दिनों में चल रहा है सरकारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये दोनों उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को ही नहीं प्रेरित करता है या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बेटी बचाओ का मतलब है कि अगर स्त्री धन रहेगी तो संतति उत्पन्न होगी, और बेटी पढ़ाओ का मतलब है कि अगर बेटी पढ़ेगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। इसलिए इस स्लोगन को कहें कि जमीन पर उतारना चाहिए और गंभीरता से एक एक घर में फैलाना चाहिए, ताकि शिक्षा के साथ साथ और सामाजिक विकास भी हो सके।
2: अंत में अमिताभ जी, शिक्षा के अधिकार के प्रति आपका क्या संदेश होगा समाज के?

0: योगेश जी, फिर एक के उदाहरण का उपयोग करना चाहूंगा कि विद्या या विमुक्त है, शिक्षा वही है जो हमें मुक्त करती है। मुक्त करना समाज से नहीं, जीवन से नहीं, अंधकार से, अज्ञानता से। इसलिए मुझे लगता है कि इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, और शिक्षा का अधिकार सरकार ने लागू किया है अगर, तो हमको भी उसके साथ चलना चाहिए। सरकार को हमको मदद पहुंचानी चाहिए। वो मदद कैसी हो, सिर्फ हम अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं, और अगल बगल के जितने बच्चे हैं जो कचरा चुन रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, जो 14 वर्ष से नीचे हैं, हम उनको भी प्रेरित करें कि भाई मान ली कहीं व्यवस्था होगी, कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन जो जहां काम कर रहे हैं वहां के मालिक ये ध्यान दें कि 14 वर्ष से बच्चों के नीचे के बच्चों को हम लोग काम में न लगाएं, उनको स्कूल भेजें। और कचरा चुनने वाले या इवन मैं तो कहूंगा कि जो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी पहुंचाया जाए स्कूल। उनको ये कहा जाए कि आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं, खाना वहीं मिलेगा और वहीं जाकर के पढ़े। तो इस दिशा में हमारा एक एक निजी व्यक्ति का संलग्न होना बहुत जरूरी है। योगेश
1: जी, अमिताभ जी, शिक्षा के अधिकार के प्रति बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: शिक्षा का अधिकार क्या है, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अमिताभ प्रियदर्शी, और इनसे बातें कर रहे थे योगेश्वर राम।
3: और अब याद करते हैं भारतीय सिनेमा की दिग्गज और पद्मश्री से सम्मानित अभिनेत्री नूतन जी को। आज इनकी जयंती मना रहे हैं। 4 जून 1936 को जन्मी नूतन जी ने अपनी सशक्त, सहज और भावपूर्ण अदाकारी से भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी।
2: जी हाँ, नूतन जी ने महज 14 साल की उम्र में 1950 में फिल्म हमारी बेटी से अपने करियर की शुरुआत की थी। इनकी प्रमुख फिल्मों में सुजाता, सीमा, अनाड़ी, बंदिनी, छलिया, मिलान और मैं तुलसी तेरे आंगन की बेहतरीन और यादगार फिल्में हैं।
3: नूतन जी को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है।
2: बिल्कुल, तो चले नूतन जी की याद में उन्हीं के अदाकारी की ये फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की गीत सुनते हैं साथियों।

0: नूतन जी की अदाकारी का ये गीत मैं तुलसी तेरे आंगन की मन को दम मोह लेता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा
0: एक
1: एकदम।
0: बार फिर नूतन जी को सत सत नमन। आकांक्षा, हमारे जो श्रमिक साथी है ना, वो श्रम तो करते ही हैं और
1: बिल्कुल।
0: श्रम करना भी है। श्रम का कोई तो विकल्प है
1: है भी
0: नहीं।
1: नहीं।
0: घर परिवार को चलाना है,
1: चलाना ही है।
0: आमदनी करनी है, घर
1: बिल्कुल।
0: परिवार को खुशहाल रखना है, तो मेहनत करनी है,
1: करनी
0: श्रम
1: ही है।
0: करनी, जितना श्रम कर सकते हैं, चाहे
1: बिल्कुल,
0: धूप हो, बारिश हो
1: बारिश
0: या
1: हो।
0: छांव।
1: बिल्कुल। तो साथियों, हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जिन्हें खुले आसमान के नीचे काम करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी मौसम हो, जैसा कि
0: बिल्कुल
1: आपने कहा है, और अपनी आजीविका के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन साथियों, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है और काफी धूप रहती है, यानी चिलचिलाती हुई धूप, तो साथियों काम के दौरान एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है आपको।
0: बिल्कुल अच्छा। फिलहाल का जो धूप है, काफी कड़ी धूप है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इस समय कई एहतियाती बरतने की चेतावनी
1: चेतावनी।
0: सलाह दी जाती है कि
1: बिल्कुल।
0: सुबह 11 से 3 बजे तक घर से हो सके तो नहीं
1: नहीं
0: निकले,
1: निकले।
0: आवश्यक कार्य हो तभी निकले। और
1: बिल्कुल।
0: ऐसी परिस्थिति में हमारे श्रमिक साथियों को भी कार्य करना
1: कार्य
0: पड़ता
1: करना
0: है,
1: पड़ता है।
0: चाहे पसीना हो या फिर मेहनत तो करनी ही पड़ती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: आकांक्षा, चिलचिलाती धूप में जो हमारे श्रमिक साथी काम तो करते हैं, तो कुछ सावधानी बरतते हुए करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे स्वास्थ्य जो है प्रभावित नहीं
1: नहीं
0: होगा।
1: होता बिल्कुल।
0: जरूरत है साथियों कि आप काम पर हो तो पानी पीते रहें,
1: बिल्कुल
0: समय समय
1: बिल्कुल।
0: पर, कुछ देर पर पानी पीते रहें। अपने साथ हमेशा पानी का बोतल रखें और थोड़ी देर पर पानी पिए, और हो सके कभी कभी ORS का घोल, ग्लूकोज भी आप पी सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: आपको जो है डिहाइड्रेट होने से बचाएगा या पानी
1: बचाएगा।
0: की कमी से बचाएगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: पानी की कमी जब शरीर में होती है ना, तो कई शारीरिक समस्याएं होती है
1: उत्पन्न होने
0: और
1: लगती
0: हम
1: हैं।
0: बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ जाएंगे तो फिर श्रम कैसे करेंगे? स्वस्थ रहना
1: बिल्कुल।
0: है तो पानी का
1: पानी
0: पीना
1: की
0: ही है।
1: मात्रा को अपने शरीर में बनाए रखना है। बिल्कुल, आपने सही कहा। साथियों को इस गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचना है।

0: तो इस मौसम में शरीर को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए तरल पदार्थों के साथ साथ पानी से भरपूर फलों को भी शामिल करें। अपने खाने में तरबूज, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी लें, है ना, और इसके अलावा सत्तू पानी हो गए, और बहुत सारे छाछ, लस्सी, ये सब भी आप अपने शामिल करें खाने में।
1: बिल्कुल अच्छा। और फिलहाल जो गर्मी को देखते हुए प्रकृति ने जो है ऐसे फलों को जो है इस समय देती है जिसमें कि
0: बिल्कुल
1: पानी की
0: बिल्कुल
1: मात्रा
0: मात्रा
1: ज्यादा
0: ज्यादा
1: होती है,
0: होती
1: जैसे खरबूज तरबूज की बातें आपने की, और ये हमारे शरीर के लिए, खासकर पाचन तंत्र के लिए बहुत ही बेहतर
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: पाचन तंत्र को स्वस्थ
0: स्वस्थ रखता है,
1: रखता है, जिससे
0: बिल्कुल
1: कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं।
0: बिल्कुल
1: हमारे साथियों को हम ये भी बता दें कि इस मौसम के लिए जो कपड़े हैं ना, वो सूती बेहतर माना जाता है, आरामदायक भी होता है। और
0: बिल्कुल
1: काम के दौरान प्रयास करें सूती और ढीले ढाले कपड़े पहने,
0: बिल्कुल
1: सिर को भी सूती कपड़े से बांध कर रखें। और यदि रास्ते में हम आ जा रहे हैं तो छाता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और साथ ही हमारे श्रमिक साथियों को अपने पोषण पर भी ध्यान देना है। सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खाना है साथियों, आपको पोषण पर भी ध्यान देना है। इसलिए जो भी आपको सब्जियां मिलती हैं, साबुत अनाज है, बाजरा है, ओट्स है, मक्का है, और दालें हैं, दालें में राजमा, मसूर, जितनी भी प्रकार की दालें हैं ना, वो सभी अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: इनमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व तो होते हैं जो कि एक शरीर के निर्माण और विकास में सहायक होते हैं।
1: बिल्कुल आकांक्षा। और इसी के साथ वक्त भी हो चला है श्रमिक साथियों से आज्ञा ले लेगा, फिर इसी कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपने मित्र योगेश्वर
0: और आकांक्षा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद ने जनवितरण दुकानों में लाभुकों को पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल ब्लड प्रेशर तथा एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराने और CHC केंद्रों पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गढ़वा पुलिस ने सगमा से अगवा L&T कंपनी के कर्मचारी मुरारी तिवारी को अपराधियों के चंगुल से सकुशल मुक्त करा लिया है। SDPO सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 7.5 लाख की फिरौती मांगने वाले दो अपराधियों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरांगी में आज एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों टाटीझरिया के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। रामगढ़ पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत विभिन्न मामलों में फरार 15 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने पिछले दो दिनों के दौरान सभी थानों और ओपी क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर कुल 19 वारंटों का निष्पादन किया। पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण मालपहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने मलबे को हटाकर आवागमन सुचारू कराया। आपदा में कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:02 हो चुके हैं। समय है हमारे ग्रामीण प्रसारण का। आइए सुनते हैं पहले किसान वाणी। कार्यक्रम के साथ हैं कृष्ण जीवन पौराणिक और विष्णु उरांव। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनो या सौ किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर जोहार।
0: ई कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो भाई आज हमरे का कार्यक्रम में जानकारी करब से के बताए दो थे। सबसे पहले हमरे मौसम कर जानकारी करब। आज की बात में पशु मन में होए वाला बीमारी में कौन कौन सा बीमारी है से के बतावें डॉक्टर दीक्षा मलेठा। कृषि विकास गीत सुनब सुकुमार संगीमन कर गावल। और नई उम्र की नई फसल में एगो किसान आनंद कुमार से रावण के भेंट भी करवाओ।
1: तो सबसे पहले और करीला मौसम कर हाल खबर से। तो आज कर मौसम विभाग वट से भेटार सूचना कर मुताबिक आज कर तापमान ई तरी रहे कर अनुमान लगाल गलक है, जेकर में झारखंड राज्य कर राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, और रामगढ़ कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, और लोहरदगा कर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, और गुमला कर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस।
0: तो तापमान में तो उतार चढ़ाव होते हैं ना, और तापमान में उतार चढ़ाव हुआ थे तो इकर से हमरे कर जो है से कभी ठंडा हुआ थे कभी गर्म हुआ थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हुआ थे, तो इकर से भी तनी कुना मौसम से भी तनी का कहल जाए जे मौसम का जो उतार चढ़ाव हो सिकर में सर्दी खांसी बुखार हो ते मौसम कर उतार चढ़ाव में तनी कुना अपन खान पान के भी ध्यान रखे के चाहिए, और अपन संगे अपन पशु मन कर भी जे मवेशी मन है उ मन कर भी खान पान में ध्यान रखे के चाहिए। काल के देखो कभी चरे जाए ना नहीं तो कभी कभी ऐसा घास हो जे के उमन खाए लोग
1: एकदम
0: है नहीं, और जैसे गाजर घास होलक या तो जैसे अकवन होलक या और कोई कोई जैसे का कहन कनैल मन के होलक उमन के अगर खाए जाए ना तो पशु मन में जो है से माने बीमार हो जाए और ऊपर से पशु मन बीमार पड़ जाए से यह विषय में जानकारी आज।
1: हाँ तो आज कर बात में यह है कि पशु में होए वाला जो बीमारी मन हो ना का जैसा होएला, तो इकर में बतावें विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा मलेठा और इनकर से गोठाएं हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम अपने पशुओं को रहने और खाने पीने का इंतजाम तो रखते ही हैं, लेकिन कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही या अनजाने में हुई चूक पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। चारा खाते समय कीटनाशकों के संपर्क में आने से या दूषित पानी पी लेने से पशुओं के शरीर में जहर फैल जाता है। सही समय पर लक्षण न पहचान पाने के कारण कई बार पशु दम तोड़ देते हैं, जिसे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, और इसी बीमारी को हम कहते हैं पशु विषाक्तता। इसी महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीक्षा मलेठा, सहायक प्राध्यापक वेटनरी कॉलेज रांची। दीक्षा जी आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: आप हमारे श्रोताओं हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि पशु विषाक्तता होती क्या है।
2: विषाक्तता का मतलब है विषाक्त तत्वों या पदार्थों से होने वाली समस्याएं।
0: जी
2: जब कोई

0: हानिकारक या विषाक्त या जहरीला पदार्थ सेवन के पश्चात हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारी शारीरिक क्रियाओं को बाधित करता है, हमें बीमार करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसे विषाक्तता कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों में जहरीले पदार्थ खाने पर हानिकारक व प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है, वैसे ही पशुओं में भी विषाक्त रसायन, जहरीले पौधे, सड़ा पुराना चारा खाने से गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तथा कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है।
1: जी, तो पशुओं में विषाक्तता के प्रमुख कारण क्या हैं?
0: देखिए, पशुओं में विषाक्तता के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं कुछ जहरीले पौधे जो कि आपने सुना होगा, जैसे पुटुस, थेथर, कनेर, गाजर घास, अकवन, धतूरा, कटेरी आदि।
1: जी,
0: ये जहरीले पौधे जो होते हैं ये भी विषाक्तता का कारण होते हैं।
1: जी जी।
0: अगला आता है अगर हरे चारे में ऐसा हरा चारा जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, अगर उनमें आपने कीटनाशक छिड़काव किया हुआ है या फिर उर्वरक का उपयोग किया है तो उनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, या फिर साथ ही पानी का अभाव हो तो ऐसा चारा देने से पशुओं में नाइट्रेट विषाक्तता देखी जाती है जो कि ऑक्सीजन को बाधित करती है। अगला आता है यूरिया का उपयोग। हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर पशुओं में संतुलित मात्रा में प्रोटीन की आपूर्ति के लिए यूरिया हम देते हैं, लेकिन इसे अगर निर्धारित मात्रा से ज्यादा दिया जाए तो इसके अधिक सेवन से विषाक्तता होती है।
1: जी।
0: अगला आता है कुछ सायोजनिक पौधे जैसे ज्वार, बाजरा, अलसी, बबूल, जिनमें की साइनाइड ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। पशु अगर इनका सेवन कर ले, कच्चे छोटे पौधे अगर पशु खा ले, तो उनमें साइनाइड ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है।
1: जी।
0: वो साइनाइड विषाक्तता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा फफूंद लगा चारा, कीटनाशक का गलती से सेवन जो कि चारे या पानी के रूप में हो सकता है, साथ ही दूषित गंदा रुका हुआ पानी तथा कुछ अन्य रसायनों का गलती से सेवन पशुओं में विषाक्तता का कारण बनता है।
1: जी, अभी आपने बताया कि क्या क्या चीज खाने से होता है,
0: जी,
1: लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सी विषाक्तताएं देखी जाती हैं?
0: देखिए, पशुओं में आम तौर पर जो विषाक्तताएं देखी जाती हैं वो होती है साइनाइड विषाक्तता,
1: जी,
0: नाइट्राइट विषाक्तता, ऑक्सलेट विषाक्तता, एफ्लाटोक्सिकोसिस जो कि फफूंद लगे चारे के सेवन से होती है,
1: जी,
0: यूरिया विषाक्तता, कीटनाशक विषाक्तता तथा जहरीले पौधों का सेवन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनाइड विषाक्तता। कुछ चारा जैसे कि ज्वार, बाजरा, बबूल, अलसी आदि, इन सब में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड मौजूद होते हैं, तो इनके कोमल फसलों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है। साथ ही पानी का अभाव और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग ग्लाइकोसाइड की मात्रा पौधों में बढ़ा देता है जो कि साइनाइड विषाक्तता की संभावना को बढ़ा देता है।
1: जी जी।
0: दूसरा आता है नाइट्रेट विषाक्तता। कई ऐसे नाइट्रेट युक्त पौधे होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ने के पत्ते, इनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। अगर हम इनमें नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं, साथ ही अगर पानी का अभाव है या सूखापन है, तो इनमें नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है जो कि शरीर में ऑक्सीजन को बाधित करता है और श्वास संबंधित विकार करवाता है। इसके अलावा आता है ऑक्सलेट विषाक्तता जो कि ऑक्सलेट युक्त फसल के अधिक सेवन से होती है जो कि शरीर में कैल्शियम की कमी को करवाता है। फिर बात करते हैं यूरिया विषाक्तता की। अधिक मात्रा में यूरिया मिश्रित आहार तथा खाली पेट यूरिया देने से क्या होती है। फिर एफ्लाटोक्सिकोसिस की बात करें तो कई बार हम जब चारा स्टोर करते हैं तो उस दौरान नमी और अधिक गर्मी के कारण फफूंद लगने का चांसेस हो जाते हैं।
1: जी।
0: जिस वजह से एफ्लाटॉक्सिन्स नाम के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं और जिस वजह से पशुओं के लीवर में और पाचन तंत्र को वो प्रभावित करते हैं।
1: जी।
0: फिर आता है कीटनाशक। हम जानते हैं कि कीटनाशक का उपयोग पशुपालक बहुत करते हैं, तो यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कीटनाशक के सेवन से चारे के रूप में हो या फिर दूषित पानी के रूप में पशु इनका सेवन करते हैं। इसके अलावा कई विषाक्त पौधे जैसे कि मैंने अभी बताया, थेतर हो गया, गाजर घास हो गया, अकवन हो गया, ये सब भी इनके सेवन से भी पशुओं में हानिकारक या गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं।
1: जी जी। पशुओं में विषाक्तता के सामान्य लक्षण क्या पाए जाते हैं और अगर लक्षण देख लिया गया तो उसके उपचार क्या है?
0: लक्षण की हम बात करें तो यह निर्भर करता है कि किस प्रकार की विषाक्तता हुई है।
1: जी।
0: किस प्रकार का चारा पशु ने खाया है। अगर हम बात करें साइनाइड विषाक्तता की, तो इसमें पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, अत्यधिक लार गिरता है, आंख नाक और श्लेष्मा झिल्ली का रंग गहरा हो जाता है, खून का रंग गहरा तथा मांसपेशियों में ऐंठन और कंपन देखने को मिलती है, और कई परिस्थितियों में जो कि गंभीर हो जाता है जब मामला, तो पशु की मौत भी हो सकती है। नाइट्रेट विषाक्तता में आप देखेंगे कि पशु तेज तेज सांस ले रहा है तथा पशु कमजोर तथा लड़खड़ाकर चलेगा, मुंह और आंखें नीली पड़ जाएंगी, साथ ही रक्त का रंग चॉकलेटी कलर का दिखाई देगा। एफ्लाटॉक्सिकोसिस में पशुओं के पाचन तंत्र तथा लीवर में असर दिखता है, जिस वजह से पशु खाना कम खाते हैं, सुस्त नजर आते हैं, कमजोरी आ जाती है, साथ ही उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाती है।
1: जी।
0: यूरिया विषाक्तता की बात करें तो इसमें पशु सुस्त, बेचैन, शरीर में ऐंठन, लार टपकना, बार बार पेशाब करेगा और सांस लेने में तकलीफ दिखाई देती है, साथ ही पेट फूल जाता है। ऑक्सलेट विषाक्तता में क्योंकि यह कैल्शियम की कमी करवाता है, तो पशु में कमजोरी और दूध उत्पादकता पर फर्क पड़ता है। कीटनाशक विषाक्तता से मुंह में अत्यधिक झाग और लार टपकता है, मांसपेशियों में ऐंठन, सांस लेने में तकलीफ, दस्त, बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विषाक्त पौधों के सेवन के उपरांत पशुओं में पाचन, तांत्रिक तथा श्वास संबंधी विकार देखने को मिलते हैं, साथ ही पुटुस, गाजर घास में त्वचा संबंधित समस्याएं जैसे कि शरीर में लालिमा, लाल चत्ते आदि दिखाई देते हैं, जो कि पशुओं को स्ट्रेस में लाते हैं और उनकी उत्पादकता पर फर्क पड़ता है। अगर उपचार की बात करें तो विषाक्तता का इलाज पशु चिकित्सक के परामर्श तथा उनकी देखरेख में ही करवाएं, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक उपचार होता है जो कि पशुपालकों को फॉलो करना चाहिए। हम बात करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग की, तो इसमें सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायसल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है। नाइट्रेट विषाक्तता की बात करें तो इसमें 1% मिथिलिन ब्लू का इंजेक्शन दिया जाता है, साथ ही में एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं। ऑक्सलेट विषाक्तता में कैल्शियम का सेवन बढ़ाया जाता है और कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट का इंजेक्शन देते हैं। कीटनाशक व फफूंद के प्रकोप से बचाने के लिए पशु को फफूंद युक्त व कीटनाशक युक्त चारा देते हैं, साथ ही लक्षण के आधार पर उपचार किया जाता है।
1: जी।
0: और यूरिया विषाक्तता में पशुओं को सिरका या फिर एसिटिक एसिड ठंडे पानी में मिलाकर देते हैं, और विषाक्तता का उपचार करने के लिए हम लक्षण के आधार पर और अनुसार उपचार करते हैं।
1: जी, तो क्या मौसम का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हम बात करें तो अधिक गर्मी और उमस में तापमान नियंत्रित न होने की वजह से हीट स्ट्रोक आदि समस्याएं पशुओं में देखी जाती हैं, जो कि पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है, साथ ही विषाक्तता की संभावना बढ़ा देती है। अधिक गर्मी, पानी का अभाव तथा सूखेपन की वजह से विषाक्त साइनोजेनिक पौधों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही साथ उमस और नमी के कारण चारे में फफूंद लग जाते हैं, जो कि एफ्लाटॉक्सिकोसिस का कारण बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिक तापमान, उमस, सर्दियां, जल का अभाव, चारे की गुणवत्ता में परिवर्तन और कीटनाशक और उर्वरक का अधिक प्रयोग विषाक्तता को बढ़ावा देता है।
1: तो इसे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतें?
0: विषाक्तता से बचने के लिए पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने पशु को साफ, स्वच्छ व ताजा पानी पिलाएं तथा चारे की गुणवत्ता पर ध्यान दें।
1: जी।
0: फफूंद, सड़ा गला चारा ना दें। पशु को ऐसी जगह ना चरने दें जहां कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव हुआ हो। मुरझाया सूखा हुआ चारा ना खिलाएं, क्योंकि उसमें विषाक्त तत्व तथा नाइट्रेट और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है। साथ ही पशुओं के दाने और चारे की समय समय पर गुणवत्ता करवाएं। बारिश होने के तुरंत बाद फसल न काटें, कुछ दिनों रुकने के बाद हरा चारा काटें, क्योंकि उसमें विषाक्त पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, और तभी वह अपने पशुओं को उसका सेवन कराएं। वह साथ ही पशुओं को अपनी निगरानी में ही चराने लेकर जाएं, जिससे कि पशु विषाक्त पौधों का सेवन न करें।
1: जी, तो किसान भाइयों, आज डॉक्टर दीक्षा जी ने हमें बहुत सरल शब्दों में समझाया कि पशुओं में विषाक्तता कितनी खतरनाक है, और हमारी थोड़ी सी जागरूकता पशुओं के प्राण बचा सकती है। तो डॉक्टर दीक्षा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही पशु में होए वाला विषाक्त का कारण का रोग होएला, और इकर से और इकर में बताते रहे विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा मलेटा, और इनकर से गुठिया रहे हमारे कर कृषि जीवन पौराणिक।
1: तो भाई आओ एगो गीत सुन लो थे सुकुमार और संगी मनकर गाँव वाली।

0: तो एखन हमारे मन खोरठा में सुनत रही गीत सुकुमार और संगी मुनकर गावल। तो अब हमारे मन एगो किसान से कर भेंट के सुनी लगा।
1: हाँ, और किसान हैं आनंद कुमार यादव और इनकर से भेंट करत हैं अरविंद कुमार मिश्रा।
2: किसान भाई जोहार। जिस तरह से रोजाना हम आपकी मुलाकात नए नए किसान से कराते हैं, उनके अनुभव के बारे में जानते हैं कि किस तरह से वो खेती किसानी के काम से जुड़े हैं, उनका आय कैसा चल रहा है, किस तरह से नए नए प्रयोग कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानते रहते हैं किसान भाइयों के। तो आज भी एक नए किसान भाई हैं, इनसे आज हम मिलेंगे, इनके अनुभव के बारे में जानेंगे, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले किसान भाई का हम लोग स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। जोहार।
3: जोहार।
2: आप अपना परिचय दे दें, आपका नाम क्या हो गया, कहाँ के रहने वाले हैं?
3: मेरा नाम हो गया आनंद कुमार यादव, हम मूल रांची के रहने वाले हैं।
2: जी यादव जी, आप बताइए कि अभी किस तरह से आप क्या कर रहे हैं खेती किसानी में?
3: किसानी हम गौ मतलब पशुपालन का बिजनेस चला रहे हैं।
2: अच्छा, पशुपालन के काम से आप जुड़े हैं, ये जरूरी भी है। जो भी किसान भाई हैं अगर केवल खेती बाड़ी का काम अगर करते हैं तो उसमें आय सीमित मात्रा में होता है, लेकिन अगर खेती किसानी के साथ साथ अगर पशुपालन के काम से अगर जुड़ते हैं तो उनके आय में वृद्धि होती है।
3: वृद्धि होती है,
2: अच्छी बात है। यादव जी, कितने दिनों से आप पशुपालन के कार्य से जुड़े हैं?
3: जी हमें 7 या 8 साल हो गया सर।
2: तो कहीं से आप ट्रेनिंग लिए थे?
3: कहीं ट्रेनिंग, बस घर

0: टेनिस चला आ रहा है, बस उसी में देखते देखते अनुभव होते चला गया।
1: अभी आपके पास कितनी गायें हैं?
0: मेरे पास अभी 13 गाय है।
1: कौन कौन सी नस्ल की?
0: होस्टेन है, जर्सी है, फ्रिजियन है, सब मिला के 13 गो जानवर है मेरे पास अभी।
1: तो दूध का उत्पादन कितना हो जाता है आपका?
0: दूध का उत्पादन हो जाता है मेरे पास दोनों बेलाएं मिला के 150 से 200 लीटर।
1: बहुत ही बढ़िया। आप अपने खटाल से ही बेचते हैं या फिर
0: नहीं,
1: कहीं
0: कुछ
1: और बाहर
0: कुछ
1: भेजते हैं?
0: खटाल से ही बिक जाती है, कुछ पहुंचाना ही पड़ता है, बाहर भी ले जाना पड़ता है। और जो उसके अलावा जो फिर जो कुछ बच गया वो सेंटर में।
1: रेट तो भी ठीक ठाक है दूध
0: रेट,
1: का?
0: हाँ रेट मनगर रेट नहीं मिलता, लेकिन हाँ घिस चिर के काम चल जा रहा है।
1: अच्छा एक चीज बताइए कि पशुपालन में जैसे गौ पालन से आप जुड़े हैं, तो इसमें विशेष क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं?
0: विशेष इसमें ठंडे और बरसात में ध्यान देना पड़ती है जानवर को,
1: किस किस तरह से?
0: कि जैसे बेसी पानी हो रहा है, ये उन लोग गोबर जिससे जो खाद खान होता है उन लोग का, उधर से उसमें नमी बेसी हो जाती है, उसके वजह से उन लोग का तबीयत खराब हो जाने का डर रहता है, ठंडा में ठंडा लगने का बेसी ये रहता।
1: तो जिस तरह से अभी बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, तो इसमें कैसे आप लोग गाय का देख रेख करते हैं?
0: जी हम लोग डेली शाम में उसको अलावा जो आग बोलते हैं आग लगा देते हैं किनारे में, कर करके टीना टीना में जगह जगह पर, कि पूरा खटाल उसका सेट पूरा गर्म रहे, ठंडा का असर उसमें कुछ कम हो जाए।
1: और उसके अलावा कुछ खान पान में विशेष ध्यान?
0: खान पान में उतना बेसी ठंडा दिन नहीं होता है दिक्कत, बेसी दिक्कत होती है बरसात के दिन में खान पान
1: अच्छा।
0: में, और ये ठंडा के दिन में बस वही सिर्फ उसको जितना गर्मी दे सके उसके लिए उतना फायदेमंद है।
1: और दूध के उत्पादन में कुछ असर पड़ता है
0: हाँ
1: ठंड
0: दूध
1: के
0: के,
1: दिन में?
0: हाँ ठंडा के दिन में दूध की उत्पादन दूध हो जाती है कम।
1: तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं? आपके तो जैसे उत्पादन में कमी हो गया तो आय में भी कमी हो
0: हाँ
1: जाती
0: वाई में
1: है,
0: ऑटोमेटिक है, वाई में खत्म खत्म हो जाएगा कहानी उसका।
1: तो उसकी भरपाई कैसे
0: अब
1: करते हैं?
0: बस उसी में घिस तीर के जैसे तैसे चलाए अपना, 1 महीना 2 महीना घिंचाता है।
1: अच्छा देखिए, गौ पालन में सबसे अहम बात है कि उसका जो आवास होता है उसका व्यवस्था ठीक ढंग से करना होता है, तो
0: हाँ
1: किस तरह से आप लोग उसका आवास का प्रबंधन कैसे करते हैं?
0: आवास हो गया सर, दो दो कट्ठा जमीन है पूरा, उसमें 2 कट्ठा में 1 कट्ठा में पूरा उसका घर बना हुआ है, मतलब सेट 1 कट्ठा प्रति छूटा हुआ है, मतलब
1: अच्छा।
0: खाली, कि धूप में जैसे गर्मी के दिन में हो गया तो बाहर रात में निकाल दिए, ठंडा में हो गया तो धूप में निकाल दिए, और नीचे अपना ऊपर करकट है, नीचे ईंटा बिछाया हुआ है, ढलैया करवा नहीं सकते हैं, ढलैया करवाने से लोगों का पैर डैमेज होने का डर रहता है बेसी,
1: और ढालुआ होना चाहिए
0: ढालुआ
1: उसका
0: होना चाहिए वो तो, हाँ ढालुआ होना चाहिए,
1: जो
0: जो अपना
1: भी।
0: पेशाब सब जो भी करे
1: हाँ,
0: बाथरूम तो सब अपना नली के द्वारा बह के बाहर आ जाए।
1: और क्या क्या उसमें आप लोग करते हैं? जैसे कि बहुत किसान लोगों को हम देखते हैं कि उसके लिए अलग से मैट भी
0: हाँ
1: होता
0: मेट
1: है।
0: होता है वो किसके लिए होता है, जो ढलाई कर दिए है उसके लिए मेट होता है, जो खरंजा में रखे हुए हैं उसके लिए मेट की जरूरत नहीं पड़ता है।
1: और साफ सफाई पर क्या
0: साफ
1: ध्यान देना
0: सफाई
1: है?
0: उस पर भी से ध्यान देना पड़ता है, साफ सफाई, साफ सफाई अगर समय से नहीं करिएगा तो 2 गो 4 गो बीमारी हो, डेली डेली होना है, कभी थन फूल जाएगा, कभी दूध में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी लोग का सेहत ठीक नहीं रहेगा,
1: तो उस तरह का अगर बीमारी आप अगर गाय सब में देखते हैं तो क्या करते हैं?
0: उसके लिए फिर डॉक्टर चिकित्सक को बुलाते हैं, फिर उनसे जांच करवाते हैं, जो दवाई बोलते हैं वो दवाई चढ़ा लेते हैं, आगे अपना अनुभव से जो होता है वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अगर नहीं संभला तो फिर डॉक्टर साहब को बुलाते हैं।
1: अब तो देखिए झारखंड सरकार की ओर से अब एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, तो वो सब का भी लाभ आप लोग उठाते हैं
0: जी
1: क्या?
0: नहीं अभी हम लोग उस सबके लाभ नहीं उठाते हैं।
1: लेकिन चिकित्सक के संपर्क में आप
0: जी
1: रहते हैं। इसके अलावा देखिए गाय सब बीमार ना पड़े उसके लिए आप लोग अपने स्तर पर क्या करते हैं?
0: तो उसकी बस वही देखभाल कि भाई जितना हो सके जितना उसका जगह सफाई रखिए उसके लिए उतना अच्छा है।
1: अच्छा, अधिक उत्पादन लेने के लिए, दूध का उत्पादन लेने के लिए गाय को आप लोग क्या क्या खिलाते हैं?
0: गाय को खिलाना पड़ता है खल्ली, सरसों का हो गया, बादाम का हो गया, सरसों का अभी तो ठंडे में सरसों का चल रहा है बेसी, अब बादाम, और गर्मी के दिन में तीसी का,
1: और हरा चारा आप लोग देते हैं कि नहीं?
0: हरा चारा नहीं मिलता हम लोग को, टोन में हरा चारा का उम्मीद बहुत कम है, देहाती एरिया में मिल जाएगा लेकिन हाँ टोन में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
1: आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर डे 200 लीटर के लगभग में दूध का उत्पादन हो जाता है, तो सीधे दूध बेचते हैं कि दूध से और भी
0: जी
1: कुछ
0: नहीं
1: आप
0: सीधे
1: निकालते हैं?
0: सीधे दूध,
1: सीधे दूध ही
0: जी
1: बेचते
0: हाँ
1: हैं। तो जैसे गौपालन में सबसे बड़ी बात है कि अगर गाय आप रखे हुए हैं किसी कारणवश बीमार पड़ती है और वो मर जाती है तो काफी नुकसान होना
0: जी
1: पड़ता है,
0: हाँ
1: तो इसके लिए इंश्योरेंस की भी व्यवस्था है, तो आप लोग इंश्योरेंस भी
0: जी
1: कराते
0: नहीं
1: हैं पूरा?
0: इंश्योरेंस हम लोग नहीं करवाते
1: लेकिन
0: हैं,
1: इंश्योरेंस कराना ज्यादा फायदेमंद
0: हाँ
1: होगा,
0: ज़्यादा फायदेमंद होता है,
1: नहीं तो इसमें नुकसान तो
0: नुकसान
1: काफी
0: बहुत
1: उठाना
0: होता
1: पड़
0: है, हाँ
1: सकता
0: नुकसान
1: है।
0: बहुत हो जाती है।
1: सालाना कितना आप इससे कमा लेते हैं?
0: सालाना का तो जुड़ाया नहीं है अभी तक,
1: अच्छा।
0: इसलिए कि जितना जैसे अब जिस ठंडी के दिन है अभी दूध कम हो गई है, आय भी कम हो गया है, तो वही जो बचा हुआ पैसा जो रखता है बस वही फिर अभी मेकअप हो जाता है।
1: लेकिन पशुपालन के काम से फायदा है
0: हाँ
1: आपको क्या
0: फायदा है,
1: लगता है?
0: जी हाँ फायदा है। अगर करने वाला को जानकार हो, अच्छा जिनका जानकारी हो तो फायदा है।
1: जो नए किसान हैं वो अगर पशुपालन से जुड़ना चाहें क्या करना चाहिए, आपका सुझाव क्या है?
0: मेरा सुझाव तो यही है कि उनको आगे सबसे पहले तो ट्रेनिंग अच्छा से ले लें कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद अपना कर सकते हैं।
1: कितने गाय से शुरुआत कर,
0: शुरुआत करिए आगे एक या दो से, उसके बाद देख लीजिए क्या अनुभव है, कैसा आपका चल रहा है, दूध का सेलिंग कैसा है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाता चल जाइए आप।
1: तो आप बताएं कि गर्मी दिन में और बरसात के दिन में,
0: ठंडा के दिन में और बरसात के दिन में,
1: अच्छा दो मौसम में काफी दिक्कत होती,
0: दिक्कत होती है।
1: गाय में किस तरह का रोग बहुत ज्यादा आप देखते हैं?
0: बेसी रोग गाय में दिखेगा आपका वही थनैला रोग।
1: और अक्सर हम देखते हैं किसान भाई लोग परेशान रहते हैं खुरहा चपका से भी,
0: ना उस साल में एक बार आता है वो तो नियम है, जरूरी नहीं है कि नहीं आना,
1: तो उसका भी तो टीका,
0: उसका टीका हर करवा दीजिए 6 महीना में तो आएगा, तो नुकसान उतना नहीं होगा।
1: तो आप टीकाकरण कराते हैं, है ना?
0: जी हाँ।
1: तो कुल मिला के जो पशुपालन का जो कार्य है वो काफी लाभप्रद है।
0: जी हाँ,
1: अगर जो किसान
0: जानकार हो जो उनके लिए, और जो अनुभव जिनके लिए नहीं हो तो नुकसान ही में
1: जाएंगे। सबसे पहले प्रशिक्षण लेना इसके लिए
0: जरूरी है।
1: अगर किसान भाई प्रशिक्षण लेते हैं और इस कार्य में अगर उतरते हैं तो उनको अधिक लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो आप हमारे किसान भाइयों के साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में आ पाए और अपना अनुभव आपने साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: जोहार।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रहे किसान आनंद कुमार यादव से भेंट और इनकर से गोठियां रहे अरविंद कुमार मिश्रा।
3: तो बड़ा बढ़िया जानकारी रहे, है नहीं? तो भाई देखो, यह किसान आनंद कुमार यादव से करल भेंट कर संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक। ई कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
2: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारी दुनिया।

0: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन उनके एक बार फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर
0: जोहार।
1: और कहो का हाल समाचार है?
0: हाल समाचार तो बढ़िया है। और देखो बड़ा बढ़िया एकदम रर के खुश देखा थी है।
1: हाँ काली की देखो जीवन में खुश रह चाहिए और इच्छा करे चाहिए कि सबको खुश रहें और सकारात्मक सोच कर साथ में उन्होंने रहा,
0: यानी कि कहूँ से सकारात्मक सोच और उभर लग बुझाते नहीं।
1: और देखो जीवन में अगर सकारात्मक सोच रहे लेनी तो हमरे के मतलब कि हर काम में बेस लगेगा और हर काम जितने भी अगर परेशानी भी है तो उस सकारात्मक सोच कर साथ है अगर करब तो जो बहुत कठिन काम भी है तो वो अलग हो जाएगा।
0: अब बहुत कोई के देखा कि काम करे से पहले डरा जाए ना कि काज नहीं काम होगी कि नहीं होगी, इकर से बात करब तो ई हमर काम के करी कि नहीं करी और नहीं करी तो का होगी, हुआं जाब तो ऐसा होगी हिने जाब तो ऊसन होगी, हमेशा जो है से गलत नेगेटिव सोच जे के कहे ना से होते रह तो उकर से का होवेला कि काम भी खराब होवेला और माथा भी खराब रहे
1: एकदम
0: है नहीं?
1: एकदम। तो हमरे के प्रयास करे के चाहिए कि कितनों अगर तकलीफ में ही समस्या में घिरल ही फिर भी हमरे के सकारात्मक सोच कर साथ में काम करे के चाहिए और मतलब कि का कहब जिते भी जीवन में तो ऐसे सुख दुख लागल रहेला तो सेले हमरे के प्रयास करे के चाहिए कि एकदम सकारात्मक सोच कर साथ है और हंसी खुशी के साथ में कोई

0: भी काम के करक चाहिए।
1: तो भाई देखो, हंसी खुशी कर बात कर ली तो गीत नाद करल से भी सकारात्मक सोच आवेल, है
0: एकदम।
1: नहीं? तो आओ हमरे अब गीत कार्यक्रम के आगे बढ़ाती है वो गीत से। यह नागपुरी लोकगीत रूना देवी और संगी मनकर गावल
0: तो चलो सुनी ला।

0: तो एखन हमरे मन सुनत रही नागपुरी लोकगीत में रुना देवी और संगी मनकर गावल। तो हमरे मन गांव कर विकास में का तरी भागीदारी निभाए सकेला, इकरे में ग्रामीण विकास में महिला मन कर भूमिका जे होएला का तरी होएला, इके बतावे वार्ताकार सुषमा पौराणिक।
1: प्राचीन काल से ही ग्रामीण महिलाएं परिवार और गांव की व्यवस्था को संभालती आ रही हैं। वे खेतों में काम करने, पशुपालन, जलावन के लिए लकड़ी लाने, चारा लाने और घर गृहस्थी चलाने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। एक ग्रामीण महिला की दिन की शुरुआत बहुत सुबह से होती है और रात देर तक परिवार और गांव की जरूरतों को पूरा करने में जुटी रहती हैं। उनका यह परिश्रम गांव की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाता है। वे न केवल परिवार की आधारशिला हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज की रीढ़ भी हैं। यदि महिलाओं को उचित शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिले तो गांव का विकास और भी तेज गति से हो सकता है। सही अर्थों में कहा जाए तो किसी भी गांव का विकास उसकी महिलाओं की प्रगति के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी हमारा गांव, समाज और देश वास्तविक प्रगति की ओर बढ़ सकेगा। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होती है। इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीज बोना, पौधा लगाना, निराई गुड़ाई करना, फसल काटना और अनाज को सुरक्षित रखना, इन सभी कार्यों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आज कई ग्रामीण महिलाएं जैविक खेती, नर्सरी तैयार करने और बागवानी जैसे कार्यों में भी कुशलता दिखा रही हैं। इससे न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है। महिलाएं न केवल परिवार की आधारशिला होती हैं, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आज के बदलते समय में गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने गांव के विकास की दिशा को नई गति दे रही हैं। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की नींव होती है। गांव में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका बच्चों की पहली शिक्षक के रूप में होती है। एक माँ अपने बच्चों को संस्कार, अनुशासन और शिक्षा का महत्व सिखाती हैं। आज कई ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से साक्षरता अभियान चला रही हैं और बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए अन्य परिवारों को प्रेरित कर रही हैं। महिलाएं शिक्षिकाएं गांव के बच्चों का भविष्य संवारने में अहम भूमिका निभा रही हैं। गांव के स्वस्थ विकास के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। इस दिशा में भी महिलाओं की भूमिका के बिना विकास अधूरा है। महिलाएं अपने घरों और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखती हैं। वे बच्चों का टीकाकरण, पोषण, पोषण युक्त भोजन और गर्भवती महिलाओं की देखभाल पर विशेष ध्यान देती हैं। आज आंगनबाड़ी सेविकाएं गांव-गांव जाकर महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो रही है। गाँव में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों ने विकास की दिशा में क्रांति ला दी है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटी छोटी बचत करके सामूहिक रूप से ऋण लेती हैं और सिलाई कढ़ाई, अगरबत्ती बनाना, पापड़ अचार बनाना, डेयरी, मुर्गी पालन जैसे छोटे उद्योग शुरू करती हैं। इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और परिवार की आय बढ़ाती हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तो पूरे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। गांव के विकास में सामाजिक कुरीतियों को दूर करना भी बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र में महिलाएं जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं के खिलाफ ग्रामीण महिलाएं आवाज उठा रही हैं। कई महिलाएं पंचायतों में भाग लेकर गांव के निर्णयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। इससे गांवों में लोकतांत्रिक सोच को बढ़ावा मिलता है। आज कई गांवों में महिलाएं सरपंच, पंच और वार्ड सदस्य के रूप में चुनी जा रही हैं। महिला नेतृत्व से गांवों के विकास कार्यों को नई दिशा मिल रही है। महिलाएं सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाती हैं और उन्हें लागू कराने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इससे यह साबित होता है

0: महिलाएं न केवल घर बल्कि समाज और देश के विकास में भी सक्षम नेतृत्व दे सकती हैं। गांव में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी महिलाओं का बड़ा योगदान है। वे पेड़ पौधों की देखभाल करती हैं, जल संसाधनों का सही उपयोग करती हैं और ईंधन की बचत के लिए पारंपरिक तरीकों को अपनाती हैं। कई गांवों में महिलाएं वर्षा का जल संचय और पौधारोपण अभियानों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इससे गांव का प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित किए जाते हैं। आज डिजिटल क्रांति ने गांव की महिलाओं के लिए भी नए अवसर पैदा किए हैं। कई महिलाएं मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रही हैं। वे ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग कराना सीख रही हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और महिलाएं अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रही हैं। चुनौतियों और समाधान। इन महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद ग्रामीण महिलाएं कई चुनौतियों का सामना करती हैं। साक्षरता की कमी और कौशल विकास के अवसर तक सीमित पहुंच उनकी प्रगति में बाधक है। आर्थिक संसाधनों तक पहुंच, भूमि, ऋण और अन्य आर्थिक संसाधनों पर पुरुषों का अधिकार अधिक होता है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित रखती है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकारी योजनाओं जैसे महिला शक्ति केंद्र और अन्य पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान कराना महत्वपूर्ण है। गांव के विकास में महिलाओं का योगदान न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अनिवार्य है। जब महिलाओं को समान अवसर और संसाधन मिलते हैं तो वे उत्पादकता बढ़ाती हैं, आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करती हैं और पूरे समुदाय के विकास में तेजी लाती हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण वास्तव में एक अस्थायी कल के लिए आज की आवश्यकता है। ग्रामीण महिलाओं की क्षमता को पहचानना और उन्हें मुख्य धारा में लाना ही भारत के सच्चे ग्रामीण विकास की कुंजी है। जैसे कि कहा जाता है, जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गांव के विकास में महिलाओं का योगदान अमूल्य और अनिवार्य है।
1: एखन हमारे मन सुनत रही ग्रामीण विकास में महिला मनकर भागीदारी कैसे होला और इके बतात रहे हैं विशेष वार्ताकार सुषमा पौराणिक।
2: तो आओ एक तो गीत सुन लेवत है हमले विजय महतो और संगी मनकर गावल।
1: तो चलो सुनी।

0: मेरा एक है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: तो रिज रंग में और एगो रिज कर ले
2: तो वो नागपुरी लोकगीत सुना थी इग्नेश कुमार और संगी मनकर गावल।

0: तो भाई यह गीत कर संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरा लग
1: और ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर।
0: तो सुनुया भाई बहन मने अबरारुन के संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु के देव विदा जोहार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण, हमारी दुनिया। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा, 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों कांग्रेस झामुमो और राजद ने अपनी सांगठनिक बैठकें तेज कर दी हैं। रांची के पुराने विधानसभा सभागार में आज संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बैठक में देरी से आने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और गठबंधन की रणनीति को लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह गंभीर है।
5: हमारा हाईकमांड बात कर रहे हैं, RJD और लेफ्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक प्रायोरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है एक सीट में हम लड़ेंगे, सो हम वेट कर रहे हैं।
4: इस बीच झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन में अभी काफी समय है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट हैं और सही समय पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे।
6: सारे राजनीतिक दल सारी गोटियों पर, संभावनाओं पर, सारे मूल्यांकनों को करके यह तय करते हैं कि किसको कैंडिडेचर देना चाहिए, किसको लड़ाया जाना चाहिए और उनका समय उनको दिया जाना चाहिए। 8 तारीख में भी समय बाकी है, तमाम चीजें होंगी, ससमय होंगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन झारखंड की दोनों ही सीटें लेकर जाए।
4: इधर रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य भर में संगठन को मजबूत करने के लिए जिलावार दौरे की रणनीति तैयार की गई है।
7: पूरे राज्य का हम लोग का दौरा चल रहा है अगले महीना से। अध्यक्ष जी के माध्यम से पार्टी का राय मशवरा हुआ, उन्होंने तीनों विधायक को भी डायरेक्शन दिया। लोग अब पूरा राज्य में भ्रमण कैसे करें, अपने लोगों को, संगठन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, उसके विषय में डायरेक्शन दिया।
4: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगामी 6 जून के रांची दौरे के आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि इस दौरे से राज्य में पार्टी के आगामी अभियानों और सांगठनिक विस्तार को नई मजबूती मिलेगी।
8: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 6 और 7 को रांची में आगमन हो रहा है और विशुद्ध रूप से वो झारखंड को बहुत बारीकी से जानते हैं। इस क्षेत्र में लगातार उनका संपर्क, चुनाव के समय में भी इनका यहाँ पर आकर के चुनावी काम में सहयोग करना रहा है और एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, यहाँ के पार्टी के संगठन को भी बहुत वास्तविकता से जानते हैं।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही रोजगार उन्मुखी योजनाओं और युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। श्री सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप बनाया जाए। लातेहार के मनिका में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब मरीज अस्पतालों में दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई लाखों रुपए की दवाइयां जंगलों में फेंकी जा रही है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में आज दिशा की बैठक हुई। उन्होंने जनवितरण दुकानों में पूरा अनाज देने, सदर अस्पताल में डिजिटल बीपी व एक्सरे मशीन लगाने और सीएचसी में दवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने सड़कों की गुणवत्ता और प्रभावितों को शुद्ध पेयजल देने को भी कहा। धनबाद रेल मंडल के राजहरा स्टेशन के पास कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे से अपलाइन पर परिचालन ठप है। इसके कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और राजधानी सहित कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। ट्रैक साफ करने का कार्य जारी है। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरिंद्र कुमार मौर्य ने आज गुड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां बन रहा वॉशिंग पिट एक महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे गुड्डा से लंबी दूरी की नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकेगा।
9: कोचिंग मेंटेनेंस के लिए काम तो काफी प्रगति पर है, कुछ काम उसमें रह गया है, तो आई होप कि एक महीने में फिट बन जाएगा। और ये डिपो के ऑफिस वगैरह भी रेडी हो जाएंगे, इसमें भी छोटे मोटे काम रह गए हैं। इलेक्ट्रिकल के दो ट्रेन जो यहाँ से चलती है मेंटेनेंस के लिए भागलपुर जाती है, वो दोनों ट्रेन का मेंटेनेंस हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे।
4: और अब मौसम का हाल। दक्षिणी पश्चिम मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुँच चुका है, जिसके बाद 15 जून तक झारखण्ड आने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 जून तक वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में डाल्टनगंज का तापमान सर्वाधिक 41 डिग्री रहा, जबकि गुमला में सबसे अधिक 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर पाकुड़ जिले में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी के कारण माल पहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। आपदा में कई कच्चे मकानों की छत उड़ गई और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। तेज आंधी और बारिश के दौरान हुए वज्रपात से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अहमदाबाद में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के बाइथल स्पर्धा में प्रेम किशोर महतो ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं दीपांशु सिंह और अतासी कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। ट्राइथल स्पर्धा में आरती कच्छप ने रजत और प्रेम किशोर महतो ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। झारखंड महिला प्रीमियर लीग में पलामू वॉरियर्स ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 3 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटा नागपुर ब्लास्टर्स ने

0: कप्तान शशि माथुर के 35 रनों की मदद से 145 रन बनाए। जवाब में पलामू वॉरियर्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस, झामुमो और राजद ने तेज की रणनीतिक बैठकें। 6 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। पलामू के राजहरा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। अपलाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग बदले। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा, 15 जून तक झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद। पाकुड़ में आंधी बारिश से भारी तबाही। और 15वीं राष्ट्रीय बाइथल ट्राइथल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। स्वर्ण समेत 5 पदक जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने दुमका परिसदन में दुमका और जामताड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा उनसे जुड़ी शिकायतों एवं समस्याओं पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में जामताड़ा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नहीं पहुंचने पर उन्होंने गंभीर नाराजगी जताई और कहा कि दोनों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। दरअसल अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के नाते आशा लकड़ा को जामताड़ा के लोगों से यह शिकायत मिली थी कि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लोगों ने जमीन खाली कराने की मांग की थी।
2: जामताड़ा के लोगों से हम एक विश्वास के साथ जनजाति समुदाय आयोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनको विश्वास है कि आयोग न्याय देगी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि आयोग का नोटिस आने के बाद भी जामताड़ा का डीसी और एसपी उपस्थित नहीं हुए। ये बहुत विडंबना है। आयोग उन पर समन करेगी और दिल्ली बुलाएगी और जामताड़ा का जनजाति समुदाय को न्याय देने का काम करेगी, क्योंकि जामताड़ा में जिस जगह पर जो आदिवासी समुदाय का जहर थान है, पूजा स्थल है, उस जगह पर आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग अपना कब्रस्थान बना रहे हैं और उस कब्रस्थान में काम चल रहा है। इसको रोकने का प्रयास करने के लिए भी पिछले बार हमने कहा था, थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, लेकिन पुनः फिर से वहाँ व्यक्ति दफनाया जा रहा है।
1: दुमका जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। युवा विभिन्न ट्रेड में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर हुनरमंद बन रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। योजना के कार्यान्वयन से जुड़े कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के संचालक ब्रजेश भारती बताते हैं कि
3: बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 120 दिनों का प्रत्येक दिन 3 घंटे का प्रशिक्षण होता है और इसमें बच्चों को हम लोग असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसको करने के बाद बच्चों के पास स्किल इंडिया का तो सर्टिफिकेट होगा ही और कंप्यूटर का ज्ञान लेने के बाद वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।
1: दुमका जिले में आदिवासी समाज की उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवतियां जनजातीय समाज की महिलाओं के जीवन स्तर और उनकी आर्थिक दशा में बदलाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की महत्वपूर्ण कड़ी बन रही हैं। कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्राप्त सोनाली सोरेन कहती हैं कि
4: यहाँ पे जितनी भी आदिवासी महिला है या फिर गाँव सुदूर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये लोग बहुत ही संकोची और सीधे भोलापन के निशान ये लोग निशानी होते हैं और ये लोग तुरंत से कुछ भी आगे नहीं जाना चाहते हैं। और मेरा ये मोटिव है कि मैं इन लोगों को आगे लेकर जाऊं और हमारे जनजातीय कौशल केंद्र के द्वारा जितनी भी ट्रेनिंग कराया जा रहा है वो लोग उसमें बढ़ के भाग ले।
1: दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकी नाथ धाम श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेले में आने वाले कांवरियों को सेवा सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण आदिवासी अखड़ा। आज इस कार्यक्रम को आप संताली भाषा में सुनेंगे, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला बेसरा और उषा किरण हांसदा। प्रस्तुति है प्रदीप कुमार की।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ। इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: इस समय आप सुन रहे हैं कुछ फिल्मी गाने। आइए अब सुनते हैं फिल्म हवस का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: फिल्म हवस के लिए मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हमें खेद है समय अभाव के कारण आप इस गीत को पूरा नहीं सुन पाए। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रही हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: तो
3: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह अभूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
3: जी।
5: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
3: जी।
5: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
3: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
4: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
3: जी,
4: उनको 5 लाख का कवरेज, हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
3: जी।
4: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं, ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें की कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि

0: ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी,
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
0: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा
1: जी।
0: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियों,

0: कवर डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान भारत केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर तीन साल में, पांच साल जैसा प्रोटोकॉल है, इसपे तीन कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आंख का इलाज, ईएनटी कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक पीएससी वाला आयुष्मान रोके मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान रोके मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास एएनएम थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली बीएससी पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और पीएचसी वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएमसी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल

0: कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
1: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
0: जी।
1: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में। ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है। तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता करी है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली

0: मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट टू डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारे पर।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सवाल

0: लेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है। हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा जो IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती हैं उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचारों के प्रसारण के लिए अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
2: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरल में दस्तक, केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Keralam, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
4: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
3: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Union Home Minister Amit Shah today said the Narendra Modi government entered the era of violence in the Northeast and transformed the region from a hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, or NEC, Mr. Shah, in a social media post, said today that NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens, as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said that yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the Ekta Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said that yoga unites the mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world.
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
3: We have a report.
2: The Ekka Arena in Ahmedabad has opened its door to more than 400 participants from 60 nations.

0: across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards ease of doing business. Our report.
1: These reforms have strengthened investor confidence, promoted entrepreneurship, and enhanced India's position as a globally competitive business destination. Startup India initiative, launched in 2016, is nurturing innovation, promoting entrepreneurship, and enabling investment-driven growth. Due to the efforts of the government, the number of startups has gone up to 2,23,000 in March this year from just around 500 in 2016. The Income Tax Department launched the new e-filing portal in June 2021 to provide greater taxpayer convenience. GST reforms provided an additional boost to ease of doing business. Talking to Akashwani News, a chartered accountant Manoj Baser of Thane in Maharashtra said that the reforms in direct and indirect taxes has brought economic stability.
2: The indirect and direct tax reform undertaken by central government are a major step forward the country's economy. Through its indirect tax reforms, the government has moved towards the vision of one nation, one tax. It has also significantly reduced the complexity of multiple tax structure by consolidating into fewer slabs, and there are indications that further rationalization may take place in the future.
1: To address procedural hurdles and simplify MSME registration, the government introduced Udyam Registration Portal. The MSME registration on the portal has increased from 10,000 in October 2020 to over 8,31,000 till date. To digitize and make a public procurement more streamlined and inclusive, Government e-marketplace GEM was introduced in 2016. It has achieved a cumulative gross merchandise value of over 18 lakh crore rupees. Speaking to Akashwani News, a seller in GEM and a CMD in a company, Kamini Gupta, said the process in GEM is simple and transparent.
3: The most important thing was how to reach out to different departments. And we became a seller on GEM platform, which is a government e-marketplace. And GEM became a blessing in our lives because it makes government purchasing transparent, efficient and hassle-free.
1: India's ease of doing business framework today reflects the combined strength of digital infrastructure, policy reforms, and trust-based governance. With the paint, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said, India and UK are well positioned to build a new future-oriented and mutually beneficial partnership. In his remarks at the meeting with UK Foreign Secretary Vyet Cooper in New Delhi this evening, Dr. Jayashankar said the meeting will be an opportunity to discuss the India-UK Vision 2035 under all the five pillars of growth, technology and innovation, defence and security, climate and clean energy, as well as education. On to sports. In Indonesia Open Badminton, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsakarunan has advanced to the men's doubles quarterfinals in Jakarta. The Indian duo defeated the Malaysian pair of Aaron Tai and Kang Kai Shing in a hard-fought match today. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Langoria climbed to number 1 in the women's 57kg category, while Asian champions Priya Ghangas in 60kgs and Vishwanath Suresh in 50kgs surged into the top 3 of their respective categories. In men's section, Sachin Sivaj and Narinder Berwal broke into the top 5 following a sustained run of international success. The southwest monsoon has arrived in Kerala today. The India Meteorological Department or IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, Delhi NCR today witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm and humid conditions. IMD also predicted very light and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वजराए आला को हिदायत दी है कि वह नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। भारत ने इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से चलने वाली पहली फ्लैक्स फ्यूल मुसाफिर गाड़ी का आगाज किया है। जुनूब मगरबी मानसून केरलम पहुंच गया है। IMD ने आइंदा 7 दिनों में केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आलमी बॉक्सिंग दर्जाबंदी में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि प्रिया घंगास और विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल और ऑटोमोबाइल के अलावा दीगर शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मशरिकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान आज के तबादले ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में शराकत पर तवज्जो मरकूज की गई। इन दिनों वेनेजुएला के तवानाई के शोबे में बुनियादी तब्दीली रूनुमा हो रही है। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने और आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के अपने अहद का इरादा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरक में तशद्दुद के अहद को खत्म कर दिया और इस खित्ते को तनाजों के एक मरकज से बदलकर मौके का मरकज बना दिया है। शुमाल मशरकी काउंसिल NEC के 73वें मुकम्मल इजलास में शिरकत के बाद जनाब शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि आज NEC खित्ते की तरक्की के लिए कलीदी मनसूबाबंदी के एक इदारे के तौर पर काम कर रही है, साथ ही वो लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है और सकाफत को फरोग दे रही है। NEC की मीटिंग में वजीर दाखिला ने वज़राए आला को हिदायत दी कि वो अमनो कानून पर तवज्जो करने के बजाय शहरियों के हुकूक के तहफ्फुज पर तवज्जो करें, क्योंकि शोरिश पसंदी अब एक मसला नहीं रहा है। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि वो नई नस्लों के लिए मस्नूई जिहानत, मशीनी आमोजिश और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे की तामीर करें। जनाब शाह ने यह भी कहा कि ऊद की लकड़ी, गैर मुल्की तिजारत और सेहत से मुतालिक सियाहत के शोबों में शुमाल मशरक के इम्कान तलाश करें। शुमाल मशरक खित्ते की तरक्की के महकमे के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी NEC के इजलास में शिरकत की और कहा कि सभी लीडर इस अज़्म के तहत मुत्तहिद हों कि एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुशहाल शुमाल मशरक की तामीर की जाए। NEC के मुकम्मल इजलास में अहम लीडर यकजा हुए, जिसमें पूरे शुमाल मशरकी खित्ते के गवर्नर साहिबान, वज़राए आला और पॉलिसी साज शामिल हैं। इस इजलास से मुतालिक बातचीत करते हुए मेजबान वजीर आला कोनार्ड के सिंगमा ने कहा कि मरकजी दाखिला और शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारतों की शुमाल मशरकी रियासतों के 8 वज़राए आला को हिदायत के मुताबिक सब मुश्तरका हदफ की हुसूलियाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि योगा भारत की जानिब से इंसानियत को एक ऐसा तोहफा है जिस पर वक्त की गर्द नहीं जमी। अहमदाबाद के एका अरीना में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के इफ्तिताही इजलास में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा जहन, जिस्म और रूह को मुत्तहिद करता है اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔

0: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा, तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की है, जो आदिवासी और जनजातीय हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, जैसा कि बताया हमारे वक्ता ने कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजाति समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल के बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15000 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आपके, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार भी पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। लगभग 500 स्कूल आज के डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह की कई सारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी के एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है, और जिससे लगभग 60 करोड़ जो जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें भी इस सरकार के तहत पीएम जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिले। और पूरे 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है उसको कैसे उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते

0: टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजाति भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके। और उसके तहत हमारा 10 मई से 17 मई तक ये टेक्नोलॉजी एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर जो
1: जी
0: विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, उस पर एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए
1: जी
0: तमाम
1: जी
0: प्रोग्राम।
1: जी पांडे जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई है, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, उस तरह का ढांचा होता नहीं। तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहां वो है वहीं तक पहुंचाया जा सके?
0: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है, और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना, जिसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन और साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं, और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था जिसमें 18 से 25 मई, इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप
1: जी
0: इनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए और लगभग 90 लाख ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए। और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी, और 19,000 आदि सेवा केंद्र जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया, और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया, तो अगर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 3 लाख लोगों को आधार कार्ड में एनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2.25 लाख लोगों को दिया गया, और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल की हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान जो आपका प्रश्न था
1: जी
0: कि डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स की जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन सबके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहां भी लगातार देने का प्रयास।
1: जी यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है। इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें। तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
0: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं। तो उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग

0: 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंचाना है, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई, ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलकर ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गांव वालों के साथ बैठ के कि ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिल के कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो उसमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गांवों तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे, और उस 56,000 गांवों में गांव वालों के साथ मिल के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं, उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं, जब तक उनकी बात सुन के समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से, तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पर कैसे लोगों को जोड़।
1: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
0: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारे क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है, जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को, ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने मतलब सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट, मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपना पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सके। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के, उस पर एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्केल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने सीएसआर के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो सीएसआर के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए।
1: जी पांडे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: वी जस्ट हर्ड अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड चानन भेल। कॉन्टिन्यूइंग दिस प्रोग्राम शी नाउ प्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कुहकर बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अवन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन। नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार

त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना जिसका बोल है मानो हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरु नाही बिका किणा, जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरी के ही कही थी बा कथा मानो तुले ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आऊ किछि जाने नाही, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की, बोल है प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़ी ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ उड़िया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ

0: घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on the expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global South. He said both nations will continue to